आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर FM शिमला है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 21 सेकंड हुए हैं। हमारी ये सभा आरंभ होती है।

0: छह बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार, प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ

0: निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sane Takayuchi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. In the India-Japan annual summit joint statement, both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on 22nd April last year. They also noted the United Nations Security Council monitoring मॉनिटरिंग टीम रिपोर्ट ऑफ 29

हम अपने आराध्य का आयोजन पूजन करते हैं और ये मनोकामना करते हैं कि हम जब भी अपने दिन की शुरुआत करें अच्छे से हमारा दिन चले, इसका आरंभ हो। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस आस्था से हम ऊर्जावान हो जाते हैं। आप सुन रहे हैं हिमांजलि, आकाशवाणी 103.7 MHz FM शिमला से।

इसी भजन के साथ हिमांचल में आज बस इतना ही। आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला आप सुन रहे हैं। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत के साथ ही एक और रचना, मानस गान। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, मालिनी नामैयार, संगीतकार सतीश भाटिया।

कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजना देवताओं की एक चाल थी जिसमें वे सफल हुए थे, किंतु शिव के तृतीय नेत्र के खुलते ही कामदेव के भस्म हो जाने की घटना से देवगण एक बार फिर हतोत्साह हो गए। रति के रोने बिलखने से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि उसका पति कामदेव अब से अनंग होकर सभी प्राणियों को व्यापेगा। इस वरदान से देवताओं का मनोबल बढ़ा और ब्रह्मा तथा विष्णु समेत सभी देवता शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने अनंग के रूप में कामदेव को पुनर्जीवन देने के लिए शिव जी की प्रशंसा की। देवगण ने तब पार्वती के अपार तप का वर्णन करते हुए शिव जी से उन्हें पत्नी रूप में अंगीकार करने की प्रार्थना की। अपने आराध्य श्री राम के वचन याद करके शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर और मालिनी नाम्बिहार। संगीतकार सतीश भाटिया। आकाशवाणी 103.7 MHz पर ये FM शिमला है। आज प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम लोकवाणी का विषय है हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल। यदि आप इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपना विचार साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें आज

8:45 से लेकर 9:15 के मध्य हमारे फ़ोन नंबर 2808034, दूसरा टेलीफोन नंबर है 2808152 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। लीजिए सुनिए देश प्यार का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान, 6:57 हुए हैं, वक्त है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं विनोद कुमार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एसजीवीएनएल को आवंटित की गई 382 मेगावाट सुनी, 210 मेगावाट लुहरी चरण एक और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजनाओं को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिमला में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को एनएचपीसी द्वारा विकसित की जा रही 500 मेगावाट डुग्गर जलविद्युत परियोजनाओं की शर्तों व नियमों पर दोबारा बातचीत करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र को विस्तार प्रदान करने और राज्य के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी के तहत हिमाचल से पहली बार चेरी और प्लम की खेप ओमान पहुंची है। वहां के लोगों ने हिमाचल के फलों की उत्कृष्ट गुणवत्ता व स्वाद की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि किसानों के लिए समृद्धि के द्वार खोलेगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी, जिसमें पर्यावरण अनुकूल और अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। नाहन में आयोजित जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस नीति में स्थानीय युवाओं को अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करवा रही है। किन्नौर जिला के निचार उपमंडल के भावानगर में जनसमस्या सुनने और लोगों से सीधा संवाद करते हुए उन्होंने ये बात कही। जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के हर वर्ग व हर क्षेत्र के समान विकास के लिए कार्य कर रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाएगी। शिमला में उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य की उपनीति भी मेरिट के आधार पर लाई जाएगी। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही, नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: 7 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया।

मोदी और सुश्री तकाईजी ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश पांच प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि

0: सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह एफएम शिमला है। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन, वाचक डॉक्टर हुकम शर्मा।
2: बरसाना में गोविंद दास नाम का एक भक्त रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मुनिया। गोविंद दास के परिवार में मुनिया के अलावा और कोई नहीं था। गोविंद दास सारा दिन अपना कार्य करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत मंदिर में रुके हुए होते उनकी सेवा करते, उनके साथ सत्संग करते। यही उनका हर दिन का नियम था। एक बार एक संत ने गोविंद दास जी से कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, हमारे पास सामान ज्यादा है और हमें रास्ता भी मालूम नहीं, तो तुम हमें नंदगांव पहुँचा सकते हो क्या? गोविंद दास बोले, महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है। शाम को गोविंद दास अपनी बेटी से बोला, कल मुझे एक संत को नंदगांव छोड़ने जाना है, दिन चढ़ने तक आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। अगले दिन गोविंद दास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास पहुंच गए और संत के सामान और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन उठाकर बोले, चलो महाराज, और आगे आगे चलने लगे। एक तो संत जी की उम्र हो चली थी, ऊपर से उन्हें श्वास रोग भी था, इसलिए वे कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस तरह रुक रुक कर चलने में नंदगांव पहुंचने में देरी हो गई। मंदिर पहुंचकर गोविंद

दास जी ने सामान रखा और बोले, महाराज अब चलते हैं। संत जी बोले, भाई तुम इतनी दूर से मेरे साथ आए हो, तनिक विश्राम कर लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। गोविंद दास जी ने कहा, क्या कह रहे हो महाराज, बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, अतः मैं यहाँ जल नहीं पी सकता, ये तो घोर पाप हो जाएगा। संत की आंखों से अश्रुपात होने लगे। संत बोले, ये तो कितने वर्ष पुरानी बात है गोविंद दास, तुम गरीब भले ही हो पर तुम्हारा दिल बहुत नेक है। गोविंद दास संत जी को प्रणाम करके राधे राधे करते रवाना हो लिए। सूरज सिर पर चढ़ाया था, ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत। भगवान को दया आ गई, वे भक्त गोविंद दास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में गोविंद दास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के प्रयास किए पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि भक्त के प्राण संकट में हैं, कोई उपाय नहीं लग रहा है। गोविंद दास राधा रानी का भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, तो उनको ही बुलाया जाए। इतना सोचते ही भगवान राधा रानी के महल की तरफ दौड़ पड़े। राधा रानी ने कन्हैया को इस हालत में देखा और इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान की लीला भी न्यारी है, उन्होंने सोचा राधिका को थोड़ा छेड़ा जाए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हुए हैं, तुम चलकर संभालो। राधा जी चौंकी और बोली, कौन पिताजी? भगवान ने सोचा विलंब करना ठीक नहीं, भक्त के प्राण संकट में हैं, इसलिए श्री राधा को सारी बात समझाई और चलने को कहा। ये भी कहा कि तुमको गोविंद दास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची। पिताजी पिताजी आवाज लगाई और जल पिलाया। गोविंद दास जागे और बेटी से बोले, तू यहाँ कैसे? राधा जी बोली, घर पर हरिया काका आए हैं आपसे मिलने को, तो आपको बुलाने आ गई, आते आते भोजन भी ले आई हूँ, आप भोजन कर लीजिए। गोविंद दास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा, मैं घर पर मेहमानों को संभालती हूँ, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। गोविंद दास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया था। शाम को घर आकर गोविंद दास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं पिताजी? गोविंद दास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए, नहीं तो आज मेरे प्राण ही निकल गए होते। बेटी बोली, मैं तो कहीं गई ही नहीं। गोविंद दास ने कहा, अच्छा बता हरिया कहाँ है? बेटी ने कहा, हरिया काका तो नहीं आए हैं, लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अब गोविंद दास के समझ में सारी बात आई। उसने मुनिया से कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी आई थी मुझे भोजन और जल देने। गोविंद दास भाव विभोर हो गए और सोचने लगे, मेरी किशोरी को मेरे कारण इतनी प्रचंड गर्मी में कष्ट उठाना पड़ा और मैं उन्हें पहचान भी न सका। अब तो मेरे जीवन की बस एक ही आस है कि मुझे फिर से कब श्री राधा रानी के दर्शन मिलेंगे।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं FM शिमला। 7:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा, वाचक डॉक्टर हुकम शर्मा।

नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा में प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से धारावाहिक पाठ। आज आप सुनेंगे चौथे भाग का 33वां अध्याय। शीर्षक है प्रायश्चित रूप उपवास। कुछ जेलवासियों के रिहा होने पर टॉलस्टॉय आश्रम में थोड़े ही लोग रह गए। इनमें मुख्यतः फिनिक्स वासी थे, इसलिए मैं आश्रम को फिनिक्स ले गया। फिनिक्स में मेरी कड़ी परीक्षा हुई। टॉलस्टॉय आश्रम में बचे हुए आश्रम वासियों को फिनिक्स छोड़कर मैं जोहान्सबर्ग गया। वहाँ कुछ ही दिन रहा था कि मेरे पास दो व्यक्तियों के भयंकर पतन के समाचार पहुँचे। सत्याग्रह की महान लड़ाई में कहीं भी निष्फलता जैसी दिखाई पड़ती तो उससे मुझे कोई आघात ना पहुंचता था, पर इस घटना ने मुझ पर वज्र सा प्रहार किया।

मैं तिलमिला उठा। मैंने उसी दिन फिनिक्स की गाड़ी पकड़ी। मिस्टर किलनबेक ने मेरे साथ चलने का आग्रह किया। वे मेरी दयाजनक स्थिति को समझ चुके थे। मुझे अकेले जाने देने की उन्होंने साफ मनाही कर दी। पतन के समाचार मुझे उन्हीं के द्वारा मिले थे। रास्ते में मैंने अपना धर्म समझ लिया, अथवा यूं कहिए कि समझ लिया। ऐसा मानकर मैंने अनुभव किया कि अपनी निगरानी में रहने वालों के पतन के लिए अभिभावक अथवा शिक्षक न्यूनाधिक अंश में जरूर जिम्मेदार हैं। इस घटना में मुझे अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट जान पड़ी। मेरी पत्नी ने मुझे सावधान तो कर ही दिया था, किंतु स्वभाव से विश्वासी होने के कारण मैंने पत्नी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया था। साथ ही मुझे ये भी लगा कि इस पतन के लिए मैं प्रायश्चित करूंगा तो ही ये पतित मेरा दुख समझ सकेंगे और उससे उन्हें अपने दोष का भान होगा और उसकी गंभीरता का कुछ अंदाज बैठेगा। अतएव मैंने 7.5 दिन के उपवास और 4.5 महीनों के एकाशन का व्रत लिया। मिस्टर किलनबेक ने मुझे रोकने का प्रयत्न किया, पर वो निष्फल रहा। आखिर उन्होंने प्रायश्चित के औचित्य को माना और उन्होंने भी मेरे साथ व्रत रखने का आग्रह किया। मैं उनके निर्मल प्रेम को रोक न सका। इस निश्चय के बाद मैं तुरंत ही हल्का हो गया, शांत हुआ। दोषियों के प्रति मेरे मन में क्रोध ना रहा, उनके लिए मन में दया ही रही। यूं ट्रेन में ही मन को हल्का करके मैं फिनिक्स पहुंचा। पूछताछ करके जो अधिक जानकारी लेनी थी सो ले ली। यद्यपि मेरे उपवास से सबको कष्ट तो हुआ, लेकिन उसके कारण वातावरण शुद्ध बना। सबको पाप करने की भयंकरता का बोध हुआ। विद्यार्थियों और मेरे बीच के संबंध अधिक दृढ़ और सरल बन गए। इस घटना के फलस्वरूप ही कुछ समय बाद मुझे 14 उपवास करने का अवसर मिला। ये मेरा विश्वास है कि उसका परिणाम अपेक्षा से अधिक अच्छा निकला था। इस घटना पर से मैं ये सिद्ध नहीं करना चाहता कि शिष्यों के प्रत्येक दोष के लिए शिक्षकों को सदा उपवास आदि करने ही चाहिए, पर मैं जानता हूं कि कुछ परिस्थितियों में इस प्रकार के प्रायश्चित रूप उपवास की गुंजाइश जरूर है, किंतु उसके लिए विवेक और अधिकार चाहिए। जहां शिक्षक और शिष्य के बीच शुद्ध प्रेम बंधन नहीं है, जहां शिक्षक को अपने शिष्य के दोष से सच्चा आघात नहीं पहुंचता, जहां शिष्यों के मन में शिक्षक के प्रति आदर नहीं है, वहां उपवास निरर्थक है और कदाचित हानिकारक भी हो सकता है। ऐसे उपवास या एकाशन के विषय में शंका चाहे हो, परंतु इस विषय में मुझे लेश मात्र भी शंका नहीं है कि शिक्षक शिष्य के दोषों के लिए कुछ अंश में जरूर जिम्मेदार है। 7 उपवास और एकाशन हम दोनों में से किसी के लिए कष्टकर नहीं हुए। इस बीच मेरा कोई भी काम बंद या मंद नहीं रहा। इस समय में मैं केवल फलाहारी ही रहा। 14 उपवासों का अंतिम भाग मुझे काफी कष्टकर प्रतीत हुआ था। उस समय में राम नाम के चमत्कार को पूरी तरह समझाना था, इस कारण दुख सहन करने की शक्ति मुझमें कम थी। उपवास के दिनों कैसा भी प्रयत्न करके पानी खूब पीना चाहिए, इस बाह्य कला की मुझे जानकारी नहीं थी। इस कारण भी ये उपवास कष्टप्रद सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त पहले उपवास सुख शांतिपूर्वक हो गए थे, अतएव 14 दिन के उपवासों के समय में असावधान बन गया था। पहले उपवासों के समय में रोज कुने का कटी स्नान करता था। 14 दिनों के उपवास में 2 या 3 दिन के बाद मैंने कटी स्नान बंद कर दिया। पानी का स्वाद अच्छा नहीं लगता था और पानी पीने पर जी मचलता था। इससे पानी बहुत ही कम पीता था, फलतः मेरा गला सूखने लगा, मैं क्षीण होने लगा और अंतिम दिनों में तो मैं बहुत धीमी आवाज में बोल पाता था। इतना होने पर भी लिखने का आवश्यक काम मैं अंतिम दिन तक कर पाया था और रामायण इत्यादि अंत तक सुनता रहा था। कुछ प्रश्नों के विषय में सम्मिति देने का आवश्यक कार्य भी मैं कर सकता था।

साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा में आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से धारावाहिक पाठ। आज आपने चौथे भाग का 33वां अध्याय सुना। शीर्षक था प्रायश्चित रूप उपवास। और आइए अब सुनते हैं गांधी जी का प्रिय राम।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा, आकाशवाणी 103.7 MHz पर FM शिमला है। 7:20 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। हजारों लड़ाइयों को जीतने से बेहतर है कि तुम खुद पर विजय प्राप्त करो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, शांति और ज्ञान के प्रणेता गौतम बुद्ध ने कहा था। जैस महान विचार के साथ शुरू हो गया है आपका अपना कार्यक्रम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग शिमला, और आप में मेरे साथ यानी जगदीश के साथ। हम सभी जानते हैं कि ये जो महान विचार हैं ये हमें हमेशा संभालते हैं। हम कहीं पर भी विचलित हो जाएं, अपने रास्ते से भटक जाएं, तो ये महान उन अनुभवी लोगों के विचारों के विचार हैं जिन विचारों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इन विचारों के साथ हमारी जीत है और लक्ष्य की प्राप्ति है। हम बहुत कुछ कर लेते हैं, हम बहुत सारा अनुसंधान कर लेते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक उसे हम धारण नहीं करते, उसको आत्मसात नहीं करते, तब तक फिर वो विचार

पूरी तरह से लागू नहीं हो पाते। इसलिए हमें अगर कुछ नियंत्रण करना है तो अपने ऊपर नियंत्रण सबसे पहले, तभी हम किसी चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं। यानी जितनी भी समाज में अच्छी बातें हैं, कोई भी हमारे लिए विचार अच्छा है, तो वो तभी ग्राह्य है अगर हम अपने पर नियंत्रण करते हैं और अपने पर एक अटूट विश्वास बनाते हैं। उसका जो सकारात्मक प्रभाव है वही हमें आगे लेकर निकलता है और जो हमने ठाना है हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिलहाल इस विचार के साथ शुरुआत हुई आज के कार्यक्रम की। आप बने हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गीत आपको हम सबसे पहले सुना रहे हैं, आप सुनिए अरिजीत सिंह और शिल्पा राव का गाया ये गीत। गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, प्रीतम का संगीत।

अरिजीत सिंह और शिल्पा राव का गाया ये गीत आपने सुना। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए, आज प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम लोकवाणी का विषय है हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल। यदि आप इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, विचार साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें आज 8:45 से लेकर 9:15 के मध्य हमारे फ़ोन नंबर 2808034 और दूसरा जो टेलीफोन नंबर है वो है 2808152 यानी 2808034, दूसरा टेलीफोन नंबर 2808152 पर आप संपर्क कर सकते हैं और इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे।

हर दिन की तरह आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है बहुत सारी बातों के लिए। आज 3 जुलाई का दिन, इसी दिन 1928 को लंदन में जेएल बेट्स द्वारा दुनिया के पहले रंगीन टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था। आज ही के दिन 3 जुलाई 1972 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ऐतिहासिक शिमला समझौता हुआ था। और भी बहुत सारी बातें आपको बताएंगे हम, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। हिमेश रेशमिया और राज बर्मन का गाया ये गीत सुनिए और बने रहें हमारे साथ।

हिमेश रेशमिया और राजवर्मन की आवाज़ों में आपने ये मिडिल क्लास लव इस फिल्म का ये गीत सुना और इस गीत को लिखा है शकील आजमी ने। फिलहाल आप बने हुए हैं आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर, कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग शिमला। आज का दिन बहुत सारे लोगों के लिए खास दिन है क्योंकि आज उनका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है और कोई विशेष मौका है, तो आपको आकाशवाणी एफएम शिमला की ओर से बहुत बहुत बधाई। आपको बता दें कि नायक दिगेंद्र सिंह का जन्म 3 जुलाई 1969 को हुआ था। ये भारत के वो नायक हैं जिन्हें 30 साल की उम्र में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने देश के दूसरे सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से नवाजा था। कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी टीम के सहयोग से 48 पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर ना केवल देश को बड़ी कामयाबी दिलाई बल्कि 5 गोलियां लगने के बाद दुश्मन सेना के मेजर को मारते हुए तोलोलिंग की चोटी फतह की और 13 जून 1999 की सुबह तिरंगा लहरा दिया। ऐसे वीर सैनिकों को शत शत नमन।

आकाशवाणी 103.7 MHz पर FM शिमला है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आज प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम लोकवाणी का विषय है हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल। यदि आप इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपना विचार साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें आज 8:45 से लेकर 9:15 के मध्य हमारे फ़ोन नंबर 280-8034, दूसरा टेलीफोन नंबर है 280-8152 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे।

0: शकील आज़मी का लिखा ये गीत आपने यासर देसाई की आवाज़ में सुना और राशिद खान का संगीत। आप बन रहे एफएम शिमला के साथ।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: तीन जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है और ये दिवस प्लास्टिक प्रदूषण की जो गंभीर समस्या है, इसे जो प्राकृतिक पर्यावरण को होने वाले गंभीर खतरे हैं उसके लिए जागरूक किया जाता है, जिसमें स्थलीय और समुद्री जीवन दोनों शामिल है। प्लास्टिक बैग को गलने के लिए जो है काफ़ी वर्ष लग जाते हैं, जिससे लैंडफिल में फेंके जाने पर भूमि प्रदूषण होता है, समुद्र में बह जाने पर समुद्री जीवों के लिए वो ख़तरनाक साबित होता है। इसलिए इसके एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जो है लोगों को जागरूक किया जाता है, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। तो हमें भी इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह से जो भी समय समय पर हमें हिदायतें मिलती हैं या इस तरह का जो दुष्प्रभाव प्लास्टिक का है तो उसे हमें समझना चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए हमें सदैव प्रयास करना चाहिए। आप बने रहे एफएम शिमला के साथ, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला।

0: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या होगा?
0: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
1: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
1: अच्छा,
0: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

0: गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में आज बस इतना ही, और आप बने एफएम शिमला के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको बता दें कि कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम हैं जिन्हें आप आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला से आज सुन सकते हैं। 8:45 पर आप लाइव फोन इन कार्यक्रम लोकवाणी कार्यक्रम सुनेंगे, जिसमें आज का विषय है हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल। इसके लिए आप हमें 2808034 दूसरा टेलीफोन नंबर है 2808152 पर संपर्क कर सकते हैं। 9:30 पर आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम कुदरत के रंग सुनते हैं, और आज 10 बजे आप युगल स्वरों में गीत आप सुनेंगे फिल्मी संगम कार्यक्रम में। ग्यारह बजकर 5 मिनट पर आप पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम सुनते हैं, और 11:30 पर सुनिएगा पहाड़ी संगीत म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:10 पर, और मिला जुला कार्यक्रम यानी सब रंग 2 बजे। तो इन मुख्य कार्यक्रमों के लिए आप बने रहिएगा आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला के साथ। 7:57 हुए हैं, वक्त है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं विनोद कुमार। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाएगी। शिमला में उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्यों की पदोन्नति भी मेरिट के आधार पर लाई जाएगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में सूची लगभग 90% तैयार हो चुकी है, और आवश्यकता पड़ने पर प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि स्कूलों के विलय का कार्य शैक्षणिक सत्र के बीच में नहीं किया जाएगा। सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सोलन में आयोजित जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को भी कहा। नगर निगम सोलन के महापौर व उप महापौर के चुनाव कल संपन्न हुए। इसमें भाजपा की 4 बार की पार्षद सुषमा शर्मा महापौर, जबकि निर्दलीय चुनाव लड़े गौरव राजपूत उप महापौर निर्वाचित किए गए हैं। दोनों जनप्रतिनिधियों ने सभी 17 वार्डों में एक समान विकास करवाने की प्राथमिकता को दोहराया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नगर निगम सोलन में भाजपा की महापौर सुषमा शर्मा व गौरव राजपूत को उप महापौर निर्वाचित होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ये जीत लोकतंत्र, जनविश्वास और सुशासन की राजनीति की जीत है। लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर उपमंडल में पहाड़ी से पत्थर गिरने के दर्दनाक घटना

0: में कल एचआरटीसी के परिचालक ज्ञान सिंह की मौत हो गई। ज्ञान सिंह मंडी जिला के जोगिंद्रनगर क्षेत्र के लड़भड़ोल गांव के निवासी थे। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले महिलाओं ने महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ नाहन में प्रदर्शन किया। समिति की राज्य अध्यक्ष संतोष कपूर ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बढ़ती कीमतों व प्रदेश व केंद्र सरकार को घेरा। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: 8 बजने वाले हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात, कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा

0: प्रांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के

0: इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्र

0: की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ता की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटरपार्ट सनाए तकाईची स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल हिज फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pehalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
3: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders

0: Hollywood, California, to book a place in the round of 16. Mikael Oyarzabal scored twice in the 36th and 89th minutes, while Pedro Porro added the second goal in the 66th minute. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Abhishek. Japanese Prime Minister Sanae Takayuchi's first visit to India since becoming Prime Minister is noticed by most of the dailies. India-Japan unveil ambitious roadmap, PM Modi, Takayuchi deepens strategic ties, leads the Statesman. Financial Express in his editorial piece, Take Charge, writes, UPI can learn from Brazil's PIX, which exempts smaller merchants while allowing charges for larger businesses. The paper elaborates, a decade after its launch, the unified payments interface UPI has become one of India's greatest digital public infrastructure success stories. The numbers continue to astonish. In June alone, UPI processed transactions worth 28.9 lakh crore rupees, about 20% higher than a year earlier, while average daily volumes touched a record 757 million. Digital payments have become an integral part of everyday commerce, from roadside vendors to organized retailers. Yet, beneath this spectacular growth lies a structural concern. Just two players, PhonePe and Google Pay, account for around 80% of all UPI transactions. Crude declines, but government hints won't cut fuel rates, reports the Tribune. Monsoon finally arrives in Delhi, ending weeks of heat and humidity, states the Pioneer. Sirsa Kino earns GI tag, decade of scientific farming bears fruit, informs the Tribune. And finally, simple but effective, Citizen Kane is fueling England's World Cup dreams, writes in the Sun Times about England's football skipper, Harry Kane. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takayuchi strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pahalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip Father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at the FIFA World Cup. And BCCI announced a schedule for India's two-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप एफएम शिमला सुन रहे हैं। 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए एफएम न्यूज हेडलाइंस।
3: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं विनोद कुमार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 11 जुलाई को प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का दौरा करेंगे। अपने इस प्रस्तावित एक दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री केलंग में बनने वाले हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सेंटर का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बाल्टान मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। आकांक्षी जिला चंबा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चनेड़ ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाणित पीएचसी बनने का गौरव प्राप्त किया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला पीएचसी चनेड़ प्रदेश का पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। इस स्वास्थ्य केंद्र को 6 बार कायाकल्प पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि फोरलेन निर्माण के दौरान किसानों, राहगीरों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। पठानिया शाहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत, वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में फोरलेन परियोजना से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा

0: की गई। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही, नमस्कार।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी एफएम शिमला आप सुन रहे हैं, 8:32 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत। सबसे पहले ये लोक भजन हम आपको सुना रहे हैं चारू शर्मा की आवाज़ में।

वर्षा कटोच के गाए इसी लोकगीत के साथ अब लोक संगीत में इतना ही। आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: सुनेंगे लोकवाणी लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी शिमला से साप्ताहिक कार्यक्रम जन जन की वाणी लोकवाणी।
2: नमस्कार, लोकवाणी कार्यक्रम के आज के संक में आप सभी का स्वागत है। आज के युग को डिजिटल युग कहा जाता है। गांव हो या शहर, हर हाथ में मोबाइल की ताकत है। आज सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हैं। सरकारी सुविधाओं की पहुंच अब सीधे आम आदमी तक हो सकी है। आप आदमी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए सरकारी सुविधाएं कैसे ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है, आज इसी विषय को लेकर हम लोकवाणी कार्यक्रम लेकर उपलब्ध हुए हैं। आज का हमारा विषय रहेगा हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल। यदि आप आज के विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 2808034, और दूसरा नंबर हमारा रहता है 2808152। तो आज हम जानेंगे कि आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए कई सुविधाएं ऑनलाइन की जा चुकी हैं। तो इस संबंध में आज विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे अनिल सेमवाल जी से। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं अनिल सेमवाल जी। आप संयुक्त निदेशक हैं डिपार्टमेंट डिजिटल

0: डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, अनिल सेमवाल जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है
1: जी।
0: तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जैसे आज हमारा विषय है हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल, तो ऑनलाइन जो ये बात कर रहे हैं हम हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल की, तो ये है क्या, इसकी शुरुआत करने के पीछे सरकार का क्या दृष्टिकोण और क्या उद्देश्य रहा है, विस्तार से जानेंगे आज हम आपसे
1: जी। तो जो ये हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल है, ये ई डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो है ये एक हमारा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन एंड गवर्नेंस जो विभाग है उसकी एक अनूठी पहल है, जिसमें हम लोग जिसका इसका जो उद्देश्य है वो विभिन्न सरकारी जो सेवाएं हैं उनको दूर दराज के क्षेत्रों में ऑनलाइन प्रदान करना है, ताकि लोगों को घर बैठे ये सुविधाएं मिल सके और उनको लंबी लंबी लाइनों में कतारों में ना खड़ा होना पड़े, और उनकी एक तो समय की बचत हो, दूसरा जो उनको इधर उधर जाने के लिए आने जाने में जो खर्चा उठाना पड़ता है वो भी ना हो। तो ये इस उद्देश्य से ये शुरू की गई थी ये सारी सुविधाएँ। आप जैसे देखते हैं कि आजकल जो आधुनिक युग है, आधुनिक तकनीक का ज़माना है, तो ऐसे में सभी जो जितने भी सरकारें हैं वो सब ये प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सुविधाएं जो है ऑनलाइन दी जा सके, क्योंकि इंटरनेट अब इतना इजीली इतना आसानी से उपलब्ध है, तो ये सुविधाओं को देना ज़रूरी है।
0: अनिल सेमवाल जी, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल की
1: जी,
0: तो आम जो नागरिक है उनको कौन कौन सी सेवाएं इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं?
1: देखिए, इसमें जो मुख्यता है वो तो जो हमारी अलग अलग अलग की सेवाएं हैं, जैसे एक तो है जो हमारी प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट्स जो कहते हैं, हम अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट्स हैं, दूसरा है लाइसेंसेस, अलग अलग जो लाइसेंसेस हैं वो हैं उस इसके अंदर, कुछ जन उपयोगी और बिल भुगतान सेवाएं संबंधित जो जिनको यूटिलिटी पेमेंट्स भी कहते हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत है। इसके अलावा सामाजिक कल्याण एवं पेंशन योजनाएं, तो इस तरह से जो सोशल वेलफेयर और पेंशन स्कीम्स जो जिनको हम कहते हैं, तो वो भी इसके माध्यम से उपलब्ध हैं। इसके अलावा कुछ परिवहन सेवाएं, जैसे कि आपकी व्हीकल सर्विसेज, आपका ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, आरसी रिन्यूअल है, फिटनेस सर्टिफिकेट है, और आप कुछ जैसे एचआरटीसी के कंसेशनल पासेज हैं, उस तरह के इसके अंदर जो परिवहन से रिलेटेड है उस तरह की अलग अलग सुविधाएं हैं। इसमें अभी तक जो है वो कुल 622 जो हैं वो सेवाएं हैं, जो अलग 111 अलग अलग जो हमारे सरकारी विभाग हैं उनकी 622 टोटल हैं, तो काफ़ी सारी सुविधाएं इसके अंदर हैं। और सरकार का अब ये है कि जितनी भी अलग अलग सरकारी सेवाएं हैं एकीकृत रूप से, इंटीग्रेटेड वे में, एक ही जगह से इसी पोर्टल के थ्रू दी जा सके, सबका जो लिंक है वो यहाँ पे अवेलेबल हो, तो लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े, इसी पोर्टल के माध्यम से वो लोग अलग सर्विसेज को अवेल कर सकें।
0: और इसे हिम सेवा पोर्टल कहा
1: जी,
0: जाता है।
1: हिम सेवा पोर्टल
0: जी। और जैसे कि अनिल सेमवाल जी, जो ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएँ हैं
1: जी,
0: वो भी क्या इसी के माध्यम से यही सेवाएं हैं जो उपलब्ध करवाई जा रही हैं?
1: हाँ,
0: इसी तो को ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं
1: जी जी। शुरू में ये था कि जब इसकी शुरुआत हुई थी इस प्रोजेक्ट की, तो ये ई डिस्ट्रिक्ट के नाम से शुरू हुआ था, तो जो हमारे जो जिला स्तर पे जो 51 सेवाएं थी जिनके जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स थी, तो उनको आइडेंटिफाई किया गया था, तो उसमें इसको शुरुआत वहाँ से हुई थी। इसके बाद फिर इसको जब इसमें सेवाएं और ऐड की गई, तब उसको हिम सेवा कहा गया। तो है इसका बेस ई डिस्ट्रिक्ट ही, लेकिन अब ये हिम सेवा पोर्टल
0: के नाम से जाना जाता है जी। लोकवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जा रहा है। आज का हमारा विषय है हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल। यदि आप आज के विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स हमारे जाने पहचाने हैं, 2808034, और हमारा दूसरा नंबर है 2808152। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है अनिल सेमवाल जी। सेमवाल जी, इससे पहले कि हम आपसे कुछ जाने, एक कॉलर आपसे बातचीत करना चाहते हैं
1: जी।
0: हेलो हेलो, शायद संपर्क टूट चुका है कॉलर से।

0: सिंहपाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आम नागरिक इस पोर्टल पर पंजीकरण करके सेवाओं का लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है?
1: इसमें पंजीकरण का तरीका जो बहुत ही आसान कर दिया गया है, अब सरकार ने निर्णय ये लिया है कि जो भी सरकार की विभिन्न सेवाएं हैं वो हिम एक्सेस के माध्यम से उपलब्ध होंगी। हिम एक्सेस का मतलब ये है कि एक तरह का एक आईडी होगा, हिम एक्सेस आईडी, जो सबको, पूरे जितने हिमाचल के नागरिक हैं उनको दिया जाएगा, और इस आईडी को आधार के माध्यम से लिया जा सकता है या मोबाइल नंबर के माध्यम से लिया जा सकता है। तो हिम एक्सेस में एक बार किसी जो नागरिक है उसका EKYC किया जाता है, जब एक बार EKYC हो गया तो उसको एक हिम एक्सेस आईडी अलॉट हो जाता है। तो अब फिर जितनी भी सेवाएं हैं सरकार की, अलग अलग विभागों की, सारी सेवाएं इस हिम एक्सेस आईडी के माध्यम से ली जा सकती है। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही आसान है। तो पहला तो ये स्टेप है कि आप अपना पोर्टल के अंदर रजिस्टर करेंगे हिम एक्सेस आईडी के थ्रू, आपको एक हिम एक्सेस आईडी अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी सेवा को के लिए उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए इसमें आपका जो मुख्य जो आपकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी इससे हिम एक्सेस आईडी से ही निकल जाती है, जैसे आपका आधार नंबर है, नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सब सारी वहाँ से आती है। उसके बाद जो सर्विस से रिलेटेड अन्य जो जानकारियाँ हैं वो आपको भरनी होती हैं।
0: जी, इस बीच एक कॉलर हैं, आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं, तो इन्हीं से बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो,
0: नमस्कार
2: जी। नमस्ते, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से।
0: जी योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है लोकवाणी कार्यक्रम में, क्या जानना चाहेंगे? आज हमारे साथ अनिल सेमवाल जी हैं।
2: जी, हम ये जानना चाहते हैं इस पोर्टल से मतलब वहाँ के लोकल लोगों के लिए ही सुविधाएं हैं या फिर जो अन्य राज्य से जो जिनको जरूरत पड़ सकता है उनको भी कुछ लाभ मिल सकता है।
1: एक कॉल करने के लिए धन्यवाद, लेकिन ये जो सेवाएं हैं ये केवल हिमाचल के लोगों के लिए ही है। हर एक, जैसे छत्तीसगढ़ से आप फ़ोन कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का पोर्टल उपलब्ध है। हो सकता है वहाँ पे सेवाएं कुछ कम ज़्यादा हों, लेकिन सुविधा वहाँ भी है, आप उनके पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये हिमाचल के नागरिकों के लिए ही है। धन्यवाद।
0: धन्यवाद योगेश जी कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी, जैसे कि आज हम हिम सेवा पोर्टल की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि किस तरह से इसमें नागरिक जो हैं सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, परंतु अक्सर नागरिकों को लगता है कि ऑनलाइन पोर्टल पर सिर्फ कुछ बुनियादी सर्टिफिकेट ही मिलते हैं। इस पोर्टल पर कितने विभागों की कितनी सेवाएं लाइव हैं इस समय?
1: जैसे कि मैंने, ये एक भ्रांति है कि यहाँ पे केवल सर्टिफिकेट्स ही मिलते हैं, और ऐसा नहीं है। वास्तव में हिम सेवा पोर्टल है, जैसे मैंने बताया, 111 सरकारी विभागों की 622 अलग अलग सेवाएं उपलब्ध हैं, और ये जो सेवाएं हैं ये निरंतर बढ़ती जा रही हैं। पिछले साल जो थी वो मेरे ख्याल 250 के करीब थी, और इस बार हम 622 हम कर चुके हैं इनको, और ये बहुत जल्दी ही बढ़ती जा रही है एक्सपोनेंशियली। तो सरकार की जो मंशा है वो ये है कि कम से कम जितनी भी सेवाएं हैं अलग अलग विभागों की, सारी इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा सके। तो हमारे को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हम ये नंबर है ये हम 800 तक पहुँचा देंगे। तो जैसे मैंने बताया कि सर्टिफिकेट ही नहीं, बिजली पानी के कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है आपको, बिजनेस से जुड़े लाइसेंसेज हैं, उस तरह की चीज़ें भी उसमें हैं, जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट रेवेन्यू कोर्ट्स रहते हैं जहाँ पे आपके रेवेन्यू केसेस जो अलग अलग लगते हैं उसके लिए भी आप इसके माध्यम से अप्लाई भी कर सकते हैं, और इसकी जानकारी जो है कोर्ट केसेस की वो भी इसी पे उपलब्ध है
0: जी।
1: तो ये पूरा एंड टू एंड इसके अंदर पूरी सुविधा है।
0: हमारी चर्चा जारी रहेगी। एक कॉलर आपसे कुछ जानकारी चाह रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
3: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
3: मैम, मैं टूटी गंडी से निर्मल बोल रही हूँ।
0: जी कहिए निर्मल जी।
3: हाँ जी सर को नमस्कार।
1: जी नमस्कार
3: सर, ये जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनते हैं
1: जी,
3: एक मिनट में अपना रेडियो बंद कर दूँ।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, तभी आप समझ पाएंगे इस बात को।
3: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं सर ये जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनते हैं ये एक तो महंगे है और दूसरा टाइम ज़्यादा लगता है। पहले ऐसा होता था, मैंने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया

0: जी
1: पहले ऐसा होता था, पटवारी से रिपोर्ट लिखा के ले जाओ, एफिडेविट बनाओ, तहसीलदार से साइन कराओ और बन जाता था, एक ही दिन में मैक्सिमम ये बन जाता था।
0: जी
1: अब ऑनलाइन अप्लाई करो, उसकी फीस लेते हैं, एफिडेविट की फीस लेते हैं, और करते करते मैंने जो बनाया 450 में मेरा सर्टिफिकेट बना, और टाइम अलग लगा, 8 दिन लग गए मुझे भागते दौड़ते।
0: जी
1: हाँ, तो ये ऑनलाइन सिस्टम, ये तो मैं लगता है ये पहले से ज्यादा दिक्कत वाला।
0: मुश्किल हो गया आपके लिए
1: हाँ जी,
0: निर्मल जी।
1: पर
0: जब कोई शुरुआत होती है तो थोड़ी सी मुश्किल तो आती ही है, नहीं, मैं इसको
1: और
0: एक्सप्लेन कर
1: अगर
0: देता
1: हो,
0: हूँ।
1: पर आपकी बात सुन के ऐसे लग रहा है आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। जी
0: हाँ, कुछ कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं, रेयर केसेस, जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आई हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है, जैसे इन्होंने बताया कि पहले ऐसा होता था कि आप एक बार चले जाओ, सारा कुछ वहाँ पे लेके जाओ और आपको एक दिन में ही सर्टिफिकेट मिल जाता था। लेकिन ये सही नहीं है। आप देखें, अगर आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए अलग अलग तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेने होते हैं। आपको जमाबंदी की कॉपी चाहिए, आपको और भी जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब इकट्ठे करने होते हैं। तो उसको इकट्ठे करने में ही बहुत सारा समय चला जाता है पहले तो आपको पहले वो इकट्ठे करने पड़ते हैं। उसके बाद आप एक बार जाओगे, फिर पता चला वहाँ पे कोई चीज़, कोई एक डॉक्यूमेंट में कमी रह गई है, तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा। तो ये इतना आसान नहीं था पहले भी, और पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब जो ये ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक जगह से ही, जैसे जमाबंदी की कॉपी है वो अटैच करवा सकते हैं, परिवार की नकल है वो आप सीधा ही एक जगह से ही आप अटैच करवा सकते हैं। 8 दिन की जहाँ तक बात है, इसमें अब जो है वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट भी लागू है। तो अब उसके थ्रू भी अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी लोगों को सेवाएं दी जा सके और पेंडिंग ना रहे। और बहुत बड़ी बात ये है कि अभी तक तो ये पता ही नहीं था कि कितने लोगों ने अप्लाई करा है जो आप मैनुअल सिस्टम के अंदर है, और कितने लोगों को सेवाएं दे दी गई है। लेकिन जो ये ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें एटलीस्ट ये तो पता लग जाता है कि आपने कब अप्लाई किया था और कब उसको सेवा दी गई। तो इस तरह की मॉनिटरिंग जो है वो राज्य स्तर पर की जा सकती है, और उस इससे लोगों को ज़रूर फायदा होगा।
1: जी। इस बीच एक और कॉलर है।
0: जी
1: हेलो
2: हेलो, नमस्कार
1: नमस्कार।
2: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई, मेरा गांव का नाम है गुंडा।
1: हाँ जी राकेश जी, क्या जानना चाहेंगे?
2: मेरे दो प्रश्न है।
1: जी
2: पहला प्रश्न ये है कि जैसे कि मैंने सारा योजना के लिए अप्लाई किया कि उसमें केवाईसी का आ रहा है, तो मैं ऑनलाइन अपनी केवाईसी कैसे कर सकता हूँ? और दूसरा प्रश्न ये कि अब जैसे हर चीज ऑनलाइन हो सकती है, क्या जो गैस सिलेंडर, क्या ऑनलाइन बुक नहीं कर सकता कि लोगों को गाड़ी का इंतजार नहीं करना पड़े?
0: जी तो राकेश जी, ऐसा है, पहली बात तो आपने ई के वाई सी ऑनलाइन की बात की, तो ऑनलाइन आप ई के वाई सी आसानी से कर सकते हैं। आप हमारा जो ये हिम एक्सेस सिस्टम है, इसके अंदर आप जा सकते हैं और वहाँ पे ई के वाई सी ऑनलाइन करवा सकते हैं। और
2: जी
0: जहाँ तक बात रही जो आपकी सहारा योजना की बात आप कर रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक योजना है जो इसमें आप एक अपने लोक मित्र केंद्र पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी जाके अपना ई के वाई सी करवा सकते हैं।
2: जी
0: दूसरा सवाल था इनका रिलेटेड टू क्या था, दूसरा क्या सवाल था
2: जो
0: आपका?
2: जैसे हम गैस सिलेंडर
0: गैस
2: को,
0: सिलेंडर, हाँ,
2: जी
0: गैस सिलेंडर आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं आसानी से।
2: जी
0: हर एक जितनी भी जो भी आपकी अलग अलग गैस एजेंसीज हैं, उनकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे एचपी की एचपी गैस एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड करें और उसके थ्रू आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, सिलेंडर घर ही आ जाता है।
1: धन्यवाद राकेश जी। लोकवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जा रहा है। आज का हमारा विषय है हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल। यदि आप आज के विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम आपको दोबारा से अपने फ़ोन नंबर बता रहे हैं, जिन जो पहले नंबर बताए थे उनमें कुछ बदलाव हुआ है। तो हमारे अब नंबर हैं 2808152, और हमारा दूसरा नंबर है 2970400। एक बार फिर से आपको ये नंबर नोट करवा देते हैं, 2808152, और हमारा दूसरा नंबर है 2970400। अनिल सेमवाल जी, एक कॉलर आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं, कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हेलो
3: हेलो,
1: नमस्कार
3: नमस्कार जी।
1: जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं विनोद ठाकुर बोल रहा हूँ।
1: जी
3: हिम
1: विनोद
3: सेवा,
1: जी, क्या जानेंगे हिम सेवा पोर्टल के बारे में?
3: ये स्कूल्स में ना ये स्कॉलरशिप के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं।

0: मोस्टली स्कूल ही काम करता है, तो
1: जी
0: क्या ये बच्चे भी खुद और ज्यादातर या कहें तो लोक मित्र केंद्र या वहां से फिर इनको ये काम करवाना पड़ता है, तो
1: जी
0: कोई इस तरह का इंसेंटिव लेके स्कूल्स में भाई हाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे कैसे अपने आप को इस पे वो करें, रजिस्टर करवाएं और अपना काम स्वयं करें डिजिटल जो टेक्नोलॉजी।
1: विनोद जी, उनको शायद इसमें प्रॉब्लम आती होगी, बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह हैं, जैसे कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स के लिए होती होगी प्रॉब्लम। चलिए, अनिल सेमवाल जी बताएंगे आपको किस तरह
0: और
1: से कर
0: दूसरी
1: सकते
0: बात
1: हैं।
0: दूसरी मैडम, जैसे इम्प्लॉयज हैं सारे या कोई
1: जी
0: भी, इसमें आप खुद नहीं कर सकते भाई वो इसके रजिस्ट्रेशन हो अपने काम करें।
2: जी ऐसा है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये हिम सेवा पोर्टल है इसमें आपको किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आप
1: इसमें आवेदन की
2: खुद ही
1: कैसी
2: आप सीधा
1: प्रक्रिया
2: अप्लाई कर
1: रहेगी?
2: सकते हैं
1: जी
2: इसमें। ये बात कर रहे हैं ई स्कॉलरशिप की, इन्होंने जो
1: हाँ
2: बात
1: जी
2: की, वो जो पोर्टल है वो उपलब्ध है स्कूलों को।

0: अपने काम करें।
1: जी ऐसा है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये हिम सेवा पोर्टल है इसमें आपको किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये बात कर रहे हैं ई स्कॉलरशिप की, इन्होंने जो बात की, वो जो पोर्टल है वो उपलब्ध है स्कूलों को, तो वो स्कूलों के माध्यम से अप्लाई करना होता है, क्योंकि जो वो जानकारी है वो स्कूलों में ही होती है। उसमें वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, जो स्टूडेंट का अब स्कॉलरशिप मिलना है जिसको, तो स्टूडेंट का वेरिफिकेशन ज़रूरी है, तो इसलिए वो उसमें जो वो सेवा दी गई है वो स्कूलों को ही है। तो एक हर एक जो सेवा है उसका अलग अलग जो एक वर्क फ्लो होता है ना, एक SOP होता है, तो उसके आधार पर ही करना होता है। अगर स्टूडेंट्स को सीधा दिया जा सकता है, लेकिन जो वेरिफिकेशन है वो तो स्कूल ही करेगा, तो इसलिए वो अभी स्कूलों के पास
2: ही,
1: लेकिन अब धीरे धीरे जो है, ये बात सही है कि जब आपके जो वेरिफिकेशन प्रोसेसेस है वो आसान हो जाएंगे, जैसे कि हमने EKYC जो हमने डाला है, आधार से संबंधित जो EKYC है उसमें वेरिफिकेशन आसान हो जाता है किसी भी नागरिक का, तो अब हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, और लोग ताकि खुद ही अप्लाई कर सकें और वेरिफिकेशन भी आसानी से हो जाए।
2: जी, जैसे कि इन्होंने कर्मचारियों की बात की कि एम्प्लॉइज़ को भी जैसे दिक्कत आ रही है, किस तरह से आवेदन करना है, किस तरह से क्या, वो आपने बताया था किस तरह से, शायद इन्होंने देरी से सुना होगा हमारा प्रोग्राम।
1: ये सुविधाएं सभी, वो चाहे कर्मचारी है चाहे कोई भी नागरिक है, ये सभी के लिए उपलब्ध है, तो
2: एक जैसा है,
1: ऐसा कोई
2: जी,
1: अलग
2: जी बिल्कुल जी। पोर्टल पर अगर कोई अपना आवेदन की स्थिति देखना चाहे तो कैसे देख सकता है?
1: हाँ,
2: तो अगर कोई गलती हो जाए तो उसे कैसे दुरुस्त कर सकता है, ये सारी समस्याएं हैं।
1: जी मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो बहुत ही जो ज़रूरी चीज़ जो इसमें हुई है, वो समय के साथ साथ जो है वो आधुनिक तकनीक को भी इसमें जोड़ा गया है, जैसे कि अब आजकल आर्टिफिशियल का ज़माना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, AI, तो उसके अंतर्गत हमने ये करा है अब कि जो जब कोई भी नागरिक जो है वो अप्लाई करता है तो अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स वो अटैच करता है। मान लो अपना आधार लगा रहा है, या अपनी जमाबंदी कॉपी लगा रहा है, या कोई और डॉक्यूमेंट है जो अपलोड कर रहा है वो, तो जो अब AI क्या करता है, अपने ही मतलब बिना किसी के इंटरवेंशन से वो खुद ही उस डॉक्यूमेंट को पूरा स्कैन करता है, उसको चेक करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट इसने लगाया है वो सही है या गलत है, खुद से। और उसमें अलग अलग जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे नाम है उसका, डेट ऑफ बर्थ है उसका, लिंग है, इस तरह की चीज़ें वो चेक करता है कि वो जो उसने एप्लीकेशन के अंदर भरा है वो, और जो डॉक्यूमेंट के अंदर है वो, क्या आपस में मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि शुरू में ही नागरिक को ये पता चल जाता है कि जो डॉक्यूमेंट उसने लगाया है वो सही है कि नहीं है। हो सकता है गलती से उसने गलत ही कोई डॉक्यूमेंट लगा दिया हो, लोग लोकमित्र केंद्र पर जाते हैं, वहाँ पर पता चला इसके बजाय किसी और का डॉक्यूमेंट गलती से अटैच हो गया। तो इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है कि AI के थ्रू उसको पहले ही चेक हो जाता है कि वो जो डॉक्यूमेंट लगाया वो सही है कि नहीं है, और उसके अंदर जो पैरामीटर है वो सही है कि नहीं। के बाद दूसरा, जब ये डॉक्यूमेंट ऑफिसर के पास चला जाता है, वहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, उसको भी पता लग जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट लगा है ये सही है कि नहीं है। तो इससे एक तो स्पीड अप हो जाता है सारा सिस्टम, और दूसरा गलतियाँ कम हो जाती है।
2: जी, इस बीच एक कॉलर हैं, हेलो, इस बीच एक कॉलर हैं, हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी,
3: नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार,
3: सपना बहन जी को भी नमस्कार, और अधिकारी महोदय जी को भी नमस्कार। जी
1: जी नमस्कार,
2: नमस्कार जी।
3: मैं तहसील करसो गांव तलहन से, मैं बोधराज वर्मा बात कर रहा हूँ जी।
1: जी वर्मा जी,
3: अधिकारी महोदय जी, मेरे दो प्रश्न है। जो हमारा पहला प्रश्न है, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है ना जी,
1: जी,
3: इसमें सैकड़ों के हिसाब से नहीं हजारों के हिसाब से अभी भी अनपढ़ लोग हैं, तो जैसे ऑनलाइन जो सिस्टम बताया आपने जी,
1: जी,
3: तो वो कैसे ऑनलाइन कर पाएंगे उनको, तो क्योंकि कई बार तो ऐसा सुनने में आता है कि भाई बैंक से कैश भी नहीं मिला, ऑनलाइन मिलेगा कैश, तो बेचारे कैसे लेंगे वो कैश, है ना जी, नंबर एक
1: जी।
3: और दूसरा, जैसे हम दृष्टिहीन लोग हैं, क्या नाम, हम लोगों को तो आफत है, यदि कैश नहीं मिलेगा, यदि ऑनलाइन करना पड़ेगा तो हमें तो आफत है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, कृपया आकाशवाणी शिमला के माध्यम से विस्तार से बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।
1: जी धन्यवाद। तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे वो दृष्टिहीन हो चाहे और भी जितनी तरह के लोग हैं, सभी के लिए, जो अनपढ़ लोग हैं या जिनके पास ना ही कोई डिवाइस का एक्सेस है और ना ही इंटरनेट वगैरह है, तो उनके लिए जो हमारे हिमाचल के अंदर 7,000 से अधिक लोकमित्र केंद्र है, तो ये लोग अपने नज़दीकी लोकमित्र केंद्र, कम से कम एक लोकमित्र केंद्र हर पंचायत में कम से कम एक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और इन लोकमित्र

0: केंद्रों के माध्यम से इन सारी सेवाओं को का लाभ आप उठा सकते हैं।
1: जी
0: तो ये
1: बिल्कुल
0: इसीलिए
1: जी
0: है, आइडिया तो ये है कि धीरे धीरे लोग खुद ही करें, लेकिन जो जो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक परेशानी है कि लोगों के पास एक्सेस नहीं है कुछ लोगों के पास, तो उनके लिए ये लोक मित्र केंद्र उपलब्ध हैं।
1: जी जैसे कि इन्होंने भुगतान की बात की, तो भुगतान की अब धीरे धीरे सब सीख भी रहे हैं, परंतु इस पोर्टल के माध्यम से जैसे कि बिल चुकाने के लिए या दूसरी सेवाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, तो अनिल सेवाल जी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये पोर्टल इन सेवाओं के लिए सुरक्षित है?
0: हाँ, तो मैं एक तो पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर जो सेवाएं उपलब्ध हैं उसमें कुछ तो ऐसी हैं, जैसे आप सर्टिफिकेट की बात कर लें, लाइसेंसेज वगैरह इन सब की बात है, उसकी जो फीस है, एक तो सरकारी फीस होती है, आप मैनुअली भी जाएंगे तब भी आपको
1: हाँ
0: सरकारी
1: जी
0: फीस देनी
1: जी
0: पड़ेगी। तो वो एक तो है सरकारी फीस, एक है जो सेवा शुल्क जो है, क्योंकि आपको सुविधा जो है आपके घर द्वार पे दी जा रही है, उसका खर्चा भी है, उसको सस्टेन रखना है, उसको सिस्टम को चलाना है, तो उसके लिए जो बहुत ही नॉमिनल इसमें सेवा शुल्क लिया जाता है, तो उसकी जो पेमेंट है वो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो अपने किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ऑनलाइन इंटरनेट नेट बैंकिंग सिस्टम है, या आपके पास UPI है और ये QR कोड वगैरह, इस तरह से सारी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इनके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, जो कि पूरा सिक्योर्ड है, सरकार के द्वारा ये उपलब्ध कराया गया सिक्योर्ड सिस्टम है, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सुरक्षा के दायरे में जो जो भी करना होता है वो सारे जो सावधानियाँ वो बरती गई हैं जो ये गेटवे लगाए गए हैं। दूसरा है जो आपको लोक मित्र केंद्र पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ तो आपको कैश ही करना होता है, तो वहाँ इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके पास ऑनलाइन सेवा ऑनलाइन पेमेंट करने का फैसिलिटी नहीं है, तो आप वहाँ जाके ये लोक मित्र पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं कैश में, तो उसकी भी कोई परेशानी नहीं है। बाकी इन्होंने शायद एक और जो मुद्दा उठाया था कि जो बिलिंग बिल वगैरह है, ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं
1: बिल है
0: वो
1: या
0: भी,
1: दूसरी जो
0: हाँ,
1: सेवाएं
0: तो वो
1: हैं
0: भी पूरा
1: जिसका
0: क्रेडिट
1: भुगतान
0: कार्ड,
1: करते
0: डेबिट
1: हैं?
0: कार्ड, UPI, ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह, सब सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इन सब के
1: जी
0: माध्यम
1: जी
0: से की जा सकती है।
1: और तकनीकी समस्याओं या जो शिकायतें हैं
0: जी
1: उनके समाधान के लिए क्या व्यवस्था की गई है?
0: हाँ,
1: जैसे
0: तो
1: कोई आवेदन में ही गलती कर देता है,
0: जी
1: मान
0: तो
1: लीजिए।
0: इसमें जो सिस्टम है वो ये है कि अगर आपका जो मैंने जैसे तो एक बताया कि AI पहले ही चेक कर देता है कि कोई गलती तो नहीं होगी, दूसरा ये है कि अगर आपने फिर भी अटैच कर दिया, कोई कमी रह गई है, तो पूरा सिस्टम है, ये जो एप्लीकेशन है वापस आती है ऑब्जेक्शन के साथ, और वो एक अधिकारी को पूरा मेंशन करना होता है कि इसमें क्या कमी है, तो वो पूरी की पूरी डिटेल जो है वो वापस आ जाती है सिटीज़न के पास कि अब इसमें ये कमियां हैं। अब आप देखें अगर मैनुअल सिस्टम में कोई कमी निकली तो आपको पूरा वापस जाके फिर दोबारा से आना पड़ेगा, इसमें वो है कि आपको घर बैठे ही वो परेशानी जो जो जो उसमें कमी रह
1: सामने
0: गई
1: आ
0: है
1: जाते
0: वो
1: हैं।
0: वहीं पे ही मिल जाती है, और आप वहाँ पे उसको करेक्ट करके वापस सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन ही, तो ये सुविधा इसके अंदर उपलब्ध है।
1: जी अनिल सेवाल जी, जैसे कि पहले लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, तो क्या इस पोर्टल ने उस समस्या को कम किया है काफी हद तक?
0: जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये कोविड का जो समय आया था उस टाइम के बाद जो इसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ी हैं। तो आज पिछली साल जो हमारी अगर आप जनसंख्या देखें हिमाचल प्रदेश की, वो है करीब करीब 70-72 लाख, तो उसके उसके अगर उसके हिसाब से देखें तो हमारी जो ट्रांजैक्शंस जो हैं, हाँ, जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो है करीब करीब 30 लाख पर एनम, पर ईयर जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर रहे हैं और सारी सुविधाएं ऑनलाइन ही ले रहे हैं। अभी जो वर्तमान में अभी 7वां महीना चल रहा है, शुरू ही हुआ है, तो अभी ही करीब करीब 16 लाख जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ऑलरेडी इसी पोर्टल के माध्यम से हो चुकी हैं। अब जैसे हम सर्विसेज बढ़ा रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं और भी ज़्यादा बढ़ेंगी, तो लोग भी इसमें रुचि ले रहे हैं, लोक मित्र केंद्र के माध्यम से ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स आती हैं, लेकिन खुद खुद भी लोग अप्लाई करते हैं, तो करीब करीब 80% जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो लोक मित्र केंद्र के माध्यम से ही आती हैं।
1: और अगर किसी को कोई सहायता चाहिए
0: जी
1: या कोई समस्या आ
0: जी
1: रही है, तो
0: जी
1: नागरिकों के लिए कोई टोल फ्री नंबर है?
0: बिल्कुल, टोल फ्री नंबर है जो हमारा ये ई डिस्ट्रिक्ट का टोल फ्री नंबर है, एक तो ये हमारा जो himseva.hp.gov.in है, इस पोर्टल के ऊपर भी लिस्टेड है, जो है 1800
1: जी
0: 180 8076, तो ये हमारा टोल फ्री नंबर है जो

0: पोर्टल के ऊपर भी अंकित है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और ये आप उसको नोट भी कर सकते हैं। इस पे आप कॉल कर रहे हैं, कोई भी परेशानी आ रही है आपको तो आपकी आपका सहयोग किया जाएगा। अगर कई बार जैसे इन्होंने अभी एक श्रोता ने कहा कि 8 दिन लग गए हमें, तो अगर
1: जैसे
0: इस
1: निर्मल जी ने
0: हाँ
1: कहा था।
0: हाँ तो
1: हाँ
0: अगर
1: जी
0: इस तरह की भी कोई परेशानी हो रही है, ज़्यादा समय लग रहा है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम फिर पूरा प्रयास करते हैं कि उनको जल्दी जल्दी सेवा दी जा सके।
1: अनिल सेवाल जी, इस बात को लेकर मैं भी ये बात कहना चाहूँगी, जो यंग जनरेशन है वो तो जल्दी से सीख लेती है,
0: जी
1: जो हम जैसे लोग हैं एक बार करते हैं दूसरी बार
0: भूल
1: भूल
0: जाते हैं।
1: जाते हैं,
0: जी
1: और वाकई की पहले जो सर्टिफिकेट्स अपलोड करो या वो करो
0: हाँ
1: तो समय लग जाता है। फिर पहले ही होता था, सारे प्रमाण पत्र हम इकट्ठे लेके जाते थे, फॉर्म भर के दे
0: जी
1: देते थे,
0: जी
1: तो थोड़ी सी समस्या तो रहेगी, क्योंकि हम जैसे लोग, जो हमारे जैसे निर्मल जी जैसे लोग हैं, तो धीरे धीरे सीखने में थोड़ा समय लगेगा, तो ऐसी समस्याएं जल्दी हल हो जाती हैं।
0: जी
1: तो और कुछ आप लोगों
0: मैं
1: को इस
0: इसमें
1: हिम सेवा पोर्टल के बारे में कुछ कहना
0: हिम
1: चाहेंगे?
0: सेवा पोर्टल के बारे में तो मैं कहूँगा, लेकिन मैं एक आप जो आपने एक सवाल उठाया इस पे मैं एक कहना चाहता हूँ कि ये एक इनिशियल हेजिटेशन होती है।
1: जी,
0: अगर आप एक
1: झिझक
0: बार
1: रहती
0: झिझक
1: है।
0: रहती है, अगर आप एक बार शुरू कर देंगे
1: हाँ
0: इसको
1: जी
0: इस्तेमाल करना, तो आपको ही लगेगा कि यार ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ करने को है ही नहीं। बस एक इनिशियल जो है समस्या, बाकी लोक मित्र केंद्र तो आपके लिए हैं ही, आप नज़दीकी कहीं भी जा सकते हैं और वहाँ पे इसको सेवा को का लाभ उठा सकते हैं।
1: और
0: इसके
1: सीखने की कोई भी उम्र नहीं
0: हाँ
1: होती
0: बिल्कुल नहीं
1: है
0: होती,
1: ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लर्निंग
0: ये तो
1: प्रोसेस रहना चाहिए जीवन में।
0: समय के साथ आपको बदलना ही पड़ता है। अब ये सारी जो सेवाएं हैं अब तो आएगी ऑनलाइन, और
1: हाँ
0: ये
1: जी,
0: हमारी ही सुविधा के लिए है और ये डिमांड है, इसलिए ये
1: क्योंकि आज
0: सेवाएं
1: के
0: दी जा
1: युग
0: रही
1: को
0: है।
1: जैसे हम डिजिटल युग कह रहे हैं,
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: हमें भी इसके साथ
0: जी
1: बढ़ना पड़ेगा,
0: बढ़ना पड़ेगा।
1: सीखना पड़ेगा,
0: जी
1: चलना
0: बिल्कुल
1: पड़ेगा
0: जी
1: तभी। और हम सीख भी रहे
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: आज
0: हाँ
1: हम डिजिटल जैसे अपना भुगतान करते ही आ
0: जी
1: रहे
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: अपने जैसे जीपीए से करते
0: जी
1: ही आ रहे हैं,
0: जी
1: तो कोई समस्या नहीं।
0: जी जी
1: अगर हम सीखेंगे तो इस पोर्टल के साथ भी हम आसानी से जुड़ जाएंगे और घर
0: बिल्कुल
1: बैठे हम इस सुविधा का, सेवाओं का लाभ उठा
0: जी
1: पाएंगे।
0: बिल्कुल
1: अनिल सेमवाल जी, आज हमने हिम सेवा पोर्टल पर आपसे विस्तार से जानकारी हासिल की, आप हमारे स्टूडियो में, आपका धन्यवाद। इसी के
0: धन्यवाद।
1: साथ लोकवाणी कार्यक्रम का आज का अंक यहीं संपन्न होता है। आगे लेते हैं, नमस्कार।
2: आकाशवाणी शिमला से साप्ताहिक कार्यक्रम जन जन की वाणी लोकवाणी।
3: अभी आप लोकवाणी लाइव फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे। इसे आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ FM शिमला से भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
4: 103.7 MHz पर आकाशवाणी FM शिमला आप सुन रहे हैं।
5: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
6: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
5: नियम और शर्तें लागू।
4: जी हाँ, आपको बता दें कि आज आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल पर कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। हर दिन 9:31 पर आप सुरबेला कार्यक्रम सुनते हैं और 10 बजे आनंद लीजिएगा रिमझिम कार्यक्रम का।

11:30 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं, और फौजी भाई सुनते हैं अपना कार्यक्रम सैनिकों के लिए 1:10 पर।

दिन में 2 बजे किसान और बागवानों के लिए सुनहरी किरणें कार्यक्रम रहता है और 7:30 बजकर 10 मिनट पर सुनते हैं किसान और बागवान अपना कृषि जगत कार्यक्रम।

8 बजे धारावी गीत कार्यक्रम आप सुनते हैं और इस कार्यक्रम में हम पहाड़ी संगीत आपके लिए लेकर आते हैं। 8:30 पर आप आनंद लेते हैं सुगम संगीत का। रात 10 बजे रूपक आप सुनिएगा और 10:30 पर सुरबहार कार्यक्रम, जिसमें पुरानी फिल्मों से गीत आप सुनते हैं। ये हैं आज आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल पर प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम। कृपया आप हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आप आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला से भी सुन सकेंगे। प्रादेशिक समाचार, डीटीएच सेवा और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। इस संदेश के बाद
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध परियोजनाओं को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। भगवान शिव के जय उद्घोष के बीच श्री अमरनाथ जी की पवित्र तीर्थयात्रा आज से शुरू। हमीरपुर जिला के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के उत्पाद अब ऑनलाइन होंगे उपलब्ध। देश भर के पंचायत मंत्रियों की कार्यशाला आज से दिल्ली में। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर होगी चर्चा। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी, 49 सड़कें अवरुद्ध। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध परियोजनाओं को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये परियोजनाएं सतलुज जल विद्युत निगम को आवंटित की गई है और इनका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने शिमला में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक संसाधनों से राज्य का उचित हिस्सा हासिल करने और जनहित में इनके बेहतर इस्तेमाल को सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने अधिकारियों को एनएचपीसी द्वारा विकसित की जा रही 500 मेगावाट की डुग्गर जल विद्युत परियोजनाओं के नियमों और शर्तों पर दोबारा बातचीत करने के निर्देश भी दिए, क्योंकि एनएचपीसी ने परियोजना में बांध की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में राज्य सरकार संशोधित परियोजना के अनुरूप हिमाचल को उचित लाभ सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने 500 मेगावाट की किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े गतिरोध को समाप्त कर दिया है और अब इस परियोजना में प्रदेश कोई पूंजी निवेश नहीं करना होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालटाल स्थित दोहरे बेस कैंप पहुंचा। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को कल सुबह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना किया था। पहले जत्थे में 4,822 यात्री हैं, जिनमें से

0: 2510 पहलगाम मार्ग से और 2312 बालटाल मार्ग से यात्रा करेंगे। यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए दोनों मार्गों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दोनों मार्गों पर विश्राम स्थल, भोजनालय, स्वास्थ्य सेवाएं और बचाव दल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसके लिए स्वयं सृजित राजस्व जुटाने को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कार्यशाला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने, कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा करने और वित्त आयोग के अनुदानों के प्रभावी उपयोग के लिए व्यवहारिक रणनीतियों का आदान प्रदान करने का मंच भी प्रदान करेगी। हमीरपुर जिला में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के उत्पाद अब ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे। DRDA द्वारा इस संबंध में आरंभ किया गया पंजीकरण अभियान पूरा हो गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
1: जिले भर के 6 ब्लॉकों से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब विभिन्न ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म पर स्वदेशी उत्पाद बेच सकेंगी। महिलाओं की सुविधा के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की ओर से शुरू किया गया पंजीकरण अभियान पूर्ण हो गया है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वयं सहायता समूह लंबे समय से विभिन्न प्रकार के घरेलू हस्तशिल्प, खाद एवं पारंपरिक उत्पाद तैयार कर रहे हैं। उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होने के बावजूद बाजार तक पहुँच सीमित रहने के कारण उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता था। अधिकांश समूह स्थानीय मेलों, प्रदर्शनियों या आसपास के बाजारों तक ही सीमित रहते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए DRDA ने समूहों को डिजिटल क्षेत्र प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना तैयार की। अभियान के दौरान समूहों का पंजीकरण करवाने के साथ साथ उन्हें ऑनलाइन बिक्री की प्रक्रिया, उत्पादों की तस्वीरें, ग्राहकों से संपर्क, ऑर्डर, ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 11 जुलाई को प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का दौरा करेंगे। अपने इस प्रस्तावित एक दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री केलंग में बनने वाले हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सेंटर का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: लाहौल स्पीति में 11 जुलाई का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा केलांग में ICMR सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ का शिलान्यास करेंगे। ये केंद्र ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर शोध और बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस संस्थान के शुरू होने से लाहौल स्पीति सहित पूरे हिमालय क्षेत्र के लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने में भी ये केंद्र अहम भूमिका निभाएगा। पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रवि ठाकुर ने क्षेत्रवासियों से इस ऐतिहासिक अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम का हिस्सा बनने की अपील की है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने के दावे को झूठा करार दिया है। भारद्वाज ने शिमला में एक बयान में कहा कि कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं को पार्टी में फिर से शामिल कर रही है और उन्हें भाजपा का कार्यकर्ता बताकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और कांग्रेस के झूठे प्रचार से प्रभावित नहीं होगा।
3: कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है, कांग्रेस का ही पदाधिकारी रहा है, वो आज कांग्रेस में शामिल हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में सम्मिलित होने की कैसे बात हुई। हिमाचल की जनता समझदार है, वो कांग्रेस की इस बहकावे में नहीं आएगी। वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा सच्चा निष्ठावान है और जब 6 महीने साल के बाद कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, ऐसे भी हिमाचल प्रदेश के कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल नहीं होगा। रही बात रामपुर के इस कार्यकर्ता की जिसने आज कांग्रेस में अपना कदम रखा है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस

0: के साथ वो सरकार में चेयरमैन भी रहे हैं और फिर से वो कांग्रेस में सम्मिलित हुए।
1: आकांक्षी जिला चंबा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चनेड़ ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाणित पीएचसी बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला पीएचसी चनेड़ प्रदेश का पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। इस स्वास्थ्य केंद्र को 6 बार कायाकल्प पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
2: राष्ट्रीय मूल्यांकन के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चनेड़ ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, जो गुणवत्ता मानकों, रोगी संतुष्टि, संक्रमण नियंत्रण, क्लिनिकल सेवाओं, प्रबंधन व्यवस्था तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रमाण है। NQAS भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों का मूल्यांकन, सेवा प्रदायगी, रोग अधिकार, मानव संसाधन तथा संरचना, संक्रमण नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन तथा स्वास्थ्य परिणामों सहित विभिन्न मानकों पर किया जाता है। इस तरह की उपलब्धियों से अवश्य ही जिला चंबा जल्द आकांक्षी जिलों की श्रेणी से बाहर आ पाएगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी है। राज्य के कई हिस्सों में भारी वर्षा से 49 सड़कें अवरुद्ध हो गई है, जबकि बिजली के 42 ट्रांसफार्मर और 27 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई है। आज सुबह से ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून के घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने व सावधानी बरतने को भी कहा गया है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, SGVNL ने वापस ली जाएंगी 3 जल विद्युत परियोजनाएं संबंधी खबर आज अधिकांश समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए हैं। अमर उजाला की एक सुर्खी है, बिजली उपभोक्ताओं को राहत, जून में नहीं लगेगा फ्यूल चार्ज, ग्रामीण क्षेत्रों को मिले 162 डॉक्टर, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, सरकार ने जारी किए आदेश, जॉब ट्रेनिंग के आधार पर 2 वर्ष के लिए नियुक्ति। दैनिक जागरण हाईकोर्ट के हवाले से लिखता है, कानूनी हक मांगने पर कर्मचारी को प्रताड़ित नहीं कर सकते। दैनिक भास्कर की एक खबर है, करुणामूलक नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, पांगी के घिसल धार में बादल फटने से तबाही, 6 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए सुन्नी, लुहरी और धौलासित परियोजनाओं को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। भगवान शिव के जय घोष के बीच श्री अमरनाथ जी की पवित्र तीर्थ यात्रा आज से शुरू। हमीरपुर जिला के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के उत्पाद अब ऑनलाइन होंगे उपलब्ध। देशभर के पंचायत मंत्रियों की कार्यशाला आज से दिल्ली में। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर होगी चर्चा। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी, 49 सड़कें अवरुद्ध। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
3: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
4: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
3: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
4: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
3: जानकारी लें, अधिकार जाने।
4: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
6: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM शिमला आप सुन रहे हैं। 9:33 हुए हैं और अब ये वक्त है कुदरत के रंग कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में हम हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों की सैर पर आपको रोज लेकर निकलते हैं। आज भी हम आपको धर्मशाला के कुछ चुनिंदा पर्यटक स्थलों की ओर लेकर निकलेंगे। ये गीत सुन लीजिए और उसके बाद फिर से जुड़ जाइए हमारे साथ इस सैर के लिए। आप बने रहें FM शिमला के साथ, कार्यक्रम चल रहा है कुदरत के रंग।

उदित नारायण साधना सरगम की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुदरत के रंग और हम आज आपको धर्मशाला की ओर लेकर निकले हैं। सबसे पहले भागसू फॉल की बात करते हैं। मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर दूर भागसू फॉल स्थित है, जो धर्मशाला में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। भागसू फॉल हरियाली और प्रकृति के बीच एक ऐसा सुंदर वहाँ का नज़ारा आप अनुभव करेंगे और सबसे प्राचीन भी यहाँ ये स्थापित है, बहुत ही भव्य है। यानी जो भी पर्यटक धर्मशाला की ओर निकलते हैं तो इस स्थल पर ज़रूर वो पहुँचते हैं और यहाँ की जो अद्भुत जो प्राकृतिक दृश्य है उसको निहारने के लिए लोग पहुँचते हैं।

अब एक और आकर्षण जो है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, इसे भी लोग जब निहारते हैं और जब इसमें पहुंचते हैं तो उससे आसपास की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ऐसा अनुभव होता है कि ये पूरा क्षेत्र जो इसकी गोद में समाया हुआ है और बहुत ही ऊंचे स्थल पर यह है, 1457 मीटर लगभग ये ऊंचाई पर स्थित है और ये बहुत सुंदर स्थल है। यहाँ से जो आप अनुभव करेंगे, जो पर्वत श्रृंखलाओं का जिस तरह से माला बनी है, वहाँ पर एक तो ठंडी ठंडी हवा, आसपास का क्षेत्र उसको बहुत ही मनमोहक बनाता है। आइए कार्यक्रम में अगला गीत आपको हम सुना रहे हैं, आप यूं ही बने रहें, सुनते रहिए कार्यक्रम कुदरत के रंग।

इतिहास फिल्म का ये गीत आपने सुना अनुराधा पोडवाल और हरिहरन की आवाज़ों में। आप कुदरत के रंग कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी 103.7 MHz FM शिमला से। हम धर्मशाला के कुछ चुनिंदा पर्यटक स्थलों की बात कर रहे थे। युद्ध स्मारक जो धर्मशाला का है वो भी बहुत एक दर्शनीय स्थल है और यहाँ पर भी लोग बड़ी दूर दूर से पहुँचते हैं। इस स्मारक के आसपास जो घना जंगल है वो भी इसको बहुत आकर्षक बनाता है और यहाँ पर कॉलेज भी इसके साथ है और ब्रिटिश काल के दौरान इसका निर्माण हुआ है। यानी ये पूरा जितना भी स्थल है वो शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि और यहाँ पर जिस तरह से उनके स्मारक बनाए गए हैं वो एक तरह से अद्भुत एक स्थान बना हुआ है। और यहाँ पर आसपास भी बहुत सारे स्थल हैं देखने के लिए और दीवारों पर कुछ बहुत सुंदर सी नक्काशी की गई है। यानी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है ये स्थान जहाँ पर परिवार के साथ जो है आप एक अद्भुत आनंद हासिल कर सकते हैं। नामग्याल मठ की बात करें और तसुग लाखंग परिसर के स्थित ये स्थान जहाँ पर बौद्ध भिक्षु तो ज़रूर पहुँचते हैं लेकिन साथ ही वो सबके लिए ये स्थान खुला है, जहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से वहाँ जो भी तिब्बती सभ्यता है उसका प्रतीक ये स्थान बना हुआ है बहुत सुंदर, जहाँ पर आपको तरह तरह के सामान देखने को मिलेंगे और जो भी आप जिस भी तरह के मन से आप यहाँ पहुँचे हैं उस तरह की ऐतिहासिकता आपको स्थल पर पहुँच कर मिलेगी। लीजिए अब कार्यक्रम में अगला गीत आपको हम सुना रहे हैं। आप सुनते रहिए कुदरत के रंग कार्यक्रम को आकाशवाणी 103.7 MHz FM शिमला से।

परदेस फिल्म का ये गीत आपने सुना सोनू निगम और हेमा देसाई की आवाज़ों में, और आप कुदरत के रंग कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आज हम धर्मशाला के कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। धर्मशाला में कांगड़ा से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थान है मसरूर रॉकट मंदिर, यानी ये बहुत ही एक पुरातात्विक स्थल है जो समय के साथ साथ जो है थोड़ी इसकी स्थिति जो है वो बिगड़ गई है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर परिसर मौजूद है उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जो शैली है, वास्तुकला है, वारिन शैली जो आपको देखने को मिलती है, कैसे उस वक्त इसको डिज़ाइन किया गया होगा, और इनका जो संयोजन है मंदिरों का वो बहुत सुंदर है। 8वीं शताब्दी में बताया जाता है कि यहाँ पर इसका निर्माण किया गया होगा, और जिसमें हिंदू देवता शिव, विष्णु, देवी और अन्य जो यहाँ पर स्थल हैं उनके लिए जो मंदिर यहाँ जहाँ स्थापित हैं ये बहुत से देवताओं के लिए समर्पित हैं, और जो इतिहास से प्रेम रखते हैं उनके लिए जगह बहुत सुंदर, उनके लिए जन्नत के समान हो सकती है। देखिए, जो एडवेंचर के शौकीन हैं और घूमना चाहते हैं, पैदल कुछ स्थान निकलना चाहते हैं, त्रिउंड मैक्लोडगंज से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जगह बहुत ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा आसपास का दिखता है, और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ऐसे स्थलों पर पहुँचते हैं और वहाँ पर साफ सफाई जब आप देखते हैं तो हमारा मन करता है कि हम भी जो कुछ हमारे पास डस्टबिन में डालने के लिए है उसको हम बैग में डालें और उसको कहीं सही जगह पर जो है उसको डाल दें, क्योंकि अगर आप ऐसे स्थलों पर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाला हर सैलानी जो है एक संदेश वहाँ से उनको मिल जाता है। तो इसलिए हमें जब ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था जो है, ऐसी नियामत हमें मिली है प्रकृति की, तो उसका आनंद हम सबको लेना चाहिए, और स्वच्छता का ऐसे स्थलों पर या हर जगह जो है हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। डल झील की बात करें तो बहुत ही ये भी एक सुंदर स्थान है और बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पर भी पर्यटक बहुत दूर दूर से पहुँचते हैं, बड़ी भीड़ इस स्थल पर लगी रहती है। यहाँ पर लोग यहाँ का आनंद लेते हैं क्योंकि आसपास जो जंगल से घिरा ये स्थान है ये बहुत सुंदर है, और इसके लिए जो है लोग ऐसे स्थानों पर पहुँचने के लिए बड़े दिनों से इंतज़ार करते हैं कि कब हम प्रकृति की गोद में जाएँ और ऐसे ट्रैकिंग का, ऐसी सैर का हम आनंद लें। वहाँ पर मंदिरों के भी कुछ स्थान हैं, वहाँ पर भी लोग दर्शन करते हैं। फिलहाल ये गीत सुनें और यूं ही हमारे साथ बने रहें।

0: फिलहाल इसी गीत के साथ अब कुदरत के रंग कार्यक्रम में इतना ही। 9:57 हुए हैं, वक्त एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं विनोद कुमार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध परियोजनाओं को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये परियोजनाएं सतलुज जल विद्युत निगम को आवंटित की गई है और इनका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों को NHPC द्वारा विकसित की जा रही 500 MW की डुग्गर जल विद्युत परियोजना के नियमों और शर्तों पर दोबारा बातचीत करने के भी निर्देश दिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है।

0: पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने के दावे को झूठा करार दिया है। भारद्वाज ने शिमला में कहा कि कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं को पार्टी में फिर से शामिल कर रही है और उन्हें भाजपा का कार्यकर्ता बताकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और कांग्रेस के झूठे प्रचार से प्रभावित नहीं होगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। हमीरपुर जिला में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के उत्पाद अब ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे। DRDA द्वारा इस संबंध में आरंभ किया गया पंजीकरण अभियान पूरा हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 11 जुलाई को प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का दौरा करेंगे। अपने एक दिवसीय प्रस्तावित दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री केलंग में बनने वाले हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सेंटर का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। FM न्यूज हेडलाइंस में आज बस इतना ही, नमस्कार।
1: जी, आपको बता दें कि आकाशवाणी 103.7 MHz पर आप कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम आज सुन सकते हैं। अब से थोड़ी देर बाद 10 बजे आप संगम कार्यक्रम सुनेंगे, जो कि युगल स्वरों में इसमें फिल्मी गीत आप इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनते हैं। 11:05 पर पुरानी फिल्मों से गीत सुनते हैं। 11:30 पर आप पहाड़ी संगीत सुनते हैं। म्यूजिक मस्ती ये कार्यक्रम 1:10 पर और सबरंग 2 बजे आप सुनते हैं।

8 बजे आप भूले बिसरे गीत सुनते हैं और रात 9:30 पर दिल की आवाज़ भी सुन मेल पर आधारित ये कार्यक्रम आपके लिए रहता है, और 10 बजे आप गज़लें सुनते हैं 10:30 पर सदाबहार नगमें। तो ये हैं आज मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप आकाशवाणी 103.7 MHz FM शिमला से सुन सकते हैं। बस बने रहें हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

तो लीजिए, अब समय हुआ है 10 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम का जिसका नाम संगम है। इसमें हम कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत लेकर आए हैं जो कि युगल स्वरों में गीत हैं। ये पहला गीत दो कलियाँ इस फिल्म का गीत है। इसमें आवाज़ें लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की हैं, साहिर लुधियानवी ने गीत को लिखा है, रवि का संगीत। सुनिए और आनंद लीजिए और यूं ही बन रहे हैं हमारे साथ।

संगम कार्यक्रम आप आकाशवाणी 103.7 MHz FM शिमला से सुन रहे हैं और इसमें युगल स्वरों में आपको गीत सुनाए जाएंगे। फिल्मी इज्जत फिल्म से अब गीत आपको हम सुना रहे हैं। इसमें आवाज़ें आशा भोंसले मोहम्मद रफ़ी की हैं, साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनिए 1968 में आई फिल्म इज्जत का ये गीत।

0: तोप लेके आएगा।
1: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
2: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
1: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
1: वो कैसे?
2: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
1: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
2: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
1: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
2: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
2: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
3: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी एफएम शिमला आप सुन रहे हैं संगम कार्यक्रम में। अब अभिलाषा फिल्म का ये गीत सुने, जिसमें आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार की। मजरू का लिखा ये गीत, आर डी वर्मन का संगीत, सुनिए।

प्यार हुआ है जब से।

0: मेरी जा अपने आशिक को सताना किसे सिखाए।
1: संगम कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं एफएम शिमला से, और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं वो हमने लिया है आदमी और इंसान फिल्म से, जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और संगीतबद्ध किया है गीत को रवि ने। आइए सुनते हैं।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपने आनंद लिया इस गीत का। और अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं प्रिंस फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। आइए सुनते हैं।

संगम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला से। जीवन मृत्यु, जी हाँ ये है फिल्म का नाम, जिसका गीत अब आप सुनने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

0: मीडियम वेव और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी आप ये सुन सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी है। एक पत्र में प्रधानमंत्री ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल भाजपा कांग्रेस के लोगों को प्रलोभन देकर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचा रही है और इसके बावजूद भी भाजपा के मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह ने मशोबरा पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्विरोध चुने जाने पर खुशी जताते हुए कहा कि भाजपा ने यहाँ भी पंचायत प्रतिनिधियों को लालच देने का प्रयास किया, लेकिन उनकी कोई चाल कामयाब नहीं हुई। अनिरुद्ध सिंह ने भी कहा कि पाला बदलने वाले नेताओं, खासकर विधायकों की आज क्या हालत है, ये किसी से छिपा नहीं है।
2: भाजपा ज्वाइन भी करी है, उनकी हालत क्या है? तो मैं समझता हूँ कि अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। अपना घर अपना ही होता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो अपना घर ही होता है। लोग लालच में आके ये लोग ऊपर लोभ देते, इनके अपने लोग हैं नहीं, ना इनमें काबिलियत है मैं समझता हूँ इनके लोगों में, ना ही प्रशासन चलाने की ये लोग माता है।
1: प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने के दावे को झूठा करार दिया है। भारद्वाज ने शिमला में एक बयान में कहा कि कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं को पार्टी में फिर से शामिल कर रही है और उन्हें भाजपा का कार्यकर्ता बताकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और कांग्रेस के झूठे प्रचार से प्रभावित नहीं होगा।
3: कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है, कांग्रेस का ही पदाधिकारी रहा है, वो आज कांग्रेस में शामिल हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी छोड़कर के कांग्रेस में सम्मिलित होने की कैसे बात हुई? हिमाचल की जनता समझदार है, वो कांग्रेस की इस बहकावे में नहीं आएगी। वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा सच्चा निष्ठावान है और जब 6 महीने साल के बाद कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, ऐसे भी हिमाचल प्रदेश के कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल नहीं होगा। रही बात रामपुर के इस कार्यकर्ता की जिसने आज कांग्रेस में अपना कदम रखा है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के साथ वो सरकार में चेयरमैन भी रहे हैं और फिर से वो कांग्रेस में सम्मिलित हुए।
1: उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि फोरले निर्माण के दौरान किसानों, राहगीरों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। पठानिया शाहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत

वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में फोरलेन परियोजना से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई। पठानिया ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण के दौरान कुल्हों में पानी की समुचित निकासी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बरसात के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मशीनरी उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। कैलाश फेडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष बलदेव सिंह ठाकुर ने शिमला में अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने इस मौके पर इस जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं का आभार जताया और कहा कि वे सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बलदेव ठाकुर ने कहा कि वे कैलाश फेडरेशन के कामकाज को संगठन के कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से गति देंगे। भारतीय सेना के कोर ऑफ सिग्नल्स द्वारा संचालित व्हील्स और वेलर संचार शक्ति मोटरसाइकिल राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत राइडर्स ने विश्व की सबसे लंबी 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित अटल टनल रोहतांग में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अभियान के तहत 10 राइडर्स ने मात्र

0: गति देंगे। भारतीय सेना के कोर ऑफ सिग्नल्स द्वारा संचालित व्हील्स और वेलर संचार शक्ति मोटरसाइकिल राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत राइडर्स ने विश्व की सबसे लंबी 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित अटल टनल रोहतांग में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अभियान के तहत 10 राइडर्स ने मात्र 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर करीब 10 किलोमीटर लंबी अटल टनल को 9:47 में पार किया। सिग्नल्स ऑफिसर इन चीफ व कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल विवेश डोगरा ने कहा कि उपलब्धि कोर ऑफ सिग्नल्स के गौरवशाली इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ती है। उन्होंने इस उपलब्धि के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान करने के लिए संबंधित एजेंसियों का आभार भी व्यक्त किया। प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी है। आज सुबह से ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून के घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने व सावधानी बरतने को कहा गया है। विभाग के अनुसार भारी वर्षा के कारण जल भराव, भूस्खलन, सड़कें बंद होने, यातायात बाधित होने और बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र से सुने जा रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। स्वागत है आप सभी सुनने वालों का पुराने फिल्मों से कार्यक्रम में। जी हाँ, पुराने फिल्मी गीतों का आनंद आप लेंगे इस कार्यक्रम में। और पुराने गीतों का अगर जिक्र करें तो हमेशा याद आ जाते हैं मानसिक पटल पर वो दृश्य जो भूले नहीं भुलाए जाते। उन गीतों में खुशी भी है, उदासी भी है, मौज मस्ती भी और शब्दों और भावों की गहराई भी। तो ऐसे ही गीतों का आनंद आप लेंगे हमारे साथ। शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसे हमने लिया है किस्मत फिल्म से।

गीत आपने सुन लिया, और पुराने गीतों की खासियत के बारे में कहना चाहेंगे कि ये गीत हंसाते भी हैं, रुला भी देते हैं। पुराने ज़माने के गाने जब पसंद आने लग जाए ना, तो समझ लीजिएगा कि ज़िंदगी समझ आने लगी है। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

Ajagavata mana mero jumage, ajagavata mana sare mama.

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पुराने फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला से। पुराने फिल्मी तरानों के संग झूमते हैं, गुनगुनाते हैं, तो इसी कड़ी में सुनते हैं अगला गीत।

चित्रलेखा फिल्म के इसी गीत के साथ पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम में आज बस इतना ही। बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सुन रहे हैं आप आकाशवाणी FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। पहाड़ी संगीत लेकर हाजिर हैं हम और लोकगीतों का आनंद आप लेंगे इस कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं इस लोकगीत से जिसे गाया है विजय भंडारी ने, आइए सुनते हैं।

हिमाचली लोकगीतों का आनंद आप लेते हैं पहाड़ी संगीत कार्यक्रम में, जिन्हें सुनकर एक अलग सा सुकून और आनंद मिलता है। याद आते हैं लोक रंजन के तीज त्यौहार, खेत खलियानों के साथ साथ गलियां और चौबारे भी, और एक आकर्षक धुन के संग थिरकने लग जाते हैं हमारे कदम। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत, जिसे गाया है नीलम कुमारी और अरुणा कुमारी ने।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन, हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अगला लोकगीत आपको सुनाने जा रहे हैं कृष्णलाल सहगल की आवाज में।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पहाड़ी संगीत का आनंद आप ले रहे हैं FM शिमला से, और पहाड़ी संगीत कार्यक्रम में आप सुनते हैं हिमाचली लोकगीत। और अगर बात करें लोकगीतों की, तो लोकगीतों की एक अलग परंपरा है, महत्व तो इसका अलग रहता है। और हिंदी लोकगीत भारतीय समाज की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक चेतना का भी एक अभिन्न अंग होता है, जो पीढ़ियों से मौखिक परंपरा के रूप में संरक्षित होते आए हैं। ये गीत न केवल मनोरंजन के साधन रहे हैं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक जीवन की गहराइयों को भी बखूबी व्यक्त करते हैं। ये लोकगीत विवाह हो या फिर जन्म, ऋतु परिवर्तन, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों पर ये लोकगीत अक्सर सामूहिक जीवन के उल्लास और भावनात्मक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रहे हैं। गाए जाते हैं इन त्योहारों में ये लोकगीत, और इनमें से जीवन के जो सुख दुख, संघर्ष और आशाओं का सजीव चित्रण है वो भी मिलता है, जिसे वे समाज की जीवंत धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित भी होते हैं, है ना। और लोकगीतों का महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि इसमें स्थानीय बोलियों, रीति रिवाजों और मान्यताओं का सहज समावेश रहता है। इनकी सरल भाषा और लयबद्धता जनमानस को गहराई से जोड़ती है। लेकिन आधुनिकता, शहरीकरण और तकनीकी प्रभाव के कारण लोकगीतों की परंपरा है तो जारी, लेकिन थोड़ी सी धीमी हो गई है, और युवा पीढ़ी का झुकाव इनकी ओर लगभग कम होता जा रहा है। लेकिन जब हम इन लोकगीतों को सुनते हैं तो इनकी धुन हमें आकर्षित कर ही लेती है। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

पहाड़ी संगीत पहुंच चुका है अपने अंतिम पड़ाव पर और जाते जाते आपको सुनाने जा रहे हैं कृष्णा ठाकुर और धर्मेंद्र शर्मा का गाया ये लोकगीत।

0: इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी FM शिमला के साथ जुड़े हैं आप। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस AI के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, UPI, डिजी लॉकर और इंडिया स्टैक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार्स में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री VD सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी।

श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में आधे

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: नौ आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं FM शिमला से, आइए सुनते हैं अगला गीत।

फिल्म संगीत में फिलहाल इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर जुड़े हैं आप FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। बहनें सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन।

0: कार्यक्रम महिला सम्मेलन सुनने वाली सभी सखियों का कार्यक्रम में स्वागत है। आज बहनों, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर मधु शर्मा,
1: और मैं हेमा राय। आप सभी को हमारा नमस्कार।
0: देखिए हेमा, आज जो है कार्यक्रम में बहुत कुछ जो है अच्छी जानकारियां हम अपनी बहनों को देने वाले हैं, और साथ साथ मनोरंजन तो हम उनका करते ही हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो केवल पर्यावरण का ही नहीं बल्कि हमारे परिवार, स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का भी विषय है। अवसर है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस का।
1: जी हाँ, हर वर्ष आज ही के दिन यानी 3 जुलाई को पूरी दुनिया में ये दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक की थैलियों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उनके स्थान पर पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
0: बिल्कुल बहनों, देखिए हम सभी अपने डेली रूटीन में प्लास्टिक की ना जाने कितनी थैलियों का हम उपयोग करते हैं, फिर चाहे वो बाजार से सब्जियां या फल लाने हो, कपड़े का हो, या किराने का जो सामान है वो हो, या दूध हो, या बच्चों के लिए कोई भी चीज़ अगर आप बाहर से कुछ लेकर आती है, तो इस तरह से हम ना जाने कितनी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें प्लास्टिक, जो प्लास्टिक में ही आती है और हमें खरीदना भी पड़ता है। प्लास्टिक का थैला सहज ही जो है ना ऐसी चीज़ों के लिए अपने हाथ में आ जाता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि कुछ ही मिनटों की सुविधा देने वाली ये थैली वर्षों तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती रहती हैं।
1: जी हाँ, और क्या आपको पता है कि प्लास्टिक की थैलियाँ आसानी से नष्ट नहीं होती, ये मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करती है, जगह जगह नालियों को जाम करती है, और बारिश में देखा होगा मधु आपने, हर जगह जल भराव जैसी समस्याएं पैदा करती है।
0: बिल्कुल,
1: नदियों और समुद्रों में पहुँच कर ये जलीय जीवों के लिए भी बड़ा खतरा बन जाती है, और कई बार आवारा पशु जो होते हैं वो भोजन के साथ प्लास्टिक निगल लेते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल, और इस बात से हमारी बहनें भी अछूती नहीं हैं, क्योंकि मानसून जो है वो दस्तक दे चुका है, शुरू हो चुका है, और ऐसे में अगर एक दो बारिश ही अगर बहुत ज़्यादा आ जाती है ना, तो आपने देखा होगा कि नाली और सड़कों में जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक के रूप में हमें नज़र आ ही जाती हैं।
1: जी हाँ,
0: और ऐसे में हमारी जो भूमिकाएं हैं, यानी कि जो हम महिलाएं हैं, हम जो बहनें हैं, हमारी जो भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बहनों, क्योंकि देखिए घर की खरीदारी का जो निर्णय होता है वो अक्सर हमारी बहनें ही करती हैं, और अगर हर महिला बाज़ार जाते समय अपने साथ कपड़े या जूट का थैला लेकर जाए और प्लास्टिक की थैली लेने से मना कर दे, तो ये एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
1: जी, और इसके साथ ही देखिए, अपने बच्चों को भी बचपन से ही पर्यावरण संरक्षण की आदतें सिखाई जा सकती है। जब बच्चे अपने माता पिता को कपड़े का थैला इस्तेमाल करते हुए देखेंगे ना मधु, तो वो भी यही आदत अपनाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: छोटी छोटी अच्छी आदतें जीवन भर साथ रहती है।
0: बिल्कुल, वैसे तो हम अपनी बहनों को, हमारी बहनें वैसे जानती हैं कि भाई हिमाचल में वैसे तो बैन है प्लास्टिक, लेकिन आपने देखा होगा कहीं ना कहीं छोटी

0: छोटी चीजें जो है वो आ ही जाती है, चाहे वो
1: किसी चीज की पैकिंग हो या टॉफी के कागज हो। कई बार हम देखते हैं कपड़े खरीदते हैं तो उसकी पैकिंग में भी प्लास्टिक आ जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वैसे तो हिमाचल में ये वैन है और शिमला में बहुत कम दिखता है कि प्लास्टिक या पॉलिथीन का जो उपयोग है कम ही करते हैं।
0: कम ही करते हैं। और बहनों देखिए, आज अनेक वैसे तो स्वयं सहायता समूह और महिला समूह कपड़े और जूट के सुंदर और बहुत अच्छे टिकाऊ वाले जो थैले हैं तैयार कर रहे हैं। इससे न केवल हमारे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रही है बल्कि महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि प्लास्टिक मुक्त अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम भी बन सकता है।
1: जी हाँ बिल्कुल बहनों, हमें ये समझना होगा कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी का ये साझा दायित्व है। अगर हर परिवार से ये हम संकल्प ले कि अनावश्यक प्लास्टिक का उपयोग हम नहीं करेंगे तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है।
0: बिल्कुल। तो आइए आज हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग हम नहीं करेंगे और दूसरों को भी इसे प्रयोग में ना करने के लिए प्रेरित और जागरूक जरूर करेंगे।
1: जी याद रखें, प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, हमें उसकी रक्षा करना जो है हमारा कर्तव्य है। प्रकृति से प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से व्यक्त होता है। आज उठाया गया एक छोटा सा कदम आने वाले कल को स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित बना सकता है।
0: जी, तो हमने वादा किया था अपनी बहनों से कि हम जानकारी के साथ साथ अपनी बहनों को का जो है वो मनोरंजन जो करते रहेंगे। तो चलिए गीत सुन लिया जाए।
1: जी

0: बहनों, आप सभी जानती हैं कि वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है, जिसे हम 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाते हैं। क्योंकि देखिए, मानसून के मौसम की शुरुआत जो है वो इसी समय हो जाती है, और ऐसे में पौधारोपण करना जो है इसका जो सही समय है वो होता है। इसलिए भारतवर्ष में वन महोत्सव सप्ताह जो है वो बहुत मतलब अच्छी तरीके से, और हर जगह स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं, हर जगह जो है वो ये अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने और उनकी देखभाल का संदेश भी आपको जो है वो महोत्सव सप्ताह के दौरान दिया जाता है। लेकिन मैंने आपको ये भी पता होना चाहिए कि वन महोत्सव केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति अपने दायित्व को समझने और निभाने का संकल्प भी है।
1: जी हाँ, और अगर हम बात करें अपने प्रदेश की तो भाई, हिमाचल प्रदेश को तो देवभूमि के साथ साथ हरियाली की धरती भी कहा जाता है। यहाँ के देवदार, चीड़, बाण, बुरार और बहुत से औषधीय गुणों वाले पौधे हमारी प्राकृतिक धरोहर है।
0: बिल्कुल, और आपने ये जो वन केवल जो जिस तरह से आपने कहा कि औषधीय गुणों वाले जो पौधे हैं हमारी प्राकृतिक धरोहर है, और ये हमारी सुंदरता ही नहीं बढ़ाते बल्कि हमें स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और संतुलित जलवायु भी प्रदान करते हैं। महनो, पहाड़ों की हरियाली हमारे झरनों और नदियों की जीवन रेखा है। यदि वन सुरक्षित रहेंगे तो जल स्रोत भी सुरक्षित रहेंगे।
1: जी हाँ,
0: और शायद इसी सुंदरता को देखने हिमा, साफ हवाओं को महसूस करने लाखों की संख्या में पर्यटक जो है वो हमारे प्रदेश की ओर अपना रुख करते हैं।
1: जी, लेकिन कुछ समय से बदलती जलवायु और अनियमित बारिश, बढ़ते तापमान और जंगलों में लगने वाली आग जैसी घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि प्रकृति का संरक्षण अब

0: केवल विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। इस दिशा में महिलाओं की भूमिका अहम है।
1: बिल्कुल, देखिए दरअसल हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं सदियों से प्रकृति की सच्ची संरक्षक रही हैं। वो जंगलों से जुड़ी हुई हैं, जल स्रोतों की महत्ता समझती हैं और परिवार को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। ठीक है, यदि हर परिवार की महिला अपने परिवार के साथ मिलकर साल में कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल का जो संकल्प ले, तो ये छोटा सा प्रयास, देखने में तो छोटा ही लगता है, लेकिन ये छोटा सा प्रयास एक बहुत बड़े परिवर्तन का आधार भी बन सकता है।
0: जी हाँ, जैसे कि आपने कहा कि साल में एक बार लगाएं, तो वो हमारी सालगिरह हो सकती है, बच्चों के जन्मदिन हो सकती है, या कुछ और भी जो भी हमारे जीवन का खास
1: इवेंट होते
0: है,
1: रहते हैं। हाँ, खास
0: उस पे भी हम लगा सकते
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: बिल्कुल, और देखिए बच्चों में भी अगर प्रकृति के प्रति प्रेम जगाना जो है वो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें पेड़ों के महत्व के बारे में बताना, जन्मदिन या किसी विशेष अवसर पर, जैसा हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि पौधा लगाने की परंपरा शुरू कीजिए।
0: जी
1: परंपरा के साथ ही बच्चे ये भी सीख जाएंगे, भी आगे के लिए भी सीख जाएंगे कि जब भी कोई इवेंट हो, अच्छा घर में कोई भी अच्छा वो इवेंट हो या फंक्शन हो या कुछ भी हो, तो हमें एक पेड़ ज़रूर लगाना
0: और
1: है।
0: मैं तो ये भी कहना, हम तो ये भी कहेंगे कि आपने अगर गिफ्ट भी देना है तो किसी को ऐसा प्लांट भी आप गिफ्ट कर सकती हैं, ताकि वो
1: बिल्कुल
0: याद भी रखे और उसे सहेज के रखे, संभाल के रखे।
1: बिल्कुल, और देखिए ना, परिवार के साथ मिलकर पौधों की देखभाल भी जो है ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। जैसा आपने कहा कि भाई लगाने से मतलब नहीं है, आपको उसका ध्यान भी रखना होता है, उसे सहेजना भी पड़ता है ना।
0: जी
1: और यही छोटे छोटे प्रयास है ना जो बहनों भविष्य में बड़े बड़े हमें अच्छे परिणाम देते हैं।
0: जी बहनों, वन महोत्सव सप्ताह हमें ये भी सिखाता है कि केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं है, उनकी नियमित सिंचाई, सुरक्षा और देखभाल भी इतनी ही आवश्यक है जितना कि उन्हें लगाना।
1: जी
0: एक पौधा तभी विशाल वृक्ष बनता है जब उसे समय, स्नेह और संरक्षण मिलता है।
1: तो आइए हम अपने घर, आंगन, खेत, स्कूल, गांव, शहर के आसपास खाली जगहों पर स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाएं, जल संरक्षण करें, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें और अपने आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखें। प्रकृति के प्रति जो हमारी छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं ना बहनों, आने वाले कल को सुरक्षित बनाएगी।
0: जी याद रखिए, एक पेड़ 100 सुख, एक पौधा उज्जवल भविष्य। आइए हम सब मिलकर हरियाली बढ़ाएं और प्रकृति के इस अनमोल उपहार को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें।
1: जी।

0: बहनों, मानसून ने दस्तक हल्के हल्के देना शुरू कर दिया है और ये मौसम जो है ना वो बहुत खूबसूरत होता है, और ख़ासकर तब जब चारों तरफ हरियाली होती है ना, बहुत अच्छा लगता है ये मौसम। लेकिन इसके आने के बाद हमें बहुत सारी, अगर हमें बहुत खुशी भी मिलती है तो इसके साथ साथ हमें बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता
1: जी,
0: है।
1: यानी कि ये मौसम अपने साथ कई तरह की परेशानियां भी लेकर आता है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो आज हम आपसे अपने सेगमेंट सौंदर्य चर्चा में बात करने जा रहे हैं, मानसून के समय में हम अपने पैरों की कैसे देखभाल करें।
0: बिल्कुल। देखिए बहनों, त्वचा संबंधी समस्याओं से बचने के लिए बरसात के मौसम में अपने पैरों की थोड़ी सी एक्स्ट्रा देखभाल से कई तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। तो आइए बहनों, हम बात करते हैं कुछ ऐसे उपायों की जिनसे हम ये पैरों में होने वाले फंगल इन्फेक्शंस और रैशेज जैसी समस्याओं से बचाव कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: हाँ, मॉनसून में पैरों की देखभाल के लिए उन्हें हमेशा साफ और सूखा रखें। घर लौटते ही पैरों को हल्के एंटीसेप्टिक साबुन से धोएं और उंगलियों के बीच की जगह को भी अच्छी तरह से सुखाएं। नमी से बचने के लिए कॉटन के मोज़े पहनें और बंद जूतों की जगह आप वाटरप्रूफ खुले सैंडल का इस्तेमाल करें।
0: बिल्कुल। और लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बंद जूते और स्नीकर्स पहनने से कई बार हम लोगों के गीले हो जाते हैं ना, और
1: जी
0: उस वजह से अगर हमने काफ़ी देर तक वो गीले जूते जो है पहन के रखे हैं तो उसमें पानी भर जाता है, और इसमें उससे क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, गलना सा शुरू हो जाती
1: जी
0: है ना, त्वचा जो पैरों की है वो ऐसे वाइट वाइट सी होनी शुरू हो जाती है। इसके बजाय आप क्या करें कि खुले सैंडल या आसानी से सूखने वाले जो है फ्लिप फ्लॉप, इस तरह के भी आप शूज़ पहन सकते हैं। और अगर बंद जूता पहनना मजबूरी है तो ज़्यादा से ज़्यादा नमी को सोखने के लिए एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करें।
1: जी अगर आपके मोज़े बारिश के पानी में या पसीने से भीग जाते हैं तो उन्हें तुरंत बदल लें। हमेशा सूती कॉटन वाले जो मोज़े हैं वो ही चुनें जो पसीना सोखते हैं। अपने बैग में आप क्या कर सकते हैं कि मोज़ों की एक एक्स्ट्रा जोड़ी हमेशा साथ
0: रख
1: रखें,
0: सकते हैं।
1: ताकि
0: बिल्कुल
1: जब अगर गीला हो जाए तो उसे चेंज कर लें।
0: बिल्कुल। और देखिए बहनों, नाखूनों की नियमित सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। नाखूनों को छोटा और साफ़ रखें, क्योंकि ऐसे मौसम में क्या होता है कि जब हम बाहर निकलते हैं और जब अगर मान लो बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे मौसम में हमारे जो पैरों की नाखूनों के अंदर भी कई बार मिट्टी और धूल,
1: जी, क्योंकि गंदे पानी में मिट्टी
0: बिल्कुल
1: और संक्रमण के जो
0: खतरा
1: कीटाणु होते
0: रहता बना
1: रहते।
0: रहता है। और ऐसे में क्या होता है कि लंबे नाखूनों में गंदगी और बारिश का गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे जो है वो इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। और नेल कटर से नाखूनों को सीधा काटें और
1: उनके
0: कोनों
1: कोनों
0: को,
1: को फाइल करें,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि कोनों से भी कई बार उसमें फंसा रहता है या चुभते हैं नाखून
0: जी
1: और उसमें भी संक्रमण का खतरा बना
0: बना
1: रहता
0: रहता
1: है।
0: है।

0: आप क्या कर सकते हैं कि हफ्ते में एक या दो बार अपने पैरों को गुनगुने पानी में थोड़ा सा शैम्पू या एंटीसेप्टिक लिक्विड डालकर 10 मिनट के लिए भिगोएं। इसके बाद प्यूमिक स्टोन की मदद से मृत त्वचा को धीरे धीरे साफ करें और फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लें।
1: बिल्कुल, देखिए हिमा, ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपना चेहरा, चेहरे पर और अपने
0: जी
1: कपड़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम अपने पैरों पर बहुत कम जो है वो ध्यान देते हैं। और देखिए सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में फट जाते हैं पैर, एड़ियाँ फट जाती हैं ना,
0: जी
1: और हम सर्दियों में अपने पैरों का तो बड़ा ध्यान रखते हैं। लेकिन आजकल भी हमें जिस तरह से अब मानसून आ ही चुका है, तो ऐसे में बारिश में भी हमें अपने पैरों का ज़्यादा देखभाल, मुझे लगता है कि ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है हमें। और आपको बता दें बहनों कि ज़्यादा पसीना आने से भी आपके पैर गीले हो सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप जूते पहनने से पहले टेलकम पाउडर का इस्तेमाल करें। अगर आपके पैरों में तीखी गंध आती है तो आपको फंगल संक्रमण हो सकता है, ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना चाहिए।
0: जी ज़्यादा देर तक बारिश के पानी में पैर रहने और मोटे मोटे दाने उससे निकल जाते हैं।
1: जी
0: देखने में तो ये छोटे लगते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो स्किन के अंदर ना इसकी गांठ सी बन जाती है और वो काफ़ी दर्द करती है। पैर नीचे रखने से भी वो चुभती है।
1: बिल्कुल
0: इस तरह की अगर समस्या हो जाए तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।
1: बिल्कुल, बारिश के मौसम में हमेशा पैर साफ करके ही बिस्तर पर जाएं, इससे आप जो है वो इन्फेक्शन की समस्याओं को कम कर सकते हैं। पैर साफ करने के बाद नारियल तेल या मॉइस्चराइजर लगाकर आप थोड़ी देर के लिए मोजे पहन सकती हैं।
0: जी दरअसल क्या होता है कि हर दिन हम अगर पानी में, गुनगुने पानी में टी बैग डालें और इसमें अपने पैरों को भिगो कर करीब 5-7 मिनट के लिए रखें, तो चाय में मौजूद टैनिक एसिड बैक्टीरिया को मारने और पैरों के खुले पोर्स को बंद करने का काम करता है,
1: बिल्कुल
0: जिससे बैक्टीरिया नहीं
1: नहीं,
0: लगते।
1: बिल्कुल। और आपको बता दें इसके साथ ही सुबह नहाते समय भी आप गुनगुने पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा और विनेगर मिलाएं, इसमें पैरों को करीब 5 से 10 मिनट रखें। ये नेचुरल डिसइन्फेक्टेड पैरों के बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद करेंगे।
0: जी पैरों को सूखा रखने के लिए एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल करें। पैरों में पाउडर लगाकर कुछ देर इसे ज़मीन पर ना रखें, जिससे कि पाउडर धूल मिट्टी के साथ ना मिक्स
1: मिक्स
0: हो
1: हो
0: जाए।
1: जाए, बिल्कुल। देखिए बहनों, उम्मीद करते हैं कि इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप भी इस मौसम में अपने पैरों को कई तरह की समस्याओं से बचा सकते हैं। अगर सावधानी बरतने के बावजूद भी आपके पैरों में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा है या कोई और समस्या हो जाए, तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें।

0: बहनों, आज हर महिला जो है वो सुंदर दिखने की चाहत रखती है और उसके लिए हर संभव प्रयास भी करती है। और हमारा भी हेमा यही प्रयास रहता है कि हमारी बहनें जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखे। इसके लिए हम उन्हें हर शुक्रवार को आकर जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें उनके लिए लेकर आते हैं, बताते हैं किस तरह से वो अपने बालों की, पैरों की, हाथों की, हर जगह की जो है वो सफाई रख सकती हैं और साथ साथ सुंदर भी दिख सकती हैं। अब छोटी छोटी बातें कुछ ऐसी हैं जिन्हें वो अपने घर में अपना कर जो है वो अपना चेहरा या कोई भी सुंदरता से रिलेटेड कोई भी अगर उनको थोड़ी दिक्कत हो तो वो कर सकती हैं अपने घर पर ही और अपनी किचन में जो सामान रखा है उनसे।
1: जी, आप क्या कर सकती हैं? अगर आपको किसी पार्टी में जाना हो और आपके पास समय बहुत कम है, तो आपको तुरंत गोरापन लाने के लिए जो पैक्स होते हैं ना, उसको कम समय में देखें और स्किन पर आप देखेंगी तो कमाल का ग्लो आएगा।
0: जी
1: आप चेहरे को क्लींसिंग मिल्क से साफ़ करने के बाद होममेड फेस स्क्रब लगाएं, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लें। दो बर्तनों में पानी रखें, एक में ठंडा और दूसरे में गर्म। दोनों में छोटे छोटे तौलिए डुबोएं, एक बार ठंडे में और दूसरी बार गर्म पानी में तौलिए डुबोकर निचोड़ कर अपने चेहरे पर लगाएं।
0: बिल्कुल। और साथ साथ ही बहनों, आप नींबू और शहद का पैक भी 20 मिनट लगाकर अपने चेहरे पर रखें। चेहरों को धोने के बाद पानी से जो है वो अपना मुंह सुखाने के बाद आप हल्का सा कोई सा भी लोशन लगाएं, आप देखेंगे कि आपका चेहरा जो है वो खिल उठेगा।
1: जी, आलू के स्लाइस को साफ चेहरे पर कुछ देर रखने के बाद उसी स्लाइस को स्किन पर रब करें, ठंडे पानी से चेहरा धो लें। इसी तरह आप खीरे के स्लाइस या टमाटर के स्लाइस भी लगा सकती हैं, ये त्वचा के मृत कोशिकाओं को तुरंत दूर करके उसमें निखार लाती है।
0: बिल्कुल। और साथ साथ में आप जब किचन में खड़ी हैं और सब्जी बना रही हैं, कुछ भी बना रही हैं, तो बस कुछ नहीं करना है। बस जैसे आप कोई आलू काट रही हैं, टमाटर काट रही, कुछ भी काट रही हैं, हल्का हल्का फुल्का अपने चेहरे पर भी लगा लीजिए, है ना।
1: जी
0: पर वो उसकी सब्जी ना बनाइए बाद
1: जी
0: में, है ना, उसे
1: जी
0: आप फेंक दीजिए। और ऐसे ही आप बेसन, दूध और नींबू का उबटन चेहरे और खुले हिस्से पर आप लगाएं और 10 मिनट के बाद हल्का सा पानी लगाकर मलते हुए आप इसे धो लें, तो आपका चेहरा जो है वो खिला खिला लगेगा। और साथ ही बहनों देखिए, संतरे के छिलकों का पाउडर और दही मिलाकर कुछ देर इसे भीगने दें और चेहरे को

0: अच्छे दूध से आप पहले साफ कर लें, उसके बाद जो ये तैयार पेस्ट है उसे आप 15 मिनट अपने चेहरे पर लगाएं और उसके बाद चेहरा धो लें।
1: जी
0: आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आपको नजर आएगा। तो चलिए अब अपनी बहनों का जो है चेहरा तो हमने चमका दिया है ना,
1: जी, और
0: और उन
1: मनोरंजन भी करवाते हैं और सुनवाते
0: बिल्कुल
1: हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।
0: जी

0: महिला सम्मेलन, जी हाँ, अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। दोपहर के 1 बजने को है। हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्याय के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमेरिकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को

0: रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th

दोपहर का समय, सुहाना मस्ताना मौसम और थोड़ा सा सुस्ताने का मन। ऐसे में सुनने को मिल जाए म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम तो दिन बन जाए, है ना। तो म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम मस्त मस्त सॉन्ग्स के साथ लेकर हाजिर हैं हम। क्यों ना शुरुआत की जाए कार्यक्रम के इस मस्त से गीत के साथ।

मोहरा फिल्म का सॉन्ग आपने एंजॉय किया, और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी ना तो ये सॉन्ग मोस्ट पॉपुलर रहा। लाइफ में जब भी टाइम मिले लाइफ को फुल एंजॉय कीजिए, क्योंकि जीने के हैं चार दिन, और जो आज है कल हो ना हो। अगला गीत हमने लिया है मुझसे शादी करोगी फिल्म से, आइए सुनते हैं।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

चालबाज फिल्म का गीत अभी आपने सुना। म्यूज़िक मस्ती प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप FM शिमला से, और मनोरंजन का सिलसिला बरकरार है। सुनते हैं धड़कन फिल्म का गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। आइए सुनते हैं।

दिल में तेरी चाहत लबों पे तेरा नाम है, तू मोहब्बत कर या ना कर मेरी जिंदगी तेरे नाम है। मन करता है तुम्हें नज़रों में बसा लूँ, औरों की नज़रों से तुम्हें बचा लूँ, कहीं चुरा ना ले तुम्हें मुझसे कोई, आओ तुम्हें अपनी धड़कन में छुपा लूँ। धड़कन फिल्म का गीत अभी आपने सुना, म्यूज़िक मस्ती प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप। और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं वो हमने लिया है धूम 2 फिल्म से, आवाज़ है सुनिधि चौहान की और शब्द रचना समीर की, संगीतकार है प्रीतम।

0: उनकी चाहत में हम कुछ इस तरह बंधे हैं कि वो साथ भी नहीं है और हम अकेले भी नहीं। तन्हाई में मुस्कुराना भी इश्क है और इस बात को सबसे छुपाना भी इश्क है। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं आजा नचले फिल्म से, जिसे गाया है सुनिधि चौहान ने। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक संदेश।
1: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
2: अच्छा, इसमें क्या होगा?
1: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
2: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
2: अच्छा,
1: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में आज आप एंजॉय कर रहे हैं फुल ऑफ मस्ती सॉन्ग्स, और अब सुनवाने जा रहे हैं आपको प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग, जिसे हमने लिया है फिल्म हम दिल दे चुके सनम। आवाज़ है कविता कृष्णा मूर्ति की, आइए सुनते हैं।

0: इसी गीत के साथ म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में आज बस इतना ही। बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
2: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
1: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
2: नियम और शर्तें लागू।
0: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM शिमला सुन रहे हैं आप। समय है संगीत की

इसी के साथ सबरंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला के साथ जुड़े हैं आप। दोपहर हिंदी समाचारों के लिए अब ले चलते हैं आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी

0: लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हरा कर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: बोलो बाबा अमरनाथ की जय। बाबा अमरनाथ बम बम।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
3: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
4: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
2: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेशवाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही

0: दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
1: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 387.6 मीटर यानी 774 किलो हर्ट्स और AIRFM शिमला 103.7 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए अब सुनते हैं स्पीति कार्यक्रम।

जुलै पिति मिमा छाङमाला इ आकाशवाणी सिमलाइनु मु छेरिङ पाल्मु तिरिङ कि ल्यारिम गचुङ नाइन तिरिङ प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना रङ कि गोन्पा कर्ला रङ ग्याकर कि काचा कि याम्पुला लुन्यान पुन्यान्पु न्यान नाइन तिरिङ मु ग्याकर सरकार कि मिनाङ मेति खाक छिन्मु योजना कि फिला सुनाइन अतिते प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना ते मई चिक नितोंग चुरुकला अजी ग्याकर सरकार सु गचु वा दी योजना की खाक छिनमु लेहा ते मिन मैतपु जिमेत याला मूल की खापू अति नांगला आने याला तुत्पा नासु योंगन खापू यांग खोंजे याला याकपु रंग सांगमा इंधन उपलब्ध जुया थेने उनला युल तु आने या शिंग चिया रंग मेलो सु मैतांगजी यांग तोपचा युआ दिनासु थोंगन थुत्पा सु आने या टू या चुकुन्या मिनांग मेति सुगजर रंग मिग्या छान्ते रंग यांग ऊ नेंजा खापु लुत्पा और या नाजा जिन्मा या झुमजी मिनांग मेति खापु योंगा तेने आने या का खाहु मिनांग गुरगुशा आने या शिंग डुगजला या मिना मेति गोरका दी क्या बोला थुजो या खोंजी लाहा या मिंडोपका अति लायांग तोपचा यांग लहा जिन्मा ची और ना अति ला मिनांग करका दिखा पुला ताशी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ते गौसु हुआ दी नांग दो अजी सब्सिडी जिमेत याला आने याला एलपीजी गैस की कनेक्शन थोका लंची ची ते तनमे तला या रिफिल का फेंगेंगा दी सो अजी रसोई से ना यांग तोपचा चूसान की खापू का न्यूंडवा तोपचा का ग्योहा डुबका जिमेत याला नाजा का न्यूनोंगा दी योजना की खाक छिनमु लेहाते ची ची इनुपा से ना दी की लेहाते मैतपू जिमेत याला संगमा रंग याकपू ईंधन थप जाते यहाँ आने या क्या जुहू ला नाजा मेहता ची नाजा यो ना यहाँ मिक्की नाजा मेन्ना ऊ नेंजा थुत्पा सु ऊ की नाजा का मिना योंगा अतिते न्यूनवा खोरियो क्याला संरक्षण नंग योंदे तेचा आने याला थुसुत तंखाहु न्यून नोंगजा आने याला यंग सम्मान तंग सुविधा तेचा दी उज्ज्वला योजना की फंतोक इनो दी नांगला यंग ची ची फंतोक तंग सुवस्ते रंग चिकपू मंदा अजी तोले समाज तंग आर्थिक फिला मिनंग मेति खाक छिन मुजी इनो स्वच्छ रंग याकपू ईंधन ते उपयोग फैचनी हई रिया चेचा ते न्यूनडवा प्रदूषण से न यहाँ हई लुहू या बाफा न्यूकुंडवा दी योजना ते आने याला टनते तंग सशक्तिकरण चुआ अति फिला खोंजा याला की दी खोंबा चेक इनु यंग दी योजना की खापू ते जी जी इनु वासे न जिमित मिन याला गैस सिलेंडर कांगजा की खापू यांग था रिंगबू यूल याला अति क्यालजा की खापू चिले सने यूल का मिनांग था रिंगबू लाओका अति गैस सिलेंडर की खापू का मिनांग योंगा यांग मूल की खापू यांग ऋषि ओय मेतपू मी याला मूल की खापू का मिनांग योंगा अति फिला मी याला थुई थुई ला यांग जागरूक फेकुशा यांग खोंजे सब्सिडी जिमेत याला सब्सिडी से ना ओय सिलेंडर कांगजी यांग मूल सुमग्या ते ओय बैंक की खातर लाओ अति की रव रम द पेचा दी सु खोंजे याला सिलेंडर की उपयोग की ले फंतोक म्यांग मिनांग योंगा दी सु युल लंग जिमे याला मिनांग देवची का योगा उज्ज्वला योजना नांगला ग्याकर की युल की रसोई से ना यहाँ तोपचा चुया थे मिनांग मिति देवची योगा था तोपचा का लंची पाला डुमडवा मिडवा थे होती मैं तंग चाहते अल्लाह आने याला मिनांग खाऊंगा थे होती खाऊ तेला यंग सम्मान यंग मंगबू समाज की यरकित यंग थुजुत ला लेहा डूब जा दी योजना की मिनांग फैंतोक योगा चिला से ना अल्लाह आने या खाऊ न्योंग योंग जी खोजा या था खाऊ न्योंग ना लंचिक पाला तो अपचा रंग डूब डा थे टू या ला तो इसे ला खोजा या लाभ तो तंग जा अतिला याकपू फंदेगा और जी जिम्मेवारी आते ची ची नुवा से दी योजना नांग दो और जी जिम्मेवारी आते ची नुवा से ना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ते करोड़ों आने याला मीजे ला मिनांग मिति देवजियों का थेने दी योजना सु संगमा ना संगमा ईंधन खांगबा संगमा नाजा मेता खोरियुक फिला याकपू ता आने याला याकपू टनते यंग खोंजेला सशक्तिकरण चुया ते दी सरकार की

आने पन्मा डोलमा रांगखोंजी यातो या कि लुन्यंतपु गाबला था ग्याकर की लोन कोला छिग्ने सुम अमरनाथ यात्रा। श्री अमरनाथ जी यात्रा तिरिंगातोक ना जम्मू कश्मीर की पहलगाम की लामनासु गौचुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु अमरनाथ यात्रा पैकन छोसम सन श्रद्धालु मियाला मीना मेति शुभकामनाएं तेपा दी ते ये चिक नांगदू प्रधानमंत्री की लोता अमरनाथ यात्रा ला गया कर की डुगरिम तंग एकता न्यामपुला छो की तत्पा इनो शुआ। दिगाबला उप मुख्य सचेतक केबल सिंह पठानिया सु शुआ की फेरलोन की निर्माण सेना शिंगला लम ला डुलकन तंग मी याला सुरक्षा तंग जग खोंजी की सुविधाएं की खतर पहचा की लिहाजिक इनु पठानिया शहरपुर रंग नंग की राष्ट्रीय मार्ग की लिहा फेकन लोक निर्माण रंग छू शक्ति विद्युत रिया तंग राज्य सब की लिहा फेकन याला दुनमा चिक चावा लिहा ला गुना पहचा खोंसु शुआ दी लहा दी दुनमा ला फेरलोन की परियोजना की न्यम्पू ला जुड़ाई चुवेन लेहा पैकन या न्यावुला खोंसु थुलवा पठानिया सुशुआ की राष्ट्रीय राजमार्ग की गोवा तंग लेहा पैकन या ला खोंसु दी निर्देश का तेपा थेने जोहा लेहा पहचा चावा यंग दी नांग दू खोंग चावा की युरा या ला छू यहाँ दिमु छाई तंग जा तंग अति आला खिमसा माचुंग मातुंगा यहाँ झारवाल चिला से न दि झारवाला मीनांग मे तिखाऊ योगा थेने अति गबला कैलाश फेडरेशन की सोमा गोवा बलदेव सिंह ठाकुर सुशिमला नांग की पदभार का ग्रेंचुआ खोंग सुंदी मौके ला खोंग की जिम्मेवारी फीला मुख्यमंत्री या पुला यहाँ जिनमा नेताओं के आभार का व्यक्त चुआ खोंग सुशुआ की खोंग दी उम्मीद याला मीना मेरी याकू छाई लहा पेची कोशिश चुन बलदेव ठाकुर सुशुआ की कैलाश फेडरेशन से न कि लिहा के याकपू छाई खोंग पैतिन दी खोंग शुआ यंग नामला प्रदेश नंग की दंग तिरिया मानसून की छरवा ते मीना मेरी जारी योका तेने दी लंगातोक ना सु प्रदेश ला मंगछा युल दू मानसून की छरवा गेवा यंग दिला नाम का मीना मेति ठीसी दुख सेवा न्यू यंग न्युकुन न्युकुन छरवा का गेपची दिला दिसु यंग जिनमा जगह याला यंग छरवा मांगबू गेपची नुकसान मीना मेति चूसंग सगा दिया नाम की विभाग सुखा दि सप्ताह चिकते प्रदेश की सो जगह ला मीना मेति छरवा गेपचा की काचा का ठाक छावा दिला यंग ऑरेंज अलर्ट का जारी चुई औका मी अला तनबू छाए दिमू छाए देचा रंग सावधानी फेचा की लोन का ठा विभाग के अनुसार छरवा मांगबू सु यहाँ होड़लो भूस्खलन लम या बन रोया की काचा का ठा तेने दि अति सेना यातायात या खाऊ का मीना मेति योंगचा की काचा ठा इक यहाँ बोला बिजली का की खाऊ का दिनांगला योंगचे काचा ठा तेने मी या सु का यलम मलम डोल सेना तन बुझाई डोया की लोन का ठा दी ते क्या कर की लोन योंगसे ही इ गाबला आने दिखी की लुंगन पूछी नियंदा जा।

स्पीति कार्यक्रम आपने सुना। मीडियम वेव 387.6 मीटर यानी 774 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे।

0: अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। तीर्थ यात्रियों को लिखे एक पत्र में प्रधानमंत्री ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करना, एक पेड़ मां के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करके और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अमरनाथ यात्रा आस्था, सांस्कृतिक एकता और सेवा के मूल्यों को मजबूत करती रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चिकित्सकों, पैरामेडिकल व तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर रही है। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा के निदान विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी निदान सेवाओं में 0 प्रतीक्षा अवधि सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी के चिकित्सकों की मांग पर संस्थान को जल्द ही 256 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य अवसंरचना को व्यापक रूप से सशक्त बना रही है। प्रदेश सरकार ने राज्य वन विकास निगम के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित निगम के निदेशक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा ₹21,000 तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस देने की मंजूरी भी दी गई। इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की भी स्वीकृति दी गई जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 240 दिन का कार्य पूरा किया है। वहीं प्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप पात्र अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण का निर्णय भी बैठक में लिया गया। निदेशक मंडल ने विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी ₹425 से बढ़ाकर ₹450 करने को भी स्वीकृति दी। ये संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। सिरमौरी लोहिया को जीआई टैग मिलने पर हाटी विकास मंच ने प्रसन्नता जताई है। मंच के सदस्यों ने कहा कि ये सिरमौर जिला विशेषकर गिरिपार क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक हस्तकला और स्थानीय बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही उत्कृष्ट कला का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान है। उन्होंने सरकार से सिरमौर और गिरिपार क्षेत्र की अन्य पारंपरिक कलाओं, हस्तशिल्प, कृषि और खाद्य उत्पादों का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण कर उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से जीआई पंजीकरण दिलाने का आग्रह किया है।
1: आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। जिला सिरमौर का जो एक हमारा उत्पाद है लोहिया, जो हम लोगों ने पहना है, जीआई टैग उसको मिला हुआ है। जीआई टैग की जो सौगात है वो बहुत ही अमूल्य है। हमें हर्ष है कि जिला सिरमौर के एक जो वस्तु है उसको जीआई टैग मिला है। काफी समय से लोगों की डिमांड थी कि ये जो लोहिया है सांस्कृतिक धरोहर है, इसका जीआई टैग होना अति आवश्यक है। समय समय पर प्रदेश हाटी विकास मंच और अन्य संगठनों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे को बड़े ही जोर शोर से उठाया था। परिणाम स्वरूप हमें इसकी अमूल्य सौगात मिली है। अब क्या होगा, जैसे ही लोहिया का जो स्थानीय उत्पाद है वो अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसको रिकॉग्निशन, मान्यता मिलेगी।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। आज का विषय है NCW महिला हेल्पलाइन, महिलाओं की सहायता के लिए समर्पित एक मंच। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।

महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करना एक समावेशी और न्याय संगत समाज के लिए आवश्यक है। सुलभ और उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा तंत्र मुद्दों का निवारण करने और सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा व बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष वैधानिक निकाय है। ये महिलाओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने और उनके कल्याण व सशक्तिकरण की वकालत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल में दहेज, समान रोजगार के अवसर और श्रम शोषण आदि विषय शामिल हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के प्रतिवर्ष घरेलू हिंसा और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार से संबंधित हजारों शिकायतें मिलती हैं। इस तरह के दुर्व्यवहार महिलाओं के मानसिक कल्याण पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए इसके लिए पेशेवर मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता होती है। संकट में महिलाओं की सहायता के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग 24 घंटे महिला हेल्पलाइन 1-4-4-9-0 संचालित करता है, जो हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए एक डिजिटल शिकायत पंजीकरण प्रणाली प्रदान करता है। ये टोल फ्री नंबर राष्ट्रीय महिला आयोग की

0: इसलिए इसके लिए पेशेवर मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता होती है। संकट में महिलाओं की सहायता के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग 24 घंटे महिला हेल्पलाइन 1440 संचालित करता है, जो हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए एक डिजिटल शिकायत पंजीकरण प्रणाली प्रदान करता है। ये टोल फ्री नंबर राष्ट्रीय महिला आयोग की मौजूदा हेल्पलाइन 7827170170 से जुड़े एक आसानी से याद रखने वाले शॉर्ट कोड के रूप में कार्य करता है। 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई भी महिला या लड़की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकती है। ये महिलाओं की शिकायत दर्ज करने और तत्काल सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ये प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श संस्थानों द्वारा संचालित है। ये जरूरतमंद लोगों के लिए पेशेवर और सुगम हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की महिला हेल्पलाइन सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच और शिकायत निवारण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों का उदाहरण है। हेल्पलाइन किसी भी समय सहायता प्राप्त करने के लिए 2400 घंटे डिजिटल शिकायत पंजीकरण प्रणाली प्रदान करती है। हेल्पलाइन शिकायत पंजीकरण मनोवैज्ञानिक परामर्श रेफरल सहायता और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए एक डिजिटल एक्सेस पॉइंट की सुविधा प्रदान करती है। ये सहायता सेवाओं को अधिक सुलभ और नागरिक केंद्र बनाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की मौजूदा हेल्पलाइन से जुड़ा एक राष्ट्रव्यापी नंबर प्रदान करके ये पहल विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति में सहायता तक त्वरित पहुँच को सक्षम बनाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त शिकायतें महिलाओं के प्रति अपराधों की प्रकृति और प्रवृत्तियों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये विश्लेषण महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार संस्थानों के कामकाज में अंतराल की पहचान करने में मदद करता है। इसके निष्कर्ष ऐसे मामलों की प्रतिक्रिया में सुधार के लिए सुधारात्मक उपायों के लिए सिफारिशों का समर्थन करते हैं। पुलिसकर्मियों, न्यायिक अधिकारियों, अभियोजकों, फॉरेंसिक वैज्ञानिकों, बचाव वकीलों और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रमों के दौरान शिकायतों का उपयोग केस स्टडी के रूप में भी किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग शिकायतों की जांच करने और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करता है। आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले आयोग के अधिकार क्षेत्र के अनुसार शिकायतों की समीक्षा की जाती है। शिकायतों की जांच पड़ताल की जाती है ताकि ये तय किया जा सके कि वे आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं या नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली शिकायतों को रजिस्टर किया जाता है और उन्हें एक यूनिक केस नंबर दिया जाता है। जो शिकायतें अधिकार क्षेत्र में नहीं आती उन्हें शिकायतकर्ता को सूचित करने के बाद बंद कर दिया जाता है। मामले की प्रकृति के आधार पर पंजीकृत शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है। शिकायतकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है: पुलिस जांच में तेजी लाना, निगरानी करना, वैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करना, मध्यस्थता परामर्श के माध्यम से मुद्दों का समाधान करना है।
1: सामयिक चर्चा आपने सुनी। विषय था NCW महिला हेल्पलाइन, महिलाओं की सहायता के लिए समर्पित एक मंच। वाचिक स्वर प्रभा शर्मा का था। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन है FM शिमला के साथ। ओल्ड हिट्स में फिल्म संगीत का आनंद आप लेने जा रहे हैं और पुराने फिल्मी गीतों का आनंद आप लेंगे कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं इस गीत से जिसे हमने लिया है फिल्म दुनियादारी से।

0: तो क्या करोगे?
1: उसकी चौखट पे जाके मरूंगा।
0: ना ना ना ना, तुम मरोगे तो मेरा क्या होगा?
1: ओ बिरजी गाना, बिरजी गाना।

दुनियादारी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। ओल्ड हिट्स फिल्म संगीत में ऐसे गीत हम आपके लिए लेकर आते हैं जो बीते सुनहरे युग को जीवंत करने का दम रखते हैं। इन गीतों की धुन में होता है एक जादुई सा आकर्षण।

0: आइए अब यादों के खजाने से निकालते हैं एक बेशकीमती मोती इस गीत के रूप में। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा, गुलजार के बोल और संगीत है राजेश रोशन का।
1: हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता।
2: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
1: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
2: सोचने दो।
1: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
2: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
1: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
2: तुम मुझे प्यार करते हो?
1: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
2: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
1: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन
2: प्यार करते हो ना?
1: पर जरीन तुम
3: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

हमें छोड़कर तुम कहाँ जाओगे, मौसम नहीं जो बदल जाओगे, रहते नहीं हो एक पल भी हमसे दूर, हमारे बिना तुम कैसे रह पाओगे। प्यार भरा एहसास लिखा है तुमको अपने पास लिखा है, पूरी दुनिया अपनी है पर तुमको सबसे खास लिखा है। ओल्ड हिट्स फिल्म संगीत आप एंजॉय कर रहे हैं FM शिमला से, और कार्यक्रम का अगला नगमा आपको सुनाने जा रहे हैं नया दौर फिल्म से। आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की।

नया दौर फिल्म के इसी गीत के साथ ओल्ड हिट्स फिल्म म्यूजिक में आज बस इतना ही। एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हो चुके हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युव वाणी।

आप सभी को हर्षिता का प्यार भरा नमस्कार। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस इंसान की जिसे हम हर सुबह शीशे में मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे खुद की। किसी ने क्या खूब लिखा है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं। हमारी उंगलियों के निशान, हमारी मुस्कान, हमारी सोच।

सब कुछ बिल्कुल अनोखा है, लेकिन कितनी अजीब बात है ना, हम पूरी दुनिया पर भरोसा करने को तैयार हो जाते हैं। हम दोस्तों पर भरोसा करते हैं, किस्मत पर भरोसा करते हैं, लकी पत्थर पर भी भरोसा करते हैं। बस एक ही इंसान है जिस पर हम सबसे ज़्यादा शक करते हैं, और वो है हम खुद। जब भी कोई नया सपना सामने आता है, हमारा मन धीरे से कहता है, क्या मैं ये कर पाऊँगा? आज इसी क्या को हम हाँ में बदलेंगे। चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये गीत।

दोस्तों, खुद पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं कि आपको कभी असफलता नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जब आप गिरेंगे तो आपको ये विश्वास होगा कि आप फिर से खड़े हो सकते हैं। ज़रा सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो सैकड़ों बार गिरता है। वो गिरता है, उसे चोट लगती है, वो रोता है, लेकिन क्या वो कभी ये सोचता है कि चलना मेरे बस की बात नहीं,

मैं अब कभी नहीं चलूँगा। नहीं, वो फिर खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक अनजाना मासूम सा भरोसा होता है।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें हम बात कर रहे हैं खुद की। दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम

हमारी पुरानी असफलताएं हमारे मासूम भरोसों पर धूल जमा देती हैं। हम दूसरों की बातें सुनकर तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे लेवल का नहीं है, तुम्हारी किस्मत खराब है, उनकी बातों को सच मानकर अपने ही पंख काट देते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, जब तक हमारे भीतर का दिया जल रहा है, बाहर का कोई अंधकार हमारे हौसले को हरा नहीं सकता। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हमारे अंदर का डर खत्म हो जाता है। हम परिस्थितियों में गुलाम नहीं बल्कि अपने भाग्य के निर्माता बनते हैं।

हार और जीत दोनों ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप कई बार हार चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी मंजिल के और करीब आ गए हैं। हर हार आपको सिखाती है, आपको और मजबूत बनाती है।

रास्तों में चलने पे डर ठोकरों का होगा, सपने देखने में डर उनके चूर होने का होगा, ज़िंदगी जीने में डर मुश्किलों का होगा, और इन सभी पर विजय पाने के बाद अगला ही पल सुकून भरा होगा। दोस्तों, ज़िंदगी में मिली हर हार एक नया सबक सिखाती है, और हर ठोकर हमें और भी मजबूत बनाती है।

दोस्तों जब दुनिया आप पर हंसे तब भी आपको खुद मुस्कुराना है। जब सब आपका साथ छोड़ दें तब भी आपको खुद का हाथ थामकर आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और आप पर क्यों करेगा। दोस्तों इतिहास गवाह है, जितने भी लोगों ने दुनिया को बदला है उन्होंने सबसे पहले अपने भीतर की आवाज़ को सुना और उस पर भरोसा किया। तो उठिए, अपनी असफलताओं की धूल को झाड़िए, अपनी आँखों में एक नया ख्वाब सजाइए और पूरी ताकत से कहिए, हाँ मैं कर सकता हूँ और हाँ मैं ही करूँगा।

दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जाते जाते बस इतना कहूँगी कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। दोस्तों, अपनी काबिलियत को पहचानिए, खुद पर भरोसा रखिए, मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब मुझे हर्षिता को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक बने रहें 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के साथ।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ जुड़े हैं आप। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4 बज चुके हैं और एफएम शिमला से अब आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का, साथ ही साथ लोकल अपडेट्स भी जानेंगे। तो सबसे पहले ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में, सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ, गीत तो आप सुन ही चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ अपडेट्स की। शिमला शहर के आंगनबाड़ी सहकृत केंद्रों में 22 जुलाई को होंगे इंटरव्यू। बिल्कुल सही सुना आपने। शिमला शहरी जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी इंदु शर्मा ने बताया कि शहर के विभिन्न आंगनबाड़ी सहकृत केंद्रों में रिक्त पदों को भरने के लिए 22 जुलाई को इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे और चयन प्रक्रिया एसटीएम शहरी कार्यालय में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। भर्ती के तहत 9 क्रैच कार्यकर्ता और 13 क्रैच सहायिका के पद

आंगनबाड़ी सहक्रच केंद्रों में रिक्त पदों को भरने के लिए 22 जुलाई को इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे और चयन प्रक्रिया एसटीएम शहरी कार्यालय में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। भर्ती के तहत 9 क्रैच कार्यकर्ता और 13 क्रैच सहायिका के पद भरे जाएंगे और ये भी जान लो कि कहां कहां पे ये पद भरे जाएंगे। फागली, घुड़ासराय, आरटीओ, टूटीकंडी, समरहिल, बंगाला कलोनी, चलौंठी, रुलदू भुट्टा, स्ट्रॉबेरी, कुफ्टाधार, साधना घाटी, बहमलोई और नॉर्थ ओक क्षेत्र के केंद्रों के लिए चयन होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि आयु 22 जुलाई 2026 तक 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। क्रैच कार्यकर्ता के लिए जमा 2 और सहायिका के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है। पारिवारिक वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्धारित श्रेणियों की पात्र महिलाओं को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे और अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 7018800702 पर संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं शहरवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और बीती बारिश में हुए नुकसान की भरपाई के लिए निगम ने वार्ड्स को 54.5 लाख रुपए के करीबन निर्माण कार्यों की मंजूरी दी है। निगम ने इसके लिए टेंडर भी आमंत्रित कर लिए हैं और आगामी 7 जुलाई तक इच्छुक ठेकेदार आवेदन कर सकते हैं। इसके अगले ही दिन अलॉट भी किए जाएंगे। निगम का कहना है कि इन पैसों से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे, जिनमें सड़कों और पैदल मार्गों की मरम्मत करना, नालियों का निर्माण और सफाई, रिटेनिंग वॉल, एम्बुलेंस रोड, स्टील ग्रेटिंग, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए चेंजिंग रूम और कार पार्किंग की मरम्मत जैसे कार्य शामिल हैं। चलिए अब चलते हैं गीत संगीत की ओर।

शिमला मिर्च फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत स्थानीय सूचनाओं के साथ, और इसी क्रम में बात करते हैं ओक ओवर गेज 2 से लोक भवन तक वाहन यातायात पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि को बढ़ा दिया गया है। नए आदेशों के मुताबिक अब इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही 21 जुलाई तक प्रतिबंधित रहेगी। ये आदेश पहले जारी किए गए निर्देशों की निरंतरता में प्रभावी रहेगा, और जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान ओक ओवर गेज 2 से लोक भवन तक किसी भी प्रकार के वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस निर्णय का उद्देश्य क्षेत्र में आवश्यक कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करना और यातायात व्यवस्था बनाए रखना है। प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि इस अवधि में असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में प्रशासन का भी सहयोग करें। चलिए अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून वर्षा का क्रम जारी है और विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिल रहा है बारिश का। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है प्रदेश भर में। सुनते हैं कार्यक्रम का लास्ट सॉन्ग, जिसे हमने लिया है पुष्पा 2 फिल्म से। आवाज़ है श्रेया घोषाल की।

इसी के साथ कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर FM शिमला के साथ जुड़े हैं आप। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों में सबसे पहले सुनिए सिरमौरी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला से भी सुन रहे हैं।

तो असो भी शो नवाड़े खे शीतल शर्मा का राम राम। बेड़के के चौ बाजे और रुए 21 मिनट और यों भक्तो दे तुए असो आकाशवाणी के शिमला केंद्र साथी शून दे लागे रुए अपना खास सिरमौरी कार्यक्रम। एतलो के कार्यक्रम दे बात लाऊं बे

तो ऐजा सुना तू है ब्रह्मदत्त की भाषदा बैगे बठिया गीत। बात लाणो सुनो का सिलसिला शुरू कर बे और बात लाऊं बे उमारे संस्कृति उमारे पहचान गश। उमारे सिर मोरी संस्कृति ओसो उमारे शान। लोहिया सुथोण मुंडो दे ढाठू और टोपे और हाथों दे डंगरे ऐजी ओसो उमारे पहचान। मुड़ा च्यूड़ो गुलटी खाएओ और मुंजरे दा चोटियो तो बीता मांग और अबे ओरियल्टी आने वाली है तो तू है कोरो चेल्टे और पटवांडे बांडो का इंतजाम। सिड़कू खेंडा सुतोले उसकोली चेल्टे पटवांडे और हुलोले ऐजाओ सो मारा खान पान और घाघरे चोली और चोलने बांड बांबियो पोड़े जांदा बूढ़ी देवाली दा बिठान। ऐजा पहनावा बाते बाते के पकवान और बाते बाते के बार त्यार ऐजियो सो मारी शान और ऐजे यसो सिनमोरी की अपनी एक खास पहचान। तो बात रोय लागे जे उमारे अपने रिवाज खान पान अपना पहनावा अपनी संस्कृति ऐजे उमारे शान ओसो उमारा मान ओसो इंदे यसो उमारी पहचान। उमारी संस्कृति अमखे पहचान दियो जे कूणे ओसोए कैथे शाये का रिवाज है का खान पान है और का पहनावा है। जैसे कुछ ये अपने संस्कृति का मानने थोई तेसके पहचान भी धुंधले पड़े। उमारे पहचान उमारे संस्कृति दियो सो अमे अपना अस्तित्व तभी जो सको जब अमके ही अपनी संस्कृति का पता होला जे कैसे कैथे से तो रे आए और का उमारा बाणा सो का रिवाज है का पहनावा है। इनू भद्दी बातों लाना समझनो खे और अपनी संस्कृति और अपने रिवाज अरी जोड़नो मिलनो खे ये जो बहुत जरूरी हो सो जे अमू अपने बोले आने चाहिए। और एतलोक के वक्त दो का हुई दो लगो जके थी के थी माँ बाबा अपने ननड़िया लोई अपने बोले सिखा देने या अपनी बोली दी बात करना जो ऐसे मना करो बाजे जाओ। यों आधुनिकता के दौर दे से अपनी बोली का महत्व जुए से बिसरे जाओ। तिनके ये शो जानियो जे हिंदी अंग्रेजी सीखियो अपनी बोले जुए से जरूरी अथी ने जबकि हकीकत है जे ओसो जे जो बेताओ अमू अपनी बोली दी बातचीत करने ने आले तो बेताओ आमे अपने जो अस्तित्व है अपना जो वजूद है से समझे ने सुख दे और अपनी संस्कृति हरी गोले मेले ने सुख दे। जब अपने बड़े बुजुर्गों की बातचीत ने समझे की हैं अपने गांव के लोगों हरी ठीक ढंग से बातचीत ने करी तो ऐसे दही अपनी पहचान ही खतरे दे पड़ो तो तभी भूलो जे हमारी संस्कृति जो है से हमारी पहचान हो। संस्कृति की बात करबे तो हमारा रोना बसना खान पान हमारा बमतरा पहनावा नाचना गाना बार त्यार रीति रिवाज ये जी भद्दी बात जो है से संस्कृति दिया। अपने सिर मोरी संस्कृति की बात करबे तो बड़े खुशी की बात रहे होए जे हमारी संस्कृति की शान हमारा लोहिया इंदे खे जी आई टैगरा भेटे जिंदे लोई पूरे देश दे जो है से लोहिये खे पहचान रहे भेटे मान सम्मान और सुरक्षा रहे भेटे। लोहिया सिर मोरदा मर्दों का पहनावा सो खास तौर और जू खास तौर सुरदीदा और शेड़े के वक्त होदा बांबे जाओ क्यों मशीन।

रुई आए, बड़ा सूखा काम रहा है। पर अगड़े काम होती हो चढ़े के मौसम दा खेचो पुंडी टोल ने संडियो थी किए तो त्यों वक्त दे लोग अपनी का गिबी तौर ऊनो कातनों का काम करो थी। क्योंकि अगड़े बेड़ो बकरी भी खूब पालो थी लोग तो ऊनो के भी कौमे जुए से ज्यादा देखने के भेटो ने थे। और यों कातन और यों ऊनो कातियो लोग बमणों के लोइया और सुतनों के दुआड़े इनू बनने का काम करो थी। और सत्ती शल लोई पगोई भी पड़ा थी और पगोई भी बाण थी। पर एतलो की वक्त दे एजी चीजों में बिसुर दे लगे लोहिया तो एतलो में बांबो भी ओसो और केथी केथी जुए से अप्पी लोग बाणो भी एक आते हो बुढ़िया करो और इन्हें का प्रचलन ओसो भी ओसो एतलो। पर एतलो जो दौड़े ओसो जो कामणों की जगह में सुतनों के करो से जुए एतलो कोसी के गौरों दी देखनो के भिड़ दी ने पगुई आगे जुंजी शैलो की बुनियों दी वो थी एतलो से जी भी प्लास्टिक की रोई चाले जुंजे शकड़े घीले जुए से निगाले के बुनियों दी वो थी एतलो से जी भी प्लास्टिक के रे चाले। और तुम सब भी की पता है जब प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के कतरा नुकसानदायक सो जुन जे बुजुर्ग लोग है भी मुँह अरी यो कार्यक्रम अरी जुड़ियों दे सो तिनके पता होला जे आगड़े सुरती दो कितरो याड़ पड़ो थियो दू दू चीचे भी नेताओं सिर मोर के जो ऊंचे ऊंचाई वाले इलाके असो तिंदा यूं पड़ा दारू थिया तो त्यों वक्त दे लोग अपना शरीर गर्म थोड़ो के लोहिया बांब थिए सोतनों के दुआड़े कर थी। और तो त्यों वक्त द लोग जो है से ऐजा इंदे का उपयोग कर थी अपना शरीर गर्म थोड़ो के। और इंदे के साथ ही रिवाज शुरू हुआ बकरे काटनों का ताकि पुश और मांगों के बिने सुर दिए शरीर जुए से गर्म थोइला और खानों का भी जुए से इंतजाम बुनादा रोला। और तभी तो जुए से डंगरो जिंदे लुई बकरे काटो है से ओमारी सिरमोरी संस्कृति का एक खास हिस्सा बुना। और इन बकरे के खालों के जुए से बोछणों के बिटकू बण थिए और लातों के खुरशे बण थिए। खुरशे में तो बहुत कम भेटो देखनों के भी पर आगे लोगों के जूते की जगह जुए से खुरशे वो थिए। और खासकर सुरती दे लोग इनू लाओ थिए क्योंकि ये जानवर की खालो लुई बुणों दे वो थिए तो एक गर्म भी वो थिए और यों गशी हांडणों दें दे सुविधा भी भेटो थे। तुम्हारी संस्कृति का खास हिस्सा हमारा पहनावा खान पान इनू भद्दी बातों गशी भी अपने चर्चा लाए थोंबे पर इंदे शागे सुनाऊं दे एक सिरमौरी लोकगीत।

अरिने खेपाड़ी चौमिन भी बुल अरिने बनो खेजुए से एक लकड़ी की बुण्यो दे एक मशीन जे मानसो को तिने लो बुणो है और तिने जबले की भी मदद लागो और इन्हीं के साथ ही हुलौड़े खेंडा खोबड़े ऐसी भद्दी चीजों मांगो के बिने दी बाणो क्योंकि मांगो का बिना जो है से उमरी सिर मोरदा खासकर गिरीपार दा बारह त्योहारों का बिना ओसो और पाउने काना जाना भी बिने जो है से लागा होंदा रुओ पहनावे के बात कोरबे तो लोहिया सुथोण और मुंडो का शीटो पे मोरदो का पहनावा है और डाठू घाघरा चोले महिला का खास पहनावा सो एबे तो घाघरा चोले कम बाम पर आगड़े इन्हे का जू ऐसे खूब रिवाज थिया तो ऐसे लागे बात सिरमौरी संस्कृति गशी उमारी शान उमारे पहचान गशी पर उमारे शान तबे रौंदे जे आमे इन्हे खे मान सम्मान देऊंबे बचाए यथोंबे और यो संस्कृति का अपनी आने वाली पीड़िताओं प्रसार कोरबे और अपनी संस्कृति गशी गर्व कोरबे अब अपनी बातचीत लाऊंबे मिशन इंद्रधनुष गशी मिशन इंद्रधनुष उमारी भारत सरकार की एक टीकाकरण कार्यक्रम ओसो और अजा कार्यक्रम भारत सरकार 25 दिसंबर 2014 दा शुरू थी था कोरे यो योजना का जो खास उद्देश्य ओसो से 2 साल ताओं के ननड़िया और पेटबारी महिला जुंजी कुणिया वाले त्यारे सेहत का ध्यान थोड़ा और तीनों बीमारी से बचाना ताकि माँ और त्यारे आने वाले जो ननड़िया है से सुरक्षित रोले और स्वस्थ रोले जुंजे भी बुजुर्ग लोगों कार्यक्रम वरी जुड़ियो दसो तिनकी पता होला जे आगड़े स्वास्थ्य स्वस्थ ननड़िया पैदा करनो और तेथु स्वस्थ ढंग से बोड़ो करनो एक बड़ा मुश्किल का काम थिया क्योंकि तो दिए जे टीकाकरण जैसी जो सुविधा है गौरे गौरताओं पहुँचने रही थी ननड़िया दी पैदाणों के बाद जो है से बांते बांते की बीमारी लागो और भूती बोए ननड़िया जानी शो भी जाओ इन एक ऐसा थी माँ दी भी बांते बांते की बीमारी लागो तो इनू भद्दी परेशानी दूर करनो है ताकि स्वस्थ माँ माँ का स्वास्थ्य ठीक रोला और ननड़िया भी जो है से स्वस्थ हो लो तो इन देखे हमारी भारत सरकार है मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम जो है से शुरू करा जब ऐसा मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम 2014 दा शुरू हुआ तो यो कार्यक्रम के तहत सरकार है सती बांते की बीमारी से बचाव है टीकाकरण शुरू करा तभी यो मिशन को नाम इंद्रधनुष थू क्योंकि जो बातें है इंद्रधनुष जिन्हें खे हमें पणियारे भी बोलो तिन्हें 7 रंगों क्यों ही बातें है यो योजना का उद्देश्य भी सती बांते की बीमारी से ननड़िया और तिथकी माँ के सुरक्षा करना थिया ताकि तिनकी जिंदगी दे स्वस्थ शरीर और खुशहाली के रंग जुए से आल है और ऐसी 7 बीमारी है जैसी डिप्थीरिया होए टेटनेस हो पोलियो खसरा ऐसी भद्दी बीमारी दी माने जा यो मिशन इंद्रधनुष सफल बनाने दा आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जुए से खास योगदान रह रहे जब 2019 दो कोरोना महामारी फैले तो त्यों वक्त दा यो मिशन का काम जो ऐसे ढीला पड़ा तो ऐसा कार्यक्रम सफल बनो है जुन जी माँ ननड़िया टीकाकरण कराणों से रोई छोटे गुए तीनों सभी दा टीकाकरण कराणों के जो ऐसे 2021 दा भारत सरकार है सघन मिशन इंद्रधनुष का एक नया चरण शुरू करा और यो कार्यक्रम खे गति दे तो मिशन इंद्रधनुष सफल बनो दा आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो ऐसे खास योगदान हो तो ऐसे लागे बात मिशन इंद्रधनुष कशी और अब सुनाऊं दे एक सिरमौरी लोकगीत।

तो ऐसा सुना तू है राजेश मलिक की आवाज दा बैग भटिया गीत। अबे अपने नजर पाऊबे एतलो के कुछ खबर समाचार गशी। सिरमौरी लोहिया खे जीआई टैग भेटणो गशी हाटी विकास मंच है अपने खुशी जताए। यह मंच के सदस्य बोलो जे सिरमौर जिला खासकर गिरिपार अपने क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक हस्तकला और इथे के बुनकरों की पीढ़ियों शुंडे चले आंदे लागे कला का जुए से राष्ट्रीय स्तर दा सम्मान सो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जम्मू कश्मीर दी चालियों दे और हर साल आने वाले अमरनाथ यात्रा करने वाले सभी श्रद्धालु के शुभकामनाएं दी। बयालिया अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के नेतृत्व दा महिला है नोएने दा महंगाई और बेरोजगार के खिलाफ जुए से प्रदर्शन करा। यो समिति की राज्य अध्यक्ष संतोष कपूर है बढ़ते महंगाई, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमत गशी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के जुए से जमकर आलोचना करे। तो ऐजे थी एतलो के कुछ खबर समाचार। तो हमारी सिरमौरी कार्यक्रम का एबे वक्त ओए चाला, एबे भेटियों में ओतवारे तो बताओ खे मुख्य दियो इजाजत और अपना छुआ ध्यान तू सो भी सुनने वाले खे शीतल शर्मा का राम राम।

सिरमौरी कार्यक्रम अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं महासुबी कार्यक्रम।

महस्वी कार्यक्रम शून्यालय सभी श्रोतारा आकाशवाणी शिमलेखा खूब खूब स्वागत। सभी शून्यालय के तारे रेडियो दोस्त खेमराज शर्मा रा नमस्कार। तो श्रोताओं तुम्हारी से तेरी कामना करूँ, तुम्हें खुश रहे चाहिए, मस्त रहे चाहिए, सेहतमंद रहे चाहिए, सेहतो आफ्ताब रहे चाहिए, यही आस रखू। तुम्हें आज के कार्यक्रम आरी नड़क थी तो पेश होगा तुम्हारा कार्यक्रम लौवा महास्वी कार्यक्रम। तो शो तो आज मारे अपने शून्यालय के बहुत कुछ सुनावना, मारे गल बात करनी जो मारे आज के विषय सो से वो सो आयुर्वेद अपनाएं तंदुरुस्ती पाएं। दूजा विषय सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे बारे दा गल बात होनी। अपने शून्यालय के बढ़िया बढ़िया मारे खबरसार भी सुनावने और बढ़िया बढ़िया लोकगीत तो उने तो कोई ना तुमा बिचे एबे ज्यादा ना रोंदे तुमा के कार्यक्रम दा ले हुआ एक बढ़िया जा लोकगीत सुनाई। आज आस रखू तुमा के

हजार साल पहले भारतादा हुआ था। इतिक है दुनिया रा स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ए भी एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली रे रूपा दा स्वीकार करो। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति री तुलना कदी भी आजकाली री मेडिकल सिस्टम साथी नहीं की जाए सको, क्योंकि इतरा शरीरा पांदे काम करने रा जो तरीका सोस से एक ही दूजे खा काफी अलग रहेगा। जेती एलोपैथिक दवाई रोगा साथी लड़ने री तई दे जाओ, तेती आयुर्वेदिक दवाई रोगा खेरे खिलाफ शरीरा री रक्षा प्रणाली खे बल दो, ताकि तुम्हारा जो शरीर सो तेस रोगा साथी लड़ी सको। आयुर्वेदिक प्रणाली शरीरा रे रोगा साथी मजबूती साथी लड़ो, ताकि मारा शरीर अपने आप तेस रोगा साथी लड़ी सको। आयुर्वेद भारतीय आयुर्विज्ञान असो आयुर्विज्ञान विज्ञानारी से शाखा असो जनीरा संबंध मानव शरीरा रे निरोग रखना, रोग ओ जाने पांदे रोगा खा मुक्त करना, तई उम्र बढ़ाने खा असो यानी बोला जाए सको असो कि आयुर्वेद्यति बोध्यति इति आयुर्वेद। मतलब जो शास्त्र आयु रा ज्ञान कराओ तिसके आयुर्वेद बोला जाओ। स्वस्थ आदमी या दुखी रोगी री तई बढ़िया रास्ता बताने वाला विज्ञान ही आयुर्वेद बोला जाओ। अर्थार्थ जस शास्त्रा दा आयु शाखा यानी उम्रा रा बांडना, आयु विद्या, आयु सूत्र, आयु ज्ञान, आयु लक्षण, प्राण उणे रे चिन्ह, आयु तंत्र, इना सभी री जानकारी मिलो तेते खे आयुर्वेद बोला जाओ। आयुर्वेदा रे सिद्धांत रे मुताबिक मारा शरीर खास तीन तत्वा साथी मिलुआ बनांदा, जनी खे दोष धातु मल धातु बोला जाओ। एबे बात करूं मैं दोषारी तो आयुर्वेदिक साहित्य रे मुताबिक मानव शरीर दोषा साथी मिलुआ बनांदा। तीना खे बोला जाओ वात पित्त तई कफ दोष बोला जाओ। यो तीनों दोष प्रकृति रे मूल तत्व अग्नि जल वायु पृथ्वी तई आकाश सभी साथी मिलुआ बने दसो। इना मूल पांजा तत्वा बिचाखा कोई दो तत्व तीना तत्वारे आधारा पांदे शरीरा रे काम तई प्रक्रिया जो सोसे मारी तय की जाओ। एबे बात करूं मैं मलारी, मल आदमी रे शरीरा खा निकला गोआ एक पदार्थ सो। मल मारे शारीरिक प्रक्रिया रा एक हिस्सा खास हिस्सा सो जनीरा मदता का शरीरा खा गंदगी निकलो। आयुर्वेदा रे मुताबिक मल दो प्रकार रे हो। पहला वा आहार मल, आहार मला दा मल मूत्र तई पसीना शामिल सो। धातु मल एते नाक कान तई आखी खा निकलने वाला द्रव्य शामिल सो। एते खा इलावा नश बाल कटना कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह धातु मला रे शामिल किए जाओ। आयुर्वेद चिकित्सा सर्वो सर्वा मानी जाओ। ए तेरी चिकित्सा का बाद आदमी री शारीरिक तई मानसिक दुई दशा दा सुधारो। आयुर्वेदिक दवाई रे बहुत ज्यादा घटक जड़ी बूटी पौधे फल फूल खा लौआ ओसो ए तेरी तई ए चिकित्सा प्रकृति रे नेड़े मानी जाओ। व्यवहारिक रूपा खा देखा जाओ तो आयुर्वेदिक दवाई रा कोई गलत प्रभाव देखने के नहीं मिलो। कई जीर्ण रोगारी तई आयुर्वेद खास रूपा साथी कारगर सो। आयुर्वेद न सिर्फ रोगीरा इलाज करो बल्कि रोगा खे रोको भी। आयुर्वेद भोजन तई जुमारी रोजमर्रा री शैली दा आसान बदलावा साथी रोग दूर करने रे तरीके बताओ। आयुर्वेदिक दवाई स्वस्थ आदमी री तई भी फायदेमंद हो। आयुर्वेद चिकित्सा सस्ती हो, क्योंकि आयुर्वेद इलाजा दा आसानी साथी मिलने वाली जड़ी बूटी तई मसाले कामा दा ले जाओ। आसान भाषा दा बोला जाओ तो ए इलाज मरीजारी रोग प्रतिरोध क्षमता पाचन शक्ति दिनचर्या खाने संबंधी री आदत तई तेसरी मानसिक स्थिति री जांच करुआ रोगारा निदान करो। ए तेरी तई शरीरारी जांचा खा शुणने

वह परीक्षण किए जाओ जनिता नाड़ी परीक्षण शून्यरा परीक्षण स्पर्श यानी छूनेरा मलमूत्रा परीक्षण आयुर्वेदिक इलाजारा नियम एलोपैथिक इलाजा खा बिल्कुल अलगो आयुर्वेदिका रे मुताबिक हर आदमी रे शरीरा दा एक खास ऊर्जा ओ जो शरीरा खे कसी भी बीमारी खा ठीक करुआ तेस वापिस स्वस्थ अवस्था दा लेवने री मदद करो। इते कसी भी रोगारा इलाज पंचकर्म प्रक्रिया पांदे आधारित हो। इते रोगारा इलाज करने साथी तेस दोबारा बढ़ने खा रोकने का पूरा ख्याल रखा जाओ। आयुर्वेदा रे मुताबिक शरीरारा मानसिक संतुलन बनाए रखने री तई एक स्वस्थ जीवन शैली जरूरी असो। इते हमार खे आदत व्यवहार आहार तई तेस वातावरण खे शामिल किया जाओ। आजकली बड़ी संख्या दा लोग बीमारी जिसी मधुमेह हुई मोटापा हुआ तई हृदय संबंधी रोगा सतीग्रस्त असो। यो रोग आमतौर पांदे आधे अधूरे पोषण आले आहार शारीरिक गतिविधि या व्यायामारी जो कसरत हुई तेते वगैरह खा ते तेरी कमी खा बोला जा सको कि उन्हें लगे दे। आयुर्वेदा रे मुताबिक रोग मुक्त शरीर रखने री तई दिनचर्या ऋतुचर्या तई बढ़िया आचरण रखना जरूरी असो। इते रोजाना सलाह दे जाओ कि चौखा साढ़े पांजा तई तुम्हा बिस्तरा जरूर छड़ना पड़ो। नियमित रूपा खा अपने जुसो नश होए बाल होए सो कट दे रहो। डाली बूटे री बनी दी जुसो दांतुनो सो लानी ते थे साथी अपनी से जिब भी साफ करनी। इते साथी क्या होना कि पाचना दा सुधार होना। बहुत सारे इशे काम असो जो हमें घरे बिठुआ करी सकूँ पर जरूरत असो इते नियम संयम तई अनुशासन बरतने री। इतरी तई हमें बोली सकूँ जो आयुर्वेद असो यो मारे पुराने ग्रंथारे मुताबिक देवी देवतारी चिकित्सा पद्धति असो। जनी रे ज्ञानक है आदमी रे कल्याणारी तई देवी देवते इस दत्री पंदे मानव कल्याणारी तई ऋषि मुनि तई महान आचार्य खे सौंपा। तो एथे मारे कुछ गलबात तो कोई ना इबे मारे अपने शून्य एक बढ़िया चा लोकगीत तई सुनावना। तो ए सुनो तुम्हें एक लोकगीत।

दिया जाओ। इते योजना रे तहत 10 लाख तेईरा लोन दिया जाए सको। जनी दा जो लोन असो सो श्रेणी असो से उसो शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। ए जो योजना असो मूल रूप अखा देशा रे छोटे व्यापारी पैसे री जरूरत पूरी करने री तई भारत सरकार द्वारा तैयार किया दा उपक्रम असो। ए विचार किया जाओ कि माटे व्यापारी री पैसे री मदद प्रदान करनी तो क्योंकि मारे भारत दा इना जो माटे व्यापारी छोटे व्यापारी असो इनारी आबादी ज्यादा सो। यो जो 3 श्रेणी सो इतने बार भी जिक्र कर लो मैं। शिशु श्रेणी जिशा की नावाखा ही धीशो ए श्रेणी सो पहली श्रेणी से ओ सब व्यापार जो एबू शुरू होने लगे दे थोड़ लगे दे करने से ओ इस श्रेणी दा आओ। इत श्रेणी दा 50,000 तेईरा लोन आओ। तो शिशु श्रेणी री तई ब्याज दर जो सो 10.12% री दर अपन दे असो। बात करूँ मैं किशोर श्रेणी ए तिना रीते ही आओ जुनिया अपना कारोबार शुरू किया दा और बढ़ने लगा दा। इत श्रेणी का आने वाले 50,000 तई रे लोन देने रा प्रावधान असो। किशोर श्रेणी रीते ही ब्याज दर 14.17% तई री असो। तरुण श्रेणी से वो सभी छोटे कारोबारी जुनिया अपना स्थान बनाएगा यानी तरक्की करने लगे दे से वो इत श्रेणी का आओ। तिना खे व्यापारा का तई बढ़िया तरक्की करने री तई पैसे की जरूरत पड़ो। इत री तई सभी छोटे व्यापारी इत आओ। 10 लाख तेईरा लोन इत दे सको। तरुण श्रेणी तेरी जो ब्याज दर असो से 16% अखा शुरू हो। मुद्रा लोने रे ए जो सो फायदे रे बारे दा बात करूँ मैं तो ए लोन जो सो बिना शुल्का रहे, बिना कसी परेशानी रहे, बिना कसी प्रक्रिया रहे हासिल किया जा सको। मुद्रा लोन रा उपयोग 50,000 रुपये खा 10 लाख तई पैसा लोने री तई हो सको। मुद्रा लोन विशेष तौर अपन दे छोटे व्यापारी का ध्यान करने रे बजाय बड़े कारोबारी रा देन देने री तई असो। मुद्रा लोन अपन दे ब्याज दर दूजे बैंकारी ब्याज दर रे बनिस्बत बहुत कम और सस्ती असो। इबे गल बात करूँ जे मुद्रा लोन किशा लोना तो इते सारी श्रेणी यानी शिशु किशोर तरुण सभी खे मुद्रा लोन किशा लोना। इतरी थोड़ी जी गल बात करूँ मैं सभी का पहले आधारकर्ता जो लोन लोना चाहो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे तहत अपने नेड़े या निजी बैंका दा व्यवसायिक बैंका दा जाने री जरूरत असो। इथा बाद लोन आवेदना साथी अपने विचार रखने पड़ो और इते फार्मा साथी अपनी पहचान रा प्रमाण पत्र अपने पते रा प्रमाण पासपोर्ट आकारा रे फोटो चाहिए। सारी चीज़ा बैंका रे निर्देशक है देनी जस लोन लोना तिस बरनी। सारे चरण पूरे होने का बाद लोन मंजूर होना और तिस के मिलना। तो ये थी मारे कुछ गलबात ए तेरे बारे दा। तो इबे जानते जानते मारे अपने सुनने वाले के एक बढ़िया जा लोकगीत तई सुनाऊना। तो ए सुनो तुम्हें एक लोकगीत।

योथे अंकुश भारद्वाजी आसरा को तो तुम्हें नरा लोकगीत भी जरूर पसंद आयो ला। तो श्रोताओ एथी मारी आज की पेशकश तुम्हें जरूर बहुत पसंद आई होली। इस वायदे साथी के आने वाले त्वारा दिना तो तुम्हारे साथी मुलाकात होली। तो तई के हंसते रहो, नेड़ दे रहो, खुश रहो, मस्त रहो। अपनी से तेरा खूब खूब ख्याल रखो। सभी शुभ न्याय खे। राम राम।

किनोरिंग भाई से नमस्कार। जो आकाशवाणी शिमला केंद्र तो जो प्रोग्राम कल्पारंग कुल्लूरी ले केंद्र ओजली रिले हचो भाई से ग सुदेश नेगी पेशलनो तो किनोरिंग प्रोग्राम दोग भाई से दमकेश तो जाए ग उम्मीद लन तो किना चो की राजी खुशी नीतिज जो शुंग तो हुन बरसातली शुरू हची सुनियो सानसान गोयनिंग लिबो दो दुई दियारो हुनता तो हुन किनोरिंग शोंग लिहिन शोंग सु खतन दो बरसात ली हाचू मुदे सांदा गोयनिंग बनना दो एको हसल होल्डो का बदो या तो ई पंग बादल फटे दो थासिम बदो मानिया दे जू मौसम वैसे खेचता तो खुन सांदा सावधानी का बर्तन निकली जरूरी हाचिस दो तो हम अमा तीली ख्या ख्या यूनिक से दो मानिया दे वैसे तो रोक प्रोग्राम कुमो दम दम घिथा था सुने चुकी नहीं हो साथ ही प्रदेश खबर सारे ले लिखिस बहु तो दंगची वैसी हले आतरो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ली दूनियो जू मोको दिन सांदा प्रत्याशी जू संबंध सिर्फ पर्यावरण मनी बल्कि कशानु स्वास्थ्य बच्चिया पीढ़ी का रंग पूरा पृथ्वी दिन मीगनु ताइंगनियो तोरुक्सु विषय तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस बारे जू कि ना चोकुनु पोताली नी तो बैसी हरभूषण ख्याचता शुम जुलाई में आई यानी तोरो द्यारो मुनाचनी हो जू दिवसु जू मकसद ख्याचता मी गनु इपोल्टंग इस्तेमाल हची दया जू प्लास्टिक थैला गनु नुकसानु बारे जागरूक लनु रंग जू कपड़ाओ या जू जूटू थैला गनु उपयोग लनु तांगेस जू मीनु तांगेस जागरूक लनोनी हो वैसे प्लास्टिक कशानु जीवनु हिस्सा चिम शुंग शुंगनियो बाजारो बीमा

घेतली सामान जोगमा, प्लास्टिक उथेला पोऱ्याच, यू कशा नू आसांता चालीम बजनियो, मगर यू परिणाम दोग वालमारी निजनियो। प्लास्टिक उचेकूत एक समस्या होय निज की आसानीस जो खराब माचिनियो, इत प्लास्टिक उपेग कोलेन नू ख्याचता कई बोशंग लगेचनियो, जूस मट्यांग तीरंग लानूली गंदा लंजनियो। वैसी प्लास्टिक को असर सिर्फ पर्यावरण ताई सीमित मैचनियो, सोड़ो के बाजारे नो जो उशरा लांगा या आई थिदली सेमचना तोगा बोगांद बोगांदंग बीबी थिदली जामू पोचिनियो, देरंग दोगा प्लास्टिक गेली जाजा शेचनियो। दोगो दोग एकदम टोशित या दोग शीचनियो, दंगची ख्याचता समोर दांगा दियो नदी नालांगा दियो, दंग पुत्स्या प्लास्टिक ख्याचता दंग तियो कुमोनी च्याहुन जानवरेली मछली गा दिसकी कछुआ दिसकी कई तियो नी च्या मधे जीवन दोगों जीवन तैसली वाली खतरा चिंदियो। हुन ता दुनिया कुमो ख्याचता ते मैच हर समोर दगानु कुमो प्लास्टिक जो हुन बोगा द्वा दोनियो, दंगची ख्याचता जो प्लास्टिक लेकमा दौर त्वचया धूमंग दोगतेता रुंगस्या नुकसान स्या निजनियो, जूस लानु प्रदूषण बोध्याच आई जू कशानु सासाऊ टोतरंग कई टोदानु खतराली हचिनियो। दोग जू पूरा दुनिया कुमो प्लास्टिक प्रयोग कम लनु जोर से दोनियो, भारत सरकार सली ख्याचता जू एकल उपयोग प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक देन रोग शेनु दिशो कई खास कदम थोशिनियो। मगर सिर्फ दोग जू कानून जुर्रे जू समस्याओं समाधान महाचिनियो, दो तंगे स्वयकु मराव आदतें कुमो बदलाव कन्नु जरूरत नियो। बैसी कशानु स्वयकु ओमस्ता कशानु ख्याचता बाजारो भी रंग सौदे दो खुन के आत कशानु ठता कफराओ या ठता आई किसीमु जू थेला का साथ ताम गैम नियो, जूस प्लास्टिकु बैग उन्नु जरूरती महाचिनियो। हो सके संख्याचता प्लास्टिकु बोतले दियो प्लेटे या तो खुन कपेनु बजाए तो स्टील या तो खुन कांच तुक देश के जो आई जो टिकाऊ चीज़ें नू उपयोगली लानिम गया मिगनियो। दंची ख्याचता अमराव की मरंग आसपास हो प्लास्टिकु पोंगा नेस्लो मफी के अमिक दोगो नू तरीका से अलग लनन जो कूड़ा दानो शेनिक दोपंग खेसी दम निपटान लानिम सुगेजनियो। छांगा नू लिख्याचता शुरूची पर्यावरण संरक्षण शिक्षा रन्निक आई जिगिचोची छांगा नू दम आदते शन्ना भविष्य कुमो इत स्वच्छ रंग स्वस्थ भारत निर्माण हचिन्नियो। होय मसल मिक्सिया की ग एसी होय कामंगलानन थुपरो पड़ा तोरू, इत तेक परिवर्तनी जिगिच जिगिच कमासी शुरू हचिन्नियो। अगर कशंगा पेरंग कुमो द्यारो सिर्फ इत प्लास्टिक थैलाओ उपयोग कम लन्ना, दोगी देशु कुमो करोड़ों प्लास्टिक थैला का कम इस्तेमाल हचोनियो। ओमी ओमी शोंग त्याचता कशानु पूर्वजे बुजुर्ग मेगा बजारो भी रंग या ता जोला का लटके क्या बीत या ता थता फसा दोगो लिखिस बीज दोगो तो आदत पर्यावरण तांगेस ली दम तोचनियो, आई टिकाओ ली तोच हुन समय होए बुब की होदी हुन परंपरा हे दोबारा अपने अमी सैनियो। तो रोजु अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस दिन इत संकल्प उन्निक्सिया की प्लास्टिक थैलानु उपयोग मलनिक्सिया मराव पे रंग रंग नेस्लोमी गनुली जू कपड़ाओ या जूटू थैलाओ इस्तेमाल लनु तांगेस प्रेरित लनिक्सिया मनिया। वैसे जुत तो की शानदार जानकारी कश्त हमें इत गीथंग ली रोंचे रोंची जू गीथंग।

भैंसी किनास किथांग दरों चिशे कलाकार तो के श्रीमती मायूम नेगी जी कष्ट हुन बत्याशी भैंसी इत होए सरकारी बचत योजनाओं बारे जोर देशु छचाचानु उज्ज्वल भविष्य पंग ध्यानो ताता जू योजना पंग शुरू लंशिदनियो जू योजनाओं नामांग दू सुकन्या समृद्धि योजना रिंगो भैंसी जू सिर्फ इत बचत योजनाई मानिनियो बल्कि अमाबुआ सपनागनु साकार लन्नु माध्यमनियो जोर मराओ चिमेदानु दम तालिम रंग उज्ज्वल भविष्य रनिम ग्यामारी हूँ। बैसी हर मनबोन ग्याच की दोगानु चिमेदा हुशिस तंग तंग ओम्स दोन्ना आत्मनिर्भर हाचिमा दम नुकुरीगा नोपन्ना जीवन कुमो सफल हाचिमारी हूँ ग्याच नियो मगर जू तालिम रंग भविष्य जरूरत तंगेस आर्थिक तैयारी।

गली होतई जरूरी नीज नियो। जो उद्देश्य ख्याचता भारत सरकारस पोषण निशाजार सोंगामिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रिंगो जो अभियानु तहत सुकन्या समृद्धि योजना शुरू लंशित नियो। जो योजना कुमो ख्याचता साय पोषण का कम उम्रु सचाचु नामंग देन डाकर या जो बैंक खाता खोल्याम सुकैसनियो ई पेरंग कुमो बोधी निश सच्ची में दानु तांगेस खाता खोल्याम सुकैसनियो। दंगची ख्याचा जो खास परिस्थिति अनुकुमो जुड़वा या शुम सजाचनु जन्मदिन ली नियमेनु अनुसार छूट ली उपलब्ध तोचनियो। जो योजनाओं चेकुते विशेषता होए ली धू की जोर मुलुक कम राशि बचत शुरू लनिम सोकैजरियो। इत वित्तीय बोशों कुमो जो गटो से गटो निशनी राव निशनी जाओ सै रंग बोधी से बोधी दो 1.5 लाख रुपया स्तंग जमा लनिम सोकैजनियो। जो राशि ईद या कई किस्ते नोली जमा लनिम सोकैजनियो हो जाई सामान्य आय से पेरंगाली मनाओ सुविधाओं अनुसार बचत लनिम सोकैजनियो। वैसे सुकन्या समृद्धि योजनाओं देन सरकार आकर्षक ब्याज दर प्रदान लनोनियो दो समय समय देन जो निर्धारित लंजनियो की भाई जो सै जमा लंशित राशि रंग एक दो दिन पोरत्या जो ब्याज ली नियमेनु अनुसारी लाभ पोरिया तो यह हलिया चीमे सरे बोशंग हाचिमा दोगोनु दम शिक्षाओ तांगेस दोगानु खाताओ रुपया ली त्वनसो कैसनियो। खाता खुल्यामु युम निजो इत पोषाऊ हचू निपी जु पक्का हचिस दोगजु राशि चिमेदानु पोरेसनियो। दोगजु राशि दम तालीम दियो थत व्यवसाय वे शुरू लनु नीमा या थत खास कमाओ शेनु नीमा देरंग दोक कमंग देसनियो। वैसे तोरकतु साम्यो तालीमु महतो ओमिका दोक कई गुना बोधी हचिसनियो। अगर आमा बोआ चिमेदु जोनम रंग साथी साथी जिगित जिगित बचत शुरू लन्ना भविष्य कुमो दोगजु तेग जोरियो दंग पोचन सो कैजनियो। हुजुई संदेश सुकन्या समृद्धि योजना कशानु द्यारोचु बचत अनुशासन रंग दूरदर्शिता सचाचानु भविष्य पंग सुरक्षित जुर्याम सो कैजनियो। जो योजना सिर्फ आर्थिक सुरक्षा माकेस बल्कि समाजु कुमो सचाचानु सम्मान रंग दोगानु सशक्तिकरणु संदेश ली कैजनियो। हतियाओ पेरंगा छेचाचानु तालीम रंग विकासु तांगेस ओमसे तैयारी लंतो दोगा ईद सशक समाजु जुर्याताजनियो। हो जाई दो हतियाओ पेरंग कुमो साय बोशंग का कम उमरु चिमेदा नीमा तोरुस्तांग जु सुकन्या समृद्धि योजनाओं लाभ माउनुन नीमा दोक मराओ ने रंगो डाखानाओ या बैंको संपर्क लन्नन जो योजनाओं जानकारी उनिम सुकैसनियो। वैसे कशानु देशु कुमो लोशित की चिमे किमु रौनक निजरिंगो तोरो छेसाचा हर क्षेत्रो अनेगनु प्रतिभास परिचय रनोनियो तालीम दियो विज्ञान दियो औद्योगिका दियो सेना प्रशासन न्यायपालिका रंग व्यापार हर क्षेत्रो छेसाचा ओमसदोनियो। मगर समाजु कुमो इदंके मशकोच मीगनु सोच होयली निज की किनानुता छांगा मैसरिंगो। हर क्षेत्रो छेचाचा न्यू कीर्तिमान स्थापित लनोनियो होए कुकुमो हर पेरंगु जिम्मेदारी दू की हुजुई सोच साकार लनु तांगेस भारत सरकार सुकन्या समृद्धि योजना रिओ शुरू लनशिनियो। साथी जू मारी सोच से मीगानु सकारात्मक सोच कनु तांगेस जू योजना इतम साबित हचोनियो जिम्मेदार कशानु समाज शक्ति निजनियो आई पूरा देशु उज्ज्वल भविष्यो पहचान निजनियो। वैसे जुदातों के शानदार जानकारी हुन कष्ट इत आई गिथंगली रोंचे रोंची जो गिथंग।

बैसी किना आज की थंगदा रोंजी शेज कलाकार तो केश गुलवंशी नेगी जी कश्त बैसी सांदा परदेशु खबर सारे लिखाशी तो जुली की नानू रिंग तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीरो अमरनाथ यात्रा लंसया श्रद्धालु गानु शुभकामना गा रहशीत तीर्थ यात्री गानु चेशीत इत चिठी कुमो प्रधानमंत्री वार्षिक अमरनाथ यात्रा पंग देशु आध्यात्मिक परंपरा रंग सांस्कृतिक एकतो कुमो इत शाश्वत अध्याय रिंगो लोशीत अने श्रद्धालु गंदंग यात्राओ दौरान गा संकल्प उन्नु ली आग्रे लंशीत जोर पूरा यात्राओ दौरान स्वच्छता जुर्यामु रंग चोई सुरक्षा रंग प्रशासनिक दिशा निर्देशनु दमकस पालन ननु रंग वोकल फॉर लोकल पहलू तहत मरों यात्राओ खर्चाओ ख्याचा घटो से घटो दोखुन साय प्रतिशत स्थानीय उत्पादन देन।

खर्च लन्नन स्थानीय अर्थव्यवस्थापन समर्थन लैंशीत। साथ ही ख्याचता ईमानदारी दोखुन मराव कर्तव्यन्नु पालन लन्नु रंग विकसित भारतु दृष्टिकोणु योगदान रन्नन राष्ट्रु प्रथमु भावनापंग ओमस्तन्नु जुबतानु जु कुमो शामिल लैंशीत। प्रधानमंत्री विश्वास जत्याशीत की अमरनाथ यात्रा आस्था सांस्कृतिक एकता रंग सेवाओं मूल्यगानु मजबूतली लंतीश। आई खबर तो अखिल भारतीय जनवादी महिला समृत्यु मनारिंगजास महंगाई रंग बेरोजगारी खिलाफ प्रदर्शन लैंशीत। समितियु राज्य अध्यक्ष संतोष कपूरस बोध्यादोजु महंगाई पेट्रोल डीजल रंग रसोई गैसु बोध्यादो कीमतु देन प्रदेश रंग केंद्र सरकारु गेरा रंग नाराबाजी लैंशीत। तोगास प्रदेश सरकार दंग महंगाई देन नियंत्र लन्नु रंग रोजगारु अवसर बुढ़ाइया आम जनता पंग राहत रन्नु मांग लैंशीत। संतोष कुमारस लोशित की अगर सरकारस हासल जू दिशाओ कदम माथुमा जू आंदोलन तेज लंतीशरुओं। दंगची मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू श्लोषित की प्रदेश सरकार राज्य कुमो विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा का उपलब्ध लन्नु उद्देश्य चिकित्सक पैरामेडिकल रंग तकनीकी कर्मचारी गनु रिक पदेनु प्राथमिकता आदर देन पंक्तिश। मुख्यमंत्री आईजीएमसी शिमला रंग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना निदानु विभागु बैठकु अध्यक्षता लनो जु बताऊ लोशीत। आई सिटी स्कैन एक्सरे रंग अल्ट्रासाउंड देश के निदान सेवा गानु कुमो शून्य प्रतीक्षा अवधि सुनिश्चित लन्नु दिशाओ कमंग लन्नु निर्देश ली रहशीत। मुख्यमंत्री ख्याचता आईजीएमसी चिकित्सकेनु मांग देन ख्याचता संस्थाननु हसली निशराव निज निजाओ सोरुक सिटी स्कैन मशीन उपलब्ध लन्नु आश्वासन रहशीत। आई प्रदेश सरकारु चोई सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय गनो स्वास्थ्य संरचना गनु व्यापक रूप मजबूत जुर्यातिश। वैसे जुदा तो के प्रदेशु खास खास खबर सार उन घड़ी इसलिए इशारा बोर्शुमु के रदू युम से बरंग आई गीथंग रोंचे रोंची चुगी।

अभी आप सुन रहे थे किनोरी कार्यक्रम, आकाशवाणी शिमला से। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। आवाज युवा शर्मा की है।

लोकगीत अभी आपने सुने। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आप डीटीएच सेवा, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और आकाशवाणी FM शिमला से भी सुन रहे हैं।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चिकित्सकों, पैरामेडिकल व तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर रही है। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा के निदान विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी निदान सेवाओं में शून्य प्रतीक्षा अवधि सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी के चिकित्सकों की मांग पर संस्थान को जल्द ही 256 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य अवसंरचना को व्यापक रूप से सशक्त बना रही है। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार उपेक्षित व निर्धन वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और अति दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने आज किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपियों में जनसमस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। बाद में जगत सिंह नेगी ने कल्पा ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की समावेशी नीतियों व कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए मजबूती से पैरवी करती है और उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आईजीएमसी शिमला में अब रोगियों का उपचार करने के साथ साथ बीमारी के कारणों व विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के अध्ययन के प्रयास किए जा रहे हैं। आईजीएमसी की रिसर्च टीम द्वारा लाहौल स्पीति के काजा में पित्त की पथरी के मामले में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि ये पथरी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होती है। रिसर्च टीम के प्रमुख डॉक्टर विपिन शर्मा ने बताया कि जनसंख्या के आधार पर गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए 2.5 वर्ष तक काजा में 450 लोगों पर ये अध्ययन किया गया।
1: इस पीति एरिया को हमने तीन हिस्सों में 3500 मीटर से नीचे वाला

0: एल्टीट्यूड, तब वाला एरिया मिड एल्टीट्यूड एरिया था 3501 से लेके 4000 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल, और उससे ऊपर वाला एरिया था मोर देन 4000 मीटर जिसका हिक्कीमेंट कॉमिक वाला एरिया थी। पेशेंट को लिया गया, उनको समझाया गया, चेक किया गया, हर पेशेंट भूखे पेट अल्ट्रासाउंड हुआ, यानी कि 450 लिए हैं तो 450 पेशेंट का हमने अल्ट्रासाउंड किया ऑन द स्पॉट, ब्लड टेस्ट किया, फिर एनालाइज किया। अच्छा, जो मुख्य फाइंडिंग जो इसमें हमारे सबसे बड़ा जो एक चौंकाने वाला फैक्ट था कि इस पॉपुलेशन स्टडी में 21.3% लोगों में पथरी पाएगी।
1: वहीं अध्ययन की जानकारी देते हुए आईजीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक राहुल राव ने बताया कि अस्पताल में अब बीमारियों और उनके कारणों को लेकर शोध किया जा रहा है।
2: हमने एक जनसंख्या आधारित गॉल ब्लैडर स्टोन की एक स्टडी की है जो दैट इज द हाईएस्ट विलेज ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कि अभी प्रकाशित भी किया गया, और ये स्टडी जो है काफी हमारे लिए भी मायने रखती है। इसकी जो शुरुआत है लगभग 2 साल पहले इन्होंने इस स्टडी को किया।
1: प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में दोपहर बाद से वर्षा हो रही है। बीते दिनों हुई भारी वर्षा के कारण प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 49 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं। उधर लाहौल स्पीति जिले में बादल फटने से आई बाढ़ से प्रभावित जहालमा नाला में राहत व पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी है और लोगों से सतर्क रहने व सावधानी बरतने को कहा गया है। सिरमौर जिला के संगड़ाह क्षेत्र के निवासी अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट वीरेंद्र सिंह ने राजगढ़ क्षेत्र की रहने वाली एक जरूरतमंद युवती के इलाज के लिए चैरिटी रन के माध्यम से धन इकट्ठा कर मदद करने का संकल्प लिया है। युवती को गलती से सोलर लाइट की बैटरी का पानी पीने से गले में इन्फेक्शन हो गया है और इलाज पर 15 से 20 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कल 4 जुलाई को सोलन में चैरिटी रन का शुभारंभ किया जाएगा और 5 जुलाई को सोलन से राजगढ़ तक चैरिटी रन आयोजित की जाएगी।
3: मेन उद्देश्य रहने वाला है मिशन ज्योति बहन को बचाना। आप श्रद्धा पूर्वक आप दान करें ताकि हम अपनी बहन ज्योति तोमर का इलाज करा सके। लिए दौड़ नहीं है बल्कि एक इंसानियत की जोड़। अगर समाज में कभी भी ऐसी मुसीबत आ जाती है आस पड़ोस में रिश्तेदार में, तो अगर समाज एकजुट होकर आगे आता है तो मुझे नहीं लगता कि कई बहनें ऐसी हैं, कई हमारे भाई हैं जिनको हम ऐसे कंडीशन में बचा सकते हैं।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का शिमला केंद्र। लीजिए पेश है बिलासपुरी कार्यक्रम।

बहुत बड़ा जो ऐसे बाजार आ और इस बहुत बड़ा मध्यम वर्ग आ तो जड़ा मांग जो आपूर्ति श्रृंखला है इस जो ऐसे संतुलन स्थापित करना ताकि जो हमारे देश सारी जो अर्थव्यवस्था है और ज़्यादा जो ऐसे बड़ी हो। और इस खातर सरकार जो ऐसे काफ़ी कुछ किया भी आ और इसकी उपलब्धियां भी इस जो हासिल भी किया हर देश से तो इस खातर जो ऐसे सरकार वित्तीय प्रोत्साहन देना ताकि चाहे से किसान आ चाहे उद्यमी आ चाहे सेवा क्षेत्र आ इन सभी जो सहायता करने खातर जो ऐसे सरकार लगभग 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज जो ऐसे एक सुरक्षित रखी रहा। तीय तकनीकी प्रोत्साहन रक्षा क्षेत्र हुआ चाहे हरा चाहे है ड्रोन बनाने या फिर चाहे यहाँ लड़ाकू विमान बनाने तो तिना जो तकनीकी या फिर यहाँ दिए जो सेमी कंडक्टर निर्माण कर रहे हैं तो ये सब चीज़ा जी ऐसे तकनीकी चीज़ा च हुई तो इन्हों जो सरकार प्रोत्साहन देना सबसिडी देनी और वोकल फॉर लोकल देखे हरा नारा ही है और अहें जो ऐसे मतलब यानी कि जो स्थानीय उत्पाद है स्थानीय चीज़ा ही तिना इस्तेमाल करिए ताकि अहम जो ऐसे बाहर से चीज़ा घट जैसे लियाने पो। डिजिटल इंडिया भी इसरा एक जो ऐसे साधन आ क्योंकि देखो अजकल हर चीज़ जो ऐसे ऑनलाइन हुई चाहे ऐसे पढ़ाई लिखाई चाहे ऐसे पैसे लेन देन ना इसते उवा क्या कि जड़ा जिंदगी या जड़ा बिजनेस आ या जड़ा व्यापार आ सब कुछ ऐसे आसान हुआ। इस खातर अहें देख सकें हमारे जो UPI प्रणाली से पूरी दुनिया च एक जो ऐसी तो यह अलग ही पहचान जो स्थापित की रही और हमारे देश के लोगों जो ऐसे बड़े खुले बनाने यह जो ऐसे अपनाए रहा। तीय ही जो रक्षा क्षेत्र हमारा देश काफ़ी ज़्यादा निर्माण करी करा और इस जो ऐसे निर्यात भी करी करा और अहें जो ये भी कोशिश करने करी करा हमारा देश और इस सफल भी करा कि अहम विदेशों तेज ऐसे सिर्फ चीज़ा नहीं खरीदनिया ही जो तकनीकी चीज़ा है तेना सौगी तिना जो तकनीकी टेक्नोलॉजी से भी अहम लेनी ताकि अहें तिना चीज़ों उत्पादन जी ऐसे इतने अहें करी सकी और इस खातर जो ऐसे जो स्थानीय उत्पाद है तो हजार कारीगर इतना जो प्रोत्साहन देना जो नौजवान इतना जो जो ऐसे अगे करी ने जी ताकि से नए स्टार्टअप शुरू कर सको ये तिना जो ऐसे अगे बधाना। ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान आ एक प्रतीक आ जो हरा देश आ इसरी बढ़ती हुई ताकत रहा और देशा जो सम्मान आ इसरा देशा आत्मविश्वास रहा कने देशा जो 150 करोड़ जो लोग तिना की खातर एक आर्थिक रूपा से सुरक्षित कने सम्मानजनक कने एक सुगम जो ऐसे जीवन यापन सुरक्षित करने का एक जो ऐसे माध्यम बनी रहा और ये सरकार इस पर जो लगातार कम करी और इस पर जो ऐसे सफल वो भी करें। तो छोटी गलबात थी एक लोग कहते हैं और सुन लें फिर जो अगली गलबात इसे यहाँ लगानी।

लोक गीत असीं सुनिया, गायक रहे धनी राम संख्यान होरी। गल हाँ करनी जिहड़ा समय प्रबंधन इस विषय पर, देखा हर सबसे जे कीमती चीज़ जो ही सेवा जिहड़ा वक्ता यानी समय है। दिन च 24 घंटे हुए, महीने च 30 दिन हुए, साल च 365 दिन हुए, और ये दिन जी ऐसा बनी खातर एक बराबर है। इस किसी खातर कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कोई अमीर आ चाहे कोई गरीब आ, सभी खातर जी ऐसे एक बराबर टाइम जो परमात्मा दिती रहा। तो कोई माणु जी ऐसे इस वक्त का उचित उपयोग करीने जी ऐसे जिंदगी अगे बधियाँ, और कई माणु जी ऐसे इसरा उपयोग नहीं करी पाते अच्छी तरह, और जी ऐसे जिंदगी पिछड़ियाँ हैं। लेकिन अगर अहाँ जो अपनी जिंदगी शांति सुकून तरक्की ये सब चीज़ें चाहिए, तो अहाँ जो जैसे हर समय दिते परमात्मे 24 घंटे दिन च और साल 365 दिन, तो इन्हों अहाँ जो जैसे पूरी अच्छी तरह सदुपयोग करने जैसे अपने सुफने जैसे सच करने चाहिए, और इसरा अहें उचित उपयोग करने प्रबंधन करीने जैसे जिंदगी अपने सारे लक्ष्य हासिल कर सकें, और इसरे जैसे फायदे फायदे हुए। एक तो सबसे बड़ा फायदा है कि अहाँ जो जैसे एक आत्म संतुष्टि हुई और एक खुशी हुई, जरा हमारा तनाव वैसे घट हुआ, और जिंदगी जो है संतुलन जैसे बनी रहे हैं, और सौगी सौगी जी हमारी उत्पादकता इस जैसे एक बढ़ोतरी जैसे हुई। इस खातर कोई बड़ा कुछ करने लोड़ भी नहीं, अहें जी छोटे छोटे आदतें बनाई ने जैसे अपने समय का उचित प्रबंधन जैसे कर सकते हैं। और सभी तो पहले देखा भी जो हाँ जो नींद से 6 से 8 घंटे नींद जी ऐसे इंसाना खातर काफ़ी हुई, और

इतनी ज़्यादा नींद लेना जे ऐसे हमारी सेहत की खातर भी ठीक नहीं होंगे या और जो जिंदगी इस खातर भी जे ऐसे ठीक नहीं होंगे या तो अहम जो जे ऐसे दिन एक तिहाई समय जे ऐसे नींद्रा देना चाहता उसके बाद जो अहम वक्त बचे से अहम जो जे ऐसे अपनी तरक्की खातर जे ऐसे लगाना चाहता तो इस खातर जो ऐसे सवेरे जल्दी उठना ये अहम महसूस भी किया होना कि अगर अं सवेरे जल्दी वक्त रे उठाएं और हमारे सारे काम जो ऐसे अपने वक्त रे उएं और हमारा जो ऐसे दिन पूरा दिन भर जो ऐसे कोई टेंशन कोई तनाव जो ऐसे नहीं रहा है तो सवेरे जल्दी उठना सभी तो ज अच्छा उपाय है इस खातर। और कुछ काम अहम जो ऐसे बड़े जाना है भी ये काम बड़ा लम्मा तो इस खातर अहम जो ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य जो ऐसे निर्धारित करने और थोड़ा समय निश्चित करना भी इतना कर काम अहम इस वक्त जो ऐसे मुकवाना करी ने और जड़े हमारे काम है तिन्हारी प्राथमिकता अहम जो तय करनी कि कौन काम अहम जो पहले करना और कौन काम है थोड़ा जि रुकने जी ऐसे करी सकता है लेकिन जड़े जरूरी काम ऐसे अहम जो जी ऐसे टालने चाहिए कि आज नहीं कल कर लेंगे या कल नहीं जी ऐसे परसों करी लेंगे। देखा महाकवि कबीरदास होरी बोल रहा भाई कल करे सो अज करे सो अब पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। यानी किसी जी काम अहम जो कल करना तो सोहे जो अज करना चाहता और जो अज अहम काम करना से अहें उन्हीं कर लीए तो अहम जो ऐसे अगे बधी सकें जिंदगी और वक्त रहा जो अहम सदुपयोग करना ताकि बाद च अहम जो जो ऐसे पछताने नहीं पाओ। कई बार अहें देखें पे अहें जो ऐसे हथा आए मौके जो ऐसे गुआई दें और बाद जो ऐसे पछताएं बोले भी फिर पछताए नहीं कुछ नहीं होंगे तो चिड़िया खेतों जो चुगी लिया तो इस खातर हाँ जो अपनी एक सही योजना बनानी ती है योजना पर सौगी सौगी काम भी करना और अपने कामों पर जैसे फोकस करना। अज देखा जमाना आई गया कि कामों पर ध्यान भटकाने वाले बड़ी सारी चीज़ा हाँ रे आस पास हुई सोशल मीडिया हुई हमारा फोन हुई या टेलीविजन हुई ये सब जो इन चलो जरूरी भी है लेकिन जो है थोड़ा इन्हों जैसे वक्त देना कि अहम अद्धा घंटा जैसे या एक घंटे तो ज़्यादा फोन पर जो ऐसे गल नहीं करनी या सोशल मीडिया का उपयोग जो ऐसे नहीं करना और जिहड़ी समय बर्बाद करने वाली आदतां ही हैं चाहे सोशल मीडिया का इस्तेमाल चाहे फोन का इस्तेमाल इन ते जो ऐसे अहम जो बचना कोशिश करनी कि जो हर एक काम ऐसे वक्त से पहले जैसे मुकी जाओ और जो हमारा वक्त असें अहें अपने परिवार सौगी या फिर अपने समाज सौगी जो ऐसे बताइए। जीवन चाहे जो अगर समय का उचित प्रबंधन करगे तो अहें जो अपने जीवन च जी ऐसे मनचाही तरक्की करी सकते हैं और अपने सपने सच जी ऐसे करी सकते हैं और इसते अहरे जिंदगी जी ऐसे एक सुकून आना एक शांति मिलनी कने अहां जे ऐसे अड़बड़ी च गलत फैसले लेने ते ऐसे बचना बोलें भाई अगर हमारा धन कुछ ही आओ तो असं मिली सकता या फिर इतने कमाई जाई सकता पर अगर वक्त एक बार चली जाओ तो फिर इसे वक्त जी ऐसे वापस नहीं आता है तो अहम जो जे इस वक्त का सदुपयोग करना कने वक्त अहम जो जे ऐसे जाने नहीं देना है। ये गलबात थी जी खास खबरें से भी अहम लगानी है। मेरा पहली खबर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरी ने जी ऐसे जम्मू कश्मीर की वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं जो अपनी शुभकामना जी दी तीर्थयात्रियों लिखे ने एक पत्र च जी ऐसे प्रधानमंत्री ने सालाना अमरनाथ यात्रा जो जी ऐसे देश सारी आध्यात्मिक परंपरा कने सांस्कृतिक जी एकता ही सारा एक शाश्वत अध्याय दसिया और तिन्हें यात्रा दौरान श्रद्धालुओं जो जैसे पांच संकल्प लेने का भी आग्रह किया। ये संकल्प भी स्वच्छता बनानी जेडे सुरक्षा के निर्देश इतना पालन करना और वोकल फॉर लोकल तहत अपनी यात्रा का जो खर्चा तीसरा कम से कम 10% जैसे स्थानीय उत्पादों पर खर्च करना और एक पेड़ माँ के नाम जो बढ़ावा देने खातर जैसे रखड़ी और दिन भाई बहनों जो एक पौधा उपहार देना और पंजा संकल्प लेना भी ईमानदारी कने जो अपने कर्तव्य का पालन करना और देश का जो अगे बढ़ाने ऐसे अपना सहयोग देना। ये खबर थी तो चलते चलते एक लोक गीत और सुना तो सुनना ये लोक गीत फिर उसके बाद जो ऐसे हर कार्यक्रम जो ऐसे वक्त भी हो जाए तो सुना ये लोक गीत।

गीत गायकार हैं अक्षर सिंह परमार कने ज्वाला प्रसाद शर्मा। ये सब जो बिलासपुरी कार्यक्रम है इस वक्त तो इगरा तो सभी श्रोणा की इजाजत लेंदे नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड 104.7 मेगाहर्ट्ज़ की मारा जो आकाशवाणी शिमला 6:36 मिनट वक्त हुआ शुरू तो मैं अपलो कुल्लवी कार्यक्रम।

कार्यक्रम शुणाय सभी श्रोतालय डॉक्टर सुभाष मोहन स्नेही तरफे का नमस्कार। तेरा मारा कुल्लू कार्यक्रम अपनो देशी कार्यक्रम में शुरुआत हुई गई। तो आज के कार्यक्रम में गलबात करने की भाई जने मारे जोरे संख्या मारे तादाद कम मारे समाज आदि अल्पसंख्यक वर्ग के बारे दी इन्हें भाई हम गलबात करनी और इस साथ ही तुम्हें पता है कि भाई एक ही हफ्ते थे मारे वन महोत्सव सप्ताह मनाने वाला हो तो पूरे देश प्रदेश आदि और ये तो साथ साथ ही प्रकृति ये देन जो हमारे खास तौर के अपने कुड़ू जिले की मौजूदा मणिकरण घाटी और इन जो गर्म जल जो स्रोत इन हेरने मिला इतने बारे में गल करने और आज के वक्त दे भी कहने के लोग इन सभी चीज़ें प्राप्त प्रकृति लोगों ने फायदा देने लादा इतने बारे हम आज के कार्यक्रम में पूरी पूरी गलबात करने ताकि आम तमाम जितने भी हमारे श्रोता तीन सभी ले पता लगा कि कहण के हमें अपने सामाजिक सौहार्द कहण के जो जिंदगी संसार आदत है हिंदी गए पहुँचे हमें कहण के हमारे लोग गुजर बसर प्राण वक्त और कियो और आज हमें कितने सशक्त हुए गए इतने बात गलबात करनी।

बहुत ही जरूरी है, क्योंकि है ना कि आज़ादी हमारे देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली, जो कि अंग्रेजी सरकारें हुकूमत का हमें छूटे, परंतु तथा बाद में हमारे समाज यदि अनपढ़ता साक्षरता दर कम थे और जातिवाद क्षेत्रवाद और कोई भाषा बोली मवाद कई रंग यानी समस्या थी, जी वजह है हमें एकजुट होने दे हमेशा ही असमर्थ रहे। बहुत बड़ा प्रांत था भारतवर्ष, एशिया दे सभी का बड़ा एक जो देश अगर हमें बोली जन एशिया जो हमारे द्वीप आदि एक चीन एक भारतवर्ष आ जे सभी का बड़े बड़े देश एशिया दे स्थापित आई दे रंग बिरंगे माणू बेटली लोग छेवड़ी मर्द बाल बच्चे सब इन रोंद लग दे और जमाने और अपने गुजर बसर करते लग दे और अपनी लोकप्रियता अपनी संस्कृति अपने पौने लीने तौर तरीके इन्हें सभी चीज़ों बखान जमाने और उद्देश्य दी चाल दवा तुम लेना भी पता कि भाई एक नालंदा विश्वविद्यालय यू भारतवर्ष दी मौजूद तो और सभी एक सभ्य समाज एक सभी का बड़ी पहल थी जे वक्त दे लोग लोग छात्रावास थी बनाऊ थे पढ़ना ले छोटू छोटी ले ते वक्त दी जीव की हमें कल्पना भी नहीं सकी करें और आज के वक्त दे भी हमें एक आज़ाद भारतवर्ष दौरान लग दिया तो आज के वक्त दे भी कई यानी स्थान रह दिया जिदी आज के वक्त दे भी लोग छात्रावास छोटू ले छात्रावास रहने दे मिल दे नहीं लग देती मजबूरी इतनी है तो देखा गरीबी अमीरी मारे एक छोटे से देशी रूप दी अपनो अस्तित्व डाओ क्योंकि जो हमारे देश उत्पादित चीज़ें होती तिना सभी गाई ते वक्त दे अंग्रेजी सरकार हो अधिकार रो था और अंग्रेजी सरकार ये उद्देश्य के राजा कर दी लागी थी बड़े मुश्किल करे थी ना छुटकारा पाओ तथा बाद हमारे पढ़ाई लिखाई हो जब दामन मारे छाँटो तथा बाद हमें आज अपने रेडियो स्टेशन मारे अपने हवाई अड्डे मारे बने दे अपने अस्पताल मारे बने दे अपने स्कूल बने दे अपने हर संस्थान अपने जाने की ITI वगैरह भी मारे अपने घर द्वार दिया खाली चली दिया ये तो सरस्वती न्याय व्यवस्था अगर हम गल करी कि हर जना मारे उपमंडल स्तर गई एक न्यायालय बन दो हर तहसील स्तर गई भी मारे तहसीलदार बेशा हमारे SDM बेशा तो आज के वक्त दे मारे मतलब कि एक आम तमाम जितने मानू बिटली देश दे रहा लग दिया तिना सभी सुविधा खातिर सरकार आम तमाम सुविधा हर घर द्वारा दे पुजानी लाई दिया कोई भी आदमी न्याय का वंचित न रहे ये तई घर नज़दीक ही है न्यायालय खोलने लाए दिया और कोई भी अनपढ़ न रहे ते भी घर द्वारा दे मारे स्कूल खोले दिया और कोई भी आदमी बीमार न रहे ते भी अपने घर द्वारा दे अस्पताल खोलने मारे देश की आज परंपरा बन दिया तो हमारा देश भारतवर्ष एक बहुत ही सशक्त देश देश रूप दे अपनी पहचान बनाया अपने पहचान बनाए पूरे संसार दे आगू बढ़ लग दो तो हम सभी मिले जुले ये भारतवर्ष और ज़्यादा मजबूत बनाने खातिर हमेशा आगू बढ़ने और नई सोच साथी हर जितने हमारे देश नागरिक चाहे छोटी है चाहे छोटू आ मर्द चाहे सीढ़ी हम सभी मिले जुले जो भारतवर्ष आगू बढ़ाण जो तथा बाद ही बढ़ो जो हमें सब आत्मनिर्भर हई शिक्षित हई और अपनो स्वस्थ अगर हमें हमारा शरीर आ तभी हमें आगू बढ़ सकी तेरा कार्यक्रम में मारे गलबात सिलसिले लगातार एवजे जारी रहने तले असल के पहले मारे सुनने लोकगीत गाने वाले मारे कलाकार तीर्थ राम

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं सरेश।
1: और मैं हरी सिंह चंदेल।
0: हरी जी, कैसे हैं आप?
1: सरेश जी, मैं तो ठीक हूं और उम्मीद करते कि हमारे जो किसान और बागवान भाई बहन हैं वो भी स्वस्थ होंगे और आजकल अपने कृषि और बागवानी के कार्य में जो है व्यस्त होंगे।
0: जी
1: सरेश जी, जैसे कि बरसात का मौसम जब शुरू हो चुका है तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान और बागवान भाई बहन जो है जल निकासी का जो है अपने खेतों और बागीचों में विशेष प्रबंध करें,
0: जी
1: क्योंकि अगर जल भराव होता है तो जो फसलें हैं उनमें कई तरह के रोग लग जाते हैं
0: जी
1: और जिससे कि आपको भारी आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है।
0: जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि आजकल आपने खेतों में किस तरह का प्रबंधन करना है इस पर, लेकिन उससे पहले फलों का प्रबंधन जो है, जैसे सेब, नाशपाती और प्लम जैसे फलों के बगीचों में आपने, जैसा हरी जी ने कहा कि जल निकासी का आपने उचित प्रबंध करना है, और पौधों की रोपाई जो है जुलाई में जो है बारिश का मौसम होने के कारण, खास करके जैसे पॉली हाउस में तैयार की गई फलदार और सदाबहार पौधे जो है उनकी रोपाई आप कर सकते हैं। खाद और पोषण की बात करें तो सेब के पौधों में फल विकास और आगामी अच्छी फसल के लिए आप जरूरी उर्वरक और खाद का छिड़काव कर सकते हैं। और कीट और रोग नियंत्रण की बात करें तो बारिश और नमी के कारण सेब और अन्य फलों में स्कैब, माइट्स और एफिड्स का प्रकोप बढ़ सकता है, और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार आप जो है छिड़काव करें। और कृषि फसलों की बात करें तो मक्का और धान की फसल के लिए आजकल निराई और गुड़ाई का उचित समय है, धान की रोपाई भी इसी महीने पूरी कर ली जाती है। और सब्जियों की खेती की बात करें तो टमाटर, शिमला मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई रोपाई आजकल की जाती है, और बरसाती सब्जियों में बेल वाली सब्जियों जैसे लौकी, करेला, तोरई और कद्दू की बेलों के लिए मचान विधि अपनाना काफी अच्छा रहता है।
1: जी, और जल भराव की समस्या से बचने के लिए खेतों और क्यारियों में जल निकास की उचित नालियां बनाएं ताकि जड़ें ना सड़े।
0: जी
1: तो सरेश जी, आज क्या कुछ खास रहने वाला इस कार्यक्रम में हमारे किसान और बागवान भाई बहनों के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
0: जी बिल्कुल। आज हम काम की बातों में बात करने जा रहे हैं, अमरूद का बगीचा कैसे लगाएं, और रोजाना की तरह लोक गीतों से तो आपका मनोरंजन हम करेंगे ही, साथ ही आपके लिए जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आ रहे हैं, खरीफ मौसम में किए जाने वाले कार्य, इसमें डॉक्टर समीर शर्मा से बातचीत करेंगे अशोक। तो किसान भाइयों, हम काम की बातों में बात करेंगे अमरूद का बगीचा कैसे लगाएं। तो हरी जी, अगर हिमाचल प्रदेश में अमरूद के बगीचे की बात करें तो निचले इलाकों जैसे कि जिला कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और सिरमौर की जो जलवायु है ये अमरूद की बागवानी के लिए उपयुक्त है।
1: जी
0: बागवान जो है इन क्षेत्रों में आम, लीची और नींबू प्रजातियों के फलों की बागवानी के साथ साथ अमरूद का बगीचा लगाकर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। अमरूद का बगीचा स्थापित करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है।
1: जी सबसे पहले बात करते हैं कि आपने भूमि का चुनाव जो है कैसे करना है। तो बागवान भाइयों, फलों के सफल उत्पादन के लिए उचित भूमि तथा जलवायु का होना अति आवश्यक है। इसे उष्ण तथा उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में सफलता पूर्वक जो है उगाया जा सकता है। समुद्र तल से 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर इसकी बागवानी की जा सकती है, परंतु बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फल अच्छे गुण वाले नहीं होते हैं। अमरूद जो है अधिक तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पर बहुत अच्छा पनपता है। सूखे को भलीभांति ये सहन कर सकता है, परंतु अधिक पाला ये सहन नहीं कर पाता। इसलिए अमरूद का बागीचा उन जगह पर ना लगाएं जहां ठंड और पाले का

0: प्रकोप ज्यादा हो। अमरूद को वैसे तो लगभग हर प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, परंतु पौधों की अच्छी बढ़ोतरी और फल उत्पादन के लिए उपजाऊ बुलई दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास अच्छा हो उत्तम मानी जाती है। अनुपयोगी भूमि जिसमें अनाज सब्जी तथा अन्य फलों की खेती सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती, वहां पर भी अमरूद की बागवानी की संभावनाएं अधिक है, क्योंकि वह सूखे को भली भांति सहन कर लेता है। जहाँ पर अधिक पानी भर जाता है तथा अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की मिट्टी में इसकी बागवानी जो है सफलतापूर्वक की जा सकती है।
1: जी बिल्कुल, और अमरूद की बागवानी से बागवान भाई जो हैं अधिक उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त कर सकते हैं। वे स्वस्थ, निरोग, बलवान और अधिक उपज देने वाली किस्मों के नर्सरी पौधों पर निर्भर करता है कि स्वस्थ, निरोग, बलवान और किस तरह की उपज है। यद्यपि अमरूद की लगभग 100 से अधिक किस्में हैं, मगर लखनऊ, 49, इलाहाबाद, सफेदा, पंत प्रभात, चित्तीदार, लाल अमरूद तथा बीज रहित किस्में बहुत ही उत्तम हैं। इसलिए बागवान भाइयों को इन किस्मों के स्वस्थ नर्सरी पौधे विश्वसनीय पौधशाला से लेकर लगाने चाहिए। बगीचे की स्थापना की बात करें तो बगीचा लगाने से 1 महीना पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हर पौधे का अच्छी तरह विकसित होना जरूरी है और उसके लिए पर्याप्त स्थान हो, और बाग के पुराने होने पर पौधों को सूर्य का उचित प्रकाश मिलता रहे। आमतौर पर अमरूद का बगीचा स्थापित करने के लिए वर्गाकार विधि द्वारा रेखांकन करें, जिसमें पौधे से पौधे तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 6 मीटर रखी जाती है। रेखांकन के बाद जहाँ पौधे लगाने हों वहाँ पर लगभग 1 मीटर गहरे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर लंबे गोल आकार के गड्ढे खोद लेने चाहिए। गड्ढों से निकली मिट्टी को 10 से 15 दिन तक धूप में रहने दिया जाए, इससे हानिकारक जीवाणु और कीड़े नष्ट हो जाते हैं। गड्ढों से निकली मिट्टी में 30 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद और आधा किलो सुपर फॉस्फेट खाद मिलाकर आपने पौधारोपण से 1 महीना पहले भर देना है, और अमरूद के पौधों का रोपण जुलाई और अगस्त महीनों में करना चाहिए। पौधरोपण के बाद तुरंत आपने जो है पानी डालना है।
0: जी, अब बात करते हैं कि आपने पौधों की देखभाल कैसे करनी है और खादों का प्रयोग जो है कब करना है। तो पौधों की अच्छी बढ़वार, फलों की अधिक पैदावार और अच्छी गुणवत्ता वाले फल प्राप्त करने के लिए समय पर सिंचाई, निराई गुड़ाई और खादों का प्रयोग करना है, तथा साथ ही तौलियों को खरपतवार रहित रखें। गर्मियों के महीनों में उचित नमी बनाए रखने के लिए सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए, और पौधों के तौलियों में 10 से 15 सेंटीमीटर सूखी घास से फरवरी मार्च के महीनों में मल्चिंग करें। सर्दियों के महीनों में छोटे पौधों को पाले से बचाने के लिए घास या टार से उन्हें ढक देना चाहिए। अमरूद के पौधों में 10 किलोग्राम गोबर की खाद, 75 ग्राम नाइट्रोजन, 65 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटाश जो है प्रति पौधा प्रति वर्ष आयु के हिसाब से 6 वर्ष तक आपने डालनी होती है। 6 वर्ष और अधिक आयु के पौधों में 60 किलोग्राम गोबर की खाद, 450 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम फास्फोरस और 300 ग्राम पोटाश डालें। गोबर की खाद, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा जो आपने दिसंबर में डाल देनी है, और नाइट्रोजन की आधी मात्रा नवंबर तथा आधी मात्रा जून जुलाई में पौधों में डाल देनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, और किसान भाइयों, फलन एवं बाहर नियंत्रण की बात करें तो अमरूद के पौधों पर 1 साल में 2 बार फूल और फल आते हैं। बसंत ऋतु के फूलों में फल वर्षा ऋतु में तैयार होते हैं, और वर्षा ऋतु के फूलों में फल शरद ऋतु में पकते हैं। वर्षा ऋतु के फल प्राय असमान आकृति वाले, आकार में छोटे, कम मीठे और कीड़े व रोग ग्रस्त होते हैं। जाड़े के फल वर्षा ऋतु के फलों की तुलना में गुणवत्ता में अच्छे होते हैं और फलों का मूल्य 2 से 3 गुना अधिक होता है। इसलिए बागवान भाइयों को अमरूद के पौधों से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए केवल जाड़े की एक ही फसल लेनी चाहिए। जाड़े की फसल लेने के लिए जो फूल अप्रैल में आते हैं उन पर 600 से 800 मिलीग्राम नेफ्थलीन एसिटिक एसिड को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, और जिसमें अधिकांश फूल गिर जाते हैं। फलस्वरूप बरसात की फसल कम होती है और जाड़े की फसल अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में ये छिड़काव जरूरी है। यदि अप्रैल और मई में जबकि अधिकांश फूल खिलना शुरू हो रहे हों, उस समय समस्त पेड़ के नए प्ररोहों को एक जोड़ा पत्ती छोड़कर ऊपर से काट दिया जाए तो वर्षा ऋतु की फसल लगभग नहीं के बराबर होती है और जाड़े की फसल अच्छी होती है। यदि अप्रैल और मई में अमरूद के पेड़ों के समस्त फूलों को हाथ से तोड़ दिया जाए तो वर्षा ऋतु की फसल कम या नहीं आती है, फलस्वरूप शरद ऋतु में फसल अच्छी आती है। तो किसान भाई और बहनों, ये तो हमने बात की अमरूद का बगीचा कैसे लगाएं इस विषय पर। अब आपके मनोरंजन का समय हो चला है, आइए सुनते हैं कृष्णलाल सहगल की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना कृष्ण लाल सहगल की आवाज़ में ये लोकगीत। तो सुरेश जी, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है जानकारीपूर्ण बातचीत का, जिसका आज आप सुनेंगे पुनः प्रसारण। विषय है खरीफ मौसम में किए जाने वाले कार्य। इस विषय पे ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर समीर शर्मा और उनसे बातचीत करेंगे अशोक कुमार।
1: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, समय समय पर हम आपके लिए समसामयिक जानकारी लेकर आते हैं। और आजकल खरीफ का मौसम चला है और खरीफ के मौसम में काफ़ी कुछ काम आपको अपने खेतों में करने होते हैं। खरीफ की इन फसलों से अच्छा उत्पादन आप किस तरह से लें और कौन कौन से मुख्य कार्य इन दिनों आपको करने होते हैं, इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर समीर शर्मा जी। डॉक्टर समीर शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, बात चली है खरीफ की फसलों के बारे में, तो सबसे पहला आपसे यही जानना चाहेंगे कि खरीफ मौसम के बारे में आप बताएं और इस मौसम में कौन कौन सी फसलें जो है इन दिनों किसानों के खेतों में लगी होती है।
2: जी। किसान भाइयों, मुख्यतः हमारे जो साल में दो सीजन मुख्यतः आते हैं, एक खरीफ सीजन आता है, एक रबी
1: जी
2: सीजन आता है। जो रबी सीजन आता है वो हमारे सर्दियों में शुरू होता है, उसको हम के हिसाब से हम उसको अक्टूबर से लेके मार्च तक लेते हैं। इसी
1: जी
2: तरह जो खरीफ सीजन आता है, जो गर्मी में और बरसात के टाइम जो सीजन आता है, उसको हम खरीफ सीजन कहते हैं। और इसमें मुख्यतः हमारे जैसे धान हुआ, मक्की हुई, दालों में माश, मूंग, अरहर, कुल्थी, राजमाश, तिल, सोयाबीन इत्यादि फसलें आती हैं। इसी तरह जो हमारी सब्जियां भी आती हैं, उस भी जैसे हमारे कद्दू वगैरह आते हैं, घिया हुए, कुकुम्बर हुए, शिमला मिर्च हुई, भिंडी हुई इत्यादि, इस तरह की सब्जियां भी इस सीजन में आती हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, बात चली है खरीफ मौसम में कृषि विभाग के प्रबंधन के बारे में, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस मौसम में किसानों को क्या क्या सावधानियां रखनी
2: जी
1: होती
2: हाँ,
1: है।
2: देखिए जैसा आपने देखा कि जो हमारा खरीफ सीजन वो बरसात के टाइम आता है,
1: जी
2: तो बरसात के टाइम में हमारे जो कीट हुआ, खरपतवार हुए या कोई रोग, उनका प्रकोप बहुत से ज़्यादा होता है। इसलिए किसानों को इसके लिए बहुत ही सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जब भी किसान भाई अपने खेतों जाते हैं, तो वहां पे जाके देखें कि वहां फसल में कोई कीट का प्रकोप ना हो या कोई बीमारी का प्रकोप ना हो, तो ये इसमें इसमें जाकर उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और अगर लगे कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे जो जो साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी के हमारे कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, उनसे कंटेक्ट करके उस तरह का उस पर स्प्रे करें। और इसके साथ ही कई बार ऐसा होता है बरसात में पानी खड़ी रहने की समस्या आती है, उससे कई बार जो हमारी फसलें होती हैं उनमें सड़न रोग लग जाता है, खासकर मक्की में। मक्की में बहुत बार देखा गया है कि पानी खड़ा रहता है और फसलें सड़ने शुरू जाती हैं,
1: जी
2: तो
1: जी
2: उससे में भी किसान भाइयों को भी निकासी कर देनी चाहिए साथ साथ ही। तो इन
1: जी
2: चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए
1: जी
2: जी।
1: डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खरीफ मौसम में कृषि विभाग ने खाद्यान्न के क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए
2: हाँ
1: हैं।
2: जी, देखिए ये हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं हमारे विभाग ने। तो उसमें इस साल जो हमारा जो खरीफ सीजन का है, उसमें 8.94 लाख टन उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। इसमें हमारा मुख्यतः धान आता है, धान हुआ, मक्की हुआ, दलहन हुई, मिलेट हुए हमारे, कुछ आलू सब्जी हुई, अदरक हुआ। तो जैसा धान है, हमारा इस बार जो लक्ष्य रखा गया वो 76,000 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर इसको बोने का लक्ष्य रखा गया है।
1: जी
2: और जो इसका उत्पादन लक्ष्य है वो हमारा 1.32 लाख टन के आसपास रखा गया है। इसके साथ साथ जो हमारा मक्की हुआ, इसका लक्ष्य जो है 2,94,000 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर रखा गया है। और इसका जो उत्पादन लक्ष्य है, ये हमारा मेजर है, ये जो हिमाचल में मक्की देखा गया बहुत ही मैक्सिमम जगह उगाई जाती है,
1: बिल्कुल
2: तो
1: जी
2: इसका जो लक्ष्य है वो हमारा 7.4 लाख टन के आसपास रखा गया है। इसी तरह हमारी दालें हैं,
1: जी
2: इसका जो हमारा क्षेत्र जो हमने इसका लक्ष्य रखा है वो है 17,500 हेक्टेयर क्षेत्र के आसपास रखा है। और जो इसका उत्पादन लक्ष्य है वो 16,000 टन के आसपास रखा गया है ना जी। इसके
1: जी
2: साथ एक आलू देखा होगा, आलू हमारी हिमाचल बहुत ही मेजर क्रॉप है,
1: बिल्कुल जी
2: तो
1: बिल्कुल
2: इसका जो हमारा उत्पादन लक्ष्य है वो 1.65 लाख टन के आसपास रखा है। इसी तरह सब्जियां जो देखा होगा कि हमारे जो सब्जियां जो गर्मी में उगाई जाती हैं वो हमारे नीचे प्लेन तक जाती हैं,
1: जी
2: जबकि
1: जी
2: उस टाइम प्लेन में ये सब्जियां नहीं होती हैं।
1: बिल्कुल जी
2: तो हमारा जो इसके अंदर जो लक्ष्य रखा है वो 48,000 जो हमारा हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर इसको उगाने का लक्ष्य रखा है। और इसके अंतर्गत हमारा जो उत्पादन लक्ष्य है वो है 9.45 लाख टन के आसपास रखा गया है। इसी तरह अदरक एक हमारी और बहुत ही कैश क्रॉप है, इसका हमारा 28,000 हेक्टेयर के अंतर्गत इसका लक्ष्य रखा गया है। और जो इसका उत्पादन लक्ष्य है वो 32,000 टन के आसपास रखा गया। तो ये जो मुख्यतः जो मेन मेन जो लक्ष्य हमने रखे हैं, ये आपको मैंने बताया किसान भाइयों के लिए, ये है हमारे मुख्यतः लक्ष्य जो है
1: बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, इसके
2: जी।
1: साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विभाग द्वारा इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या-क्या प्रबंधन किए गए हैं।
2: हाँ जी, देखिए जैसे हमारे ये लक्ष्य रखे हैं, तो हमारे विभाग का ये पत्र रहता है कि हम इन लक्ष्यों को पूरा करें, इसलिए
1: बिल्कुल जी
2: किसानों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्रदान करनी पड़ती है। तो इसके अंतर्गत हमारा जो इस साल का हमारा जो टारगेट है

0: जो 25,000 क्विंटल सीड के आसपास हमारा किसानों में वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें हमारा धान जो मुख्यतः वो 600 क्विंटल के आसपास, मक्की 400 क्विंटल के आसपास, जो दालें हैं वो 390 क्विंटल के आसपास, और तिल जो तिलहन है वो 100 क्विंटल के आसपास इनको किसानों में वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारी एक खाद्य हैं,
1: जी
0: जो रासायनिक खाद्य आती हैं, वो 21,000 टन के आसपास हमने लक्ष्य रखा है जो किसानों में वितरित करने का। इसके साथ साथ एक हमारे बायो फर्टिलाइजर आते हैं, जीवाणु खाद्य, जो
1: जी
0: कि जिसको डालने से जैसे उसकी खेती बाड़ी और बढ़ती है, वो हमारे 100 टन जीवाणु खाद्य के आसपास हमने लक्ष्य रखा है किसानों में वितरित करने का। इसके अंतर्गत एक दवाइयाँ आती हैं, उसका
1: जी
0: भी लक्ष्य रखा हमने 80 टन के आसपास वो किसानों में वितरित करने का लक्ष्य रखा है। और इसके साथ साथ हमारे जो एक उपकरण आते हैं, औजार आते हैं, जो नीरव हमारे इस खरीफ सीजन में हमने किसानों में 50,000 से 60,000 के आसपास उसको वितरित करने का लक्ष्य रखा है ना जी।
1: जी
0: इसके अंतर्गत हमारा जो 3600 हेक्टेयर क्षेत्र को सोयल कल्टीवेशन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा है। इस तरह हमारा जो मेजर ये लक्ष्य है जो सभी से किसानों की पैदावार अधिक से अधिक बढ़ सके और हमारा उत्पादन और ज़्यादा बढ़ सके।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या विभाग द्वारा उपचारित बीज किसानों को दिया जा रहा है? और अगर किसान अपना बीज उपचारित करके लगाना चाहे तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं?
0: जी हाँ, विभाग जो अपना जो भी बीज है वो उपचारित बीज किसान वितरित कराता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बीज ना भी हो तो उसी विभाग उसमें हमारे कार्बोनिजन दवाई आती है, कार्बोनिजन नाम से दवाई आती है जो इसको ट्रीटमेंट के लिए काम आती है, तो वो डाल के किसान में वितरित करता है।
1: जी
0: और कई बार ऐसा होता है किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कई जो बीमारियाँ आती है वो हमारी सॉइल से आती हैं, तो जब भी या बीज से आती हैं, तो जब भी वो बीज या ना बोना चाहें अपना बीज, तो वो ट्रीटेड ना हो तो उसको हमेशा इसको उपचारित करके ही इसको बोएं। इसके लिए
1: जी
0: किसान भाई एक हमारी कार्बोनिजन दवाई आती है, उसको 2 ग्राम लेके उसको 1 किलोग्राम सीड के अंदर मिला के उसको अच्छे से मिला के उसके बाद उपचार करके उसको बोएं। तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी 20 लीटर को बीमारी होगी वो उसमें कम हो जाएगी या नहीं आएंगी उसमें।
1: डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आप ये भी बताएं कि मिट्टी परीक्षण जो है फसल उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
0: जी
1: विभाग इसके लिए क्या-क्या कर रहा है?
0: देखिए, मिट्टी परीक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है इसका उत्पादन का। तो किसान भाई जब भी अपनी फसल बोएं उस एटलीस्ट 3 साल में एक बार मिट्टी परीक्षण जरूर अवश्य करवाएं,
1: जी
0: क्योंकि कई बार देखा गया है कि हमारे खेतों में किसी हमारा तत्व तो होता है उसकी मात्रा ऑलरेडी बहुत होती है, बट हम फिर भी वो खाद डालते जाते हैं, या
1: जी
0: कई बार ऐसा होता है कि कई बार वो मात्रा होती नहीं है वो उसकी और हम उसको डालते नहीं है। तो जब भी किसान भाई अपने फसल बोएं उससे पहले एक मिट्टी परीक्षण का अवश्य कराएं एटलीस्ट 3 साल में। और इसके लिए विभाग ने हर हमारे जिला स्तर पर एक एक लेबोरेटरी खोल रखी है, और हमारे सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम भी चली है जिसे हम किसानों को एक सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित कर रहे हैं। तो
1: जी
0: हमारे जो हमारे अधिकारी हैं फील्ड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, वो भी हमारे खेतों में किसानों के खेतों में जाके उसका मिट्टी सैंपल लेते हैं और उसकी जो उसकी टेस्टिंग वो हमारे सॉइल लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमारी मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी भी हैं, तो वो भी खेतों में जाके इनको टेस्ट करती है
1: जी
0: मिट्टी
1: डॉक्टर
0: को।
1: साहब, क्या ये मिट्टी परीक्षण का कार्य मुफ्त में किया जाता है?
0: जी हाँ जी, देखिए ये हमारा 100% पूरा मुफ्त में किया जाता है। जब भी किसान भाई जब भी चाहे कोई ऐसा अपना सैंपल टेस्ट कराना चाहते हैं तो हमारे जो नजदीक के कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं,
1: जी
0: और अगर अपना सैंपल भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं सैंपल आके। बट उसके एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब भी वो सैंपल लें तो एक तो सबसे पहले कि जो वहाँ पे कोई रासायनिक खाद उन्होंने दी हो या कोई पेस्टिसाइड स्प्रे किया हो या कोई जहाँ पानी की कुल उससे सैंपल ना लें। हमारे जो खेत से 5-6 जगह सैंपल लेके घास उठा के उसको अच्छी तरह मिला के उसके 4 हिस्से कर लें, और जब तक करें तब तक आपका सैंपल आधा किलो ना जाए,
1: जी
0: और उसके बाद वो अच्छी तरह मिट्टी इसको कपड़े में बांध थैली बांध के उसको उसका क्रॉप जो आपने आगे बोनी है और अभी क्या बोई थी उसका डिटेल नाम डाल के अपने जो साथ के नजदीक के कृषि अधिकारी को दे दें, तो आपकी सॉइल टेस्ट हो जाएगी पूरी।
1: जी डॉक्टर समीर शर्मा जी, जो कृषि विभाग बीज खाद और कीटनाशक किसानों को देता है, उसकी गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जा सकती
0: हाँ
1: है?
0: जी, देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कई
1: जी
0: बार देखा गया कि किसान भाइयों को जो बीज मिलते हैं कई बार वो कसौटी खड़े नहीं उतरते हैं, कई बार क्या होता है कि बीज उगते नहीं है। इसलिए विभाग ने एक हमारे जिला स्तर पे भी और स्टेट लेवल पे भी एक हमारे इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर हुए, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर हुए, सीड इंस्पेक्टर, वो नॉमिनेट कर रखे हैं।
1: जी
0: इसके अंतर्गत हमारे वो डीलर से हुए उनसे खाद के हुए या दवाइयों के नमूने लेते हैं। इसी के अंतर्गत विभाग ने इस खरीफ सीजन में 1,000 खाद के नमूने, 150 कीटनाशक के नमूने और जो हमारे 400 बीज के नमूने लेने का लक्ष्य रखा गया है जिससे इनकी क्वालिटी चेक हो सके।
1: इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विभाग किसानों को कृषि विविधीकरण के लिए क्या-क्या प्रयत्न कर रहा है?
0: जी हाँ, देखिए हमारा मेन जो है आजकल देखा किसान हमारे जो ट्रेडिशनल खेती से लेकर अब कृषि विधिकरण की ओर बढ़ावा दे रहे हैं जिससे किसानों की आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसके लिए हमारा हम वेजिटेबल जो हमारी सब्जियों को उत्पादन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो हम
1: जी
0: किसानों को इस पे हमारा एक जायका प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत हमारा हम सब्जी उत्पादन की ओर बढ़ावा दे रहे हैं, और साथ साथ हमारे एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत भी एक सब्जी उत्पादन के अंतर्गत एक हमारे प्रोजेक्ट हैं हम इसके लिए।

0: हम ज्यादा से ज्यादा के लिए सब्जी उत्पादन की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं।
1: आमतौर पर इस मौसम में बीमारियों व कीटों का बहुत ज्यादा प्रभाव हो जाता है। क्या विभाग ने संरक्षित खेती के लिए कोई प्रयास किए हैं जिससे किसानों को कम खर्चा पड़े और आमदनी भी
0: हाँ
1: जो है
0: देखिए,
1: ज्यादा प्राप्त हो?
0: इसके अंतर्गत हमारे पॉली हाउस परियोजना है, जिसके अंदर डॉक्टर बाईस पवार किसान स्वराज योजना,
1: जी
0: इसके अंतर्गत हम किसानों को पॉली हाउस बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और इसके अंतर्गत 85% हम सहायता उपदान किसानों को दे रहे हैं। इसमें हमें पॉली हाउस के अंदर खेती लगा के, जैसे आप कीटनाशक भी कम पड़ेगा, कीटों का प्रभाव कम रहेगा, बीमारियां भी कम लगेगी, तो इस योजना के अंतर्गत किसान ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं।
1: जी
0: जी
1: डॉक्टर साहब, कई बार खेत में कार्य करते समय कोई दुर्घटना किसान के साथ हो जाती है, तो क्या विभाग किसानों के लिए कोई योजना इसके लिए चला रहा है?
0: जी हाँ, इसके अंतर्गत हमारी एक योजना चली है, जिसको मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के नाम से कहते हैं। इसके अंतर्गत जब भी कोई दुर्घटना होती है किसी किसी किसान भाई की, जैसे कोई असंभव, कोई अंग कट जाता है या कोई दुर्घटना मृत्यु हो जाती है, तो उसमें हम 10,000 से लेकर 1,50,000 तक उसको एक मुआवजा राशि दे रहे हैं योजना के अंतर्गत।
1: जी
0: तो जैसे मृत्यु होने 15,000 रुपये, आंशिक रूप से जैसे कोई उंगली कटती है 10,000 रुपये, को 3 उंगली के कट जाने पे 20,000 रुपये, एक बाद जो टांग कटने पर 30,000 रुपये, इस तरह के हम इस पे इस योजना के अंतर्गत किसानों को सहायता दे रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ बात चली है खरीफ मौसम की, तो खरीफ मौसम में कई बार बारिश, आंधी और तूफान से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो
0: जी
1: जाता है। इनकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या विभाग ने कोई योजना बना रखी है?
0: हाँ जी, देखिए इसके अंतर्गत हमारी दो योजना है, एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके अंतर्गत हमारा जैसे मक्की हुआ, धान हुआ, इसके अंदर हम इनको बीमा योजना के अंदर कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी एक वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, इसके अंदर भी हम कुछ क्रॉपें हैं, जैसे टोमेटो हुआ, अदरक हुआ, आलू हुआ, इन क्रॉपों को इनके अंडर कवर कर रहे हैं। तो किसान भाई, इसके जब भी कोई अपने फसल उगाते हैं, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर अपने को कवर करें, इसी योजना के अंदर अपने को लाएँ।
1: जी डॉक्टर साहब, आज के परिवेश में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। क्या विभाग इस खरीफ मौसम में किसानों को फसलों से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध करवा रहा
0: जी
1: है?
0: जी देखिए, आज देश में जो सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसके अंतर्गत हमारे किसान भाई को हमारे एक SMS ब्लॉक ब्लॉक स्तर से भी जा रहे हैं, स्टेट लेवल से भी जा रहे हैं, और जिला स्तर से भी किसानों के मोबाइल पर एक मैसेज आता है हमारा
1: जी
0: कि क्या कैसे कोई खेती करनी है आपने, क्या हमारी स्कीम आई है, इस तरह के सब मैसेज हम किसानों को मुहैया करा रहे हैं। और इससे क्या हो कि आपको इंस्टेंट जानकारी मिल जाती है उसी टाइम खेतों पर कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही, तो मेरे को क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ एक किसान कॉल सेंटर है,
1: जी
0: जो हमारा सुबह 6 से लेकर शाम को 10 बजे तक चलता है, और ये हमारा अभी हिमाचल के लिए चंडीगढ़ बेस्ट पे है। तो किसान भाई जब भी कोई प्रॉब्लम हो किसी टाइम, तो किसान भाई बेफिक्र, उसका नंबर है, मैं किसान भाइयों के लिए बताना चाहता हूँ, 1800-1801551। तो किसान भाई जब भी चाहें तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
1: जी यानी कि किसानों को अब वरे परे ज़्यादा अपने टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत
0: जी
1: नहीं
0: जी
1: है
0: जी
1: और
0: जी
1: सीधे फ़ोन के द्वारा ही वो समस्या का
0: जी जी
1: समाधान पा
0: जी
1: सकते
0: जी जी
1: हैं।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ अंत में आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: जी मेरा ये संदेश रहेगा कि दो तीन चीज़ें, जब भी आप खेती बाड़ी करें अपने सुरक्षा के हिसाब से करें, और जब भी किसी चीज़ की जरूरत हो, आपको किसी भी चीज़ की कोई हेल्प की जरूरत हो, तो आप हमारे निसंकोच, हमारे कृषि विकास अधिकारी हैं किसी भी ब्लॉक लेवल पे, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, उसमें जाके अपनी समस्या बताइए और उसका समाधान पाइए।
1: जी डॉक्टर समीर शर्मा जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने खरीफ मौसम में कृषि विभाग के प्रबंधन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो ये तो आपने सुनी खरीफ मौसम में किए जाने वाले कार्य, इस विषय पर डॉक्टर समीर शर्मा से अशोक की बातचीत। अब किसान भाइयों, आपके फिर मनोरंजन का समय हो चला है, आइए सुनते हैं रोशनी शर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना रोशनी शर्मा की आवाज़ में ये लोकगीत। तो चलते चलते बात कर लेते हैं कल के आकर्षणों की भी। किसान भाइयों, कल काम की बातों के तहत विषय रहेगा जैविक खेती से मिट्टी व पर्यावरण सुरक्षा। साथ ही मनोरंजन करेंगे प्यारे से लोकगीतों के साथ और जानकारीपूर्ण बातचीत का विषय रहेगा शीतोष्ण फलों के बागीचों में परागण किस्मों का महत्व एवं प्रबंधन।
1: जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अब घड़ी भी इशारा कर रही है कार्यक्रम समाप्ति की ओर, आपसे अनुमति चाहेंगे।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का शिमला केंद्र। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आप डीटीएच सेवा, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और आकाशवाणी एफएम शिमला से भी सुन रहे हैं।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
2: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, राज्य सरकार ने प्रदेश वन विकास निगम के कर्मचारियों को पहली अप्रैल 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को दी मंजूरी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार, राज्य में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं। प्रदेश का पहला पूर्ण सीसीटीवी निगरानी वाला क्षेत्र बना हरोली। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आईना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया लोकार्पण। मुख्य सचिव के पंत ने आपदा तैयारियों में जन भागीदारी, तकनीक व समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने पर दिया बल। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, मौसम विभाग की आगामी एक सप्ताह तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य वन विकास निगम के कर्मचारियों को पहली अप्रैल 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित निगम के निदेशक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा 21,000 रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस देने की मंजूरी भी दी गई। इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा पहली अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने को भी स्वीकृति दी गई, जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 240 दिन का कार्य पूरा किया है। वहीं प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार मात्र पात्र अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण का निर्णय भी बैठक में लिया गया। निदेशक मंडल ने विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 425 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये करने को भी स्वीकृति दी। ये संशोधन पहली अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। राज्यपाल ने ये बात आज लोकभवन में उनसे मिलने आए गोविंद सागर एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान कही। इस दौरान राज्यपाल ने एसोसिएशन के चलो हिमाचल अभियान का पोस्टर भी जारी किया। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के प्रमुख जलाशयों व झीलों में साहसिक पर्यटन और जल क्रीड़ा गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। कविंद्र गुप्ता ने एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार व आजीविका के नए अवसर भी सृजित करेगी। आईजीएमसी शिमला में अब रोगियों का उपचार करने के साथ साथ बीमारी के कारणों व विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के अध्ययन के प्रयास किए जा रहे हैं। आईजीएमसी की रिसर्च टीम द्वारा लाहौल स्पीति के काजा में पित्त की पथरी के मामले में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि ये पथरी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होती है। रिसर्च टीम के प्रमुख डॉक्टर विपिन शर्मा ने बताया कि जनसंख्या के आधार पर गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए 2.5 वर्ष तक काजा में 450 लोगों पर ये अध्ययन किया गया।

0: इस स्पीति एरिया को हमने तीन हिस्सों में बांटा, 3500 मीटर से नीचे वाला अल्टीट्यूड तब वाला एरिया, मिड अल्टीट्यूड एरिया था 3501 से लेके 4000 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल, और उससे ऊपर वाला एरिया था मोर देन 4000 मीटर जिसका हिक्कीमेंट कॉमिक वाला एरिया थी। पेशेंट को लिया गया, उनको समझाया गया, चेक किया गया, हर पेशेंट भूखे पेट अल्ट्रासाउंड हुआ, यानी कि 450 लिए हैं तो 450 पेशेंट का हमने अल्ट्रासाउंड किया ऑन द स्पॉट, ब्लड टेस्ट किया, फिर एनालाइज किया। अच्छा, जो मुख्य फाइंडिंग जो इसमें हमारे सबसे बड़ा जो एक चौंकाने वाला फैक्ट था कि इस पॉपुलेशन स्टडी में 21.3% लोगों में पथरी पाई गई।
1: वहीं अध्ययन की जानकारी देते हुए आईजीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक राहुल राव ने बताया कि अस्पताल में अब बीमारियों और उनके कारणों को लेकर शोध किया जा रहा है।
2: हमने एक जनसंख्या आधारित गॉल ब्लैडर स्टोन की एक स्टडी की है जो दैट इज द हाईएस्ट विलेज ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कि अभी प्रकाशित भी किया गया, और ये स्टडी जो है काफी हमारे लिए भी मायने रखती है। इसकी जो शुरुआत है लगभग 2 साल पहले इन्होंने इस स्टडी को किया।
1: ऊना जिला का हरोली विधानसभा क्षेत्र प्रदेश का पहला पूर्ण सीसीटीवी निगरानी वाला क्षेत्र बन गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज क्षेत्र में 5.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आईना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के 60 महत्वपूर्ण व संवेदनशील स्थानों पर 195 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 2400 घंटे निगरानी रखी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सेंटर आधुनिक व तकनीक आधारित स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अग्निहोत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक से लैस ये व्यवस्था अपराध नियंत्रण को और मजबूत करने के साथ साथ आम नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास भी बढ़ाएगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज कोलकाता में आयोजित पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लिया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में 7 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। कुलदीप सिंह पठानिया 3रे सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे विधायी कार्यों के साथ गैर सरकारी सदस्य बिल पर सम्मेलन में मौजूद पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से भी मुलाकात की और उन्हें हिमाचल प्रदेश की ई विधान प्रणाली व क्रियाकलापों की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों के कार्यकाल में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों को देश के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थानों की तर्ज पर स्तरोन्नत किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार उपेक्षित व निर्धन वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और अति दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने आज किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपियो में जनसमस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। बाद में जगत सिंह नेगी ने कल्पा ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की समावेशी नीतियों व कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया। मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने आपदा तैयारियों में जन भागीदारी तकनीक व समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने पर बल दिया है। वे आज शिमला में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित पोस्ट डिजास्टर रिव्यू सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी भौगोलिक परिस्थितियों, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र और संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी के कारण बादल फटने, बाढ़ व भूस्खलन जैसी आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। पंत ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिए जा रहे तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन की सराहना भी की। प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में दोपहर बाद से वर्षा हो रही है। बीते दिनों हुई भारी वर्षा के कारण प्रदेश में

0: अलग अलग स्थानों पर 49 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं। उधर लाहौल स्पीति में बादल फटने से आई बाढ़ से प्रभावित जहालमा नाला में राहत व पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी है और लोगों से सतर्क रहने व सावधानी बरतने को कहा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश वन विकास निगम के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को दी मंजूरी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार, राज्य में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं। प्रदेश का पहला पूर्ण सीसीटीवी निगरानी वाला क्षेत्र बना हरोली। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आईना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया लोकार्पण। मुख्य सचिव के पंत ने आपदा तैयारियों में जन भागीदारी, तकनीक व समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने पर दिया बल। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। मौसम विभाग की आगामी एक सप्ताह तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाए, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार समाचार। बाल विकास परियोजना मंडी सदर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की पंचायत नगर निगम परिषद वार्डों में आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के रिक्त पद को भरने हेतु इच्छुक स्थानीय महिलाओं से सादे कागज पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सरकार द्वारा मूलतः 10,500 रुपये एवं सहायिका को मूलतः 5,800 रुपये और समय समय पर निर्धारित दर पर प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। पदों हेतु पात्रता इस प्रकार है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद हेतु केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र हैं। प्रार्थी की आयु अधिसूचना जारी होने की तारीख को 18 वर्ष से 35 वर्ष के आयु वर्ग में हो। प्रार्थी का नाम संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के सर्वे परिवारों की सूची में दर्ज हुआ हो। प्रार्थी के परिवार की सालाना आय 50,000 रुपये से अधिक ना हो। इस संबंध में आय प्रमाण पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आंगनवाड़ी सहायिका के पद हेतु प्रार्थी का 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हिमाचली स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यरत आंगनवाड़ी सहायिका भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन कर सकती है, यदि वह आवश्यक नियम और शर्तें पूरी करती हो। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन सादे कागज पर अपने पूर्ण विवरण सहित दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियों सहित दिनांक 15 जुलाई 2026 तक कार्यालय बाल विकास परियोजना मंडी सदर जिला मंडी में जमा करवाएं तथा साक्षात्कार हेतु व्यक्तिगत रूप से वांछित मूल दस्तावेजों सहित उपमंडलाधिकारी बाली चौकी जिला मंडी के कार्यालय में दिनांक 21 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है। रोजगार समाचार अभी आपने सुने। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सरकारी विभाग हो या बैंक या फिर कोई सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU,
1: आप सस्ते दामों पर आकाशवाणी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापनों द्वारा प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुंचा सकते हैं।
0: आकाशवाणी की पहुंच प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों तक है
1: और आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर ये सेवाएं उपलब्ध हैं।
0: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
5: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं FM शिमला के साथ। 8 बज चुके हैं, लेकर हाजिर है आपके मनोरंजन के लिए भूले बिसरे गीत। नाम से ही हम समझ जाते हैं वो धुंधली यादें, वो पुरानी शामें और वो आवाज़ें जो आज भी दिल के किसी कोने में गूंजती हैं। तो चलिए बिना देरी के आपको सुनवाते हैं मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत। गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, मजरू के बोल OP नैयर का संगीत।

महफिल वही है, साज वही है, बस वक्त ने थोड़ी सी करवट ली है। इस सुहानी सी शाम में वक्त के पन्नों को पलटते हैं और स्वागत करते हैं अगले गीत का, जो पुराना नहीं होता, उस दौर की हम बात कर रहे हैं। आशियाना फिल्म का गीत किशोर कुमार और शमशाद बेगम की आवाज़ी में।

मैडम, ओ ओ मैडम, ओ ओ ओ मैडम, है दोते हो गए एक हम ना पाका ना हम, ओ मैडम।

0: पापा खुश, मामा खुश, पापा खुश, मामा खुश, देख के अपनी जोड़ी।
1: वो क्या जाने अपनी शादी की मुद्दत है थोड़ी।
0: कल की किसने देखी प्यारे, आज सुनाते हम। ओ मिस्टर,
1: ओ मैडम, ओ ओ मैडम, दो से हो गए एक, हम ना पाका ना हम। ओ मैडम,
0: ओ

जानी आनी जानी जानी यानी यानी यानी जानी जानी लेकिन मेरी बुलबुल मेरे है आनी जानी कौन ये जाने कब पड़ जाए डाइवोर्स का बम ओ मैडम ओ ओ मैडम ओ ओ ओ मैडम।

0: कभी न फूले सारा।
1: मार मार के फूके थक जाए मियाँ बेचारा, मार मार के फूके थक जाए मियाँ बेचारा।
0: अरे अच्छी है वो बीवी जिसका जल्दी निकले दम, क्यों मैडम?
1: अबे जा मिस्टर।
0: ओ मैडम दो से हो गए एक, हम ना पाखा ना गम। ओ मैडम
1: ओ मिस्टर ओ ओ ओ मिस्टर, जो सहार ना झूठे से बाजे बम बम। ओ मिस्टर
0: ओ मैडम
1: ओ मिस्टर
0: ओ ओ मैडम।
2: अरे सागर बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
3: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
2: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
2: वो कैसे?
3: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में

0: बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
1: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
0: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
1: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
0: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
0: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
1: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

दीवाना फिल्म में अभी आपने सुना मुकेश को, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन का संगीत। जब भी हम पुराने गीतों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी पुरानी किताब को पढ़ रहे हो, जिसकी हर लाइन एक नया एहसास देती हो। यादों के झरोकों से झांकता हुआ आइए सुनते हैं एक ऐसा ही नगमा जो उस जमाने की मासूमियत को आज भी ताज़ा कर देता है।

संगीत का सफ़र भी कितना अजीब होता है। एक दौर था जब मोहब्बत का इजहार आंखों ही आंखों में होता था, और फिर दौर बदला और गीत भी बदले। अलीबाबा एंड 40 थीव्स फिल्म का गीत आशा भोसले, उषा मंगेशकर की आवाज़ों में, राजा मेहदी अली खान के बोल हैं और एस एन त्रिपाठी का संगीत।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: वक्त बदल गया है, जमाने की रीत बदल गई है, लेकिन इन पुराने गीतों की खुशबू आज भी वैसी ही ताज़ा है। इन्हीं सुनहरी गीतों की लड़ी को आगे बढ़ाते हैं इस गीत के साथ।

भूले बिसरे गीत अभी आप सुन रहे थे एफएम शिमला के साथ। 8:30 हो चुके हैं। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले मधुशी फिल्म का गीत, उदित नारायण की और साधना सरगम की आवाजें हैं।

तुमसा नहीं देखा। जी हाँ, इसी फिल्म का गीत आपके लिए लेकर आए हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ें हैं, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

तो चलिए थोड़ी सी मस्ती भरा गीत भी अब आपको सुनवाते हैं, जिसे हमने लिया है काल फिल्म से। आवाजें हैं सोनू निगम, कुणाल गांजावाला, सुनिधि चौहान और ऋचा शर्मा की। शब्बीर अहमद के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत।

फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार संध्या 9 बजे न्यूज़ @9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और

0: अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में

0: अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा

खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हाजिर है एक फिल्म से कार्यक्रम। यूं तो कितनी फिल्में बनती हैं, बनाने का स्टाइल एक जैसा, मेहनत भी बहुत ज़्यादा, हर फिल्म की कहानी अलग। कई फिल्में ऐसी होती हैं जो अपनी एक अलग छाप छोड़ जाती है। आज हम आपके लिए ऐसी ही एक फिल्म लाए हैं जो रिलीज़ हुई 1994 में, और उस फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।

0: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: मुख्य भूमिकाओं में माधुरी दीक्षित, सलमान खान, मोहनीश बहल, रेणुका शाह ने अनुपम खेर और साथी कलाकार। फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या और 1994 की यह सबसे बड़ी हिट फिल्म थी अपने समय की।

चलिए अब आपको बता दें कि इस फिल्म के गीत लिखे रविंद्र रावल ने, संगीत राम लक्ष्मण का था। गीतों में आवाजें लता मंगेशकर, एसपी सुब्रमण्यम। इसके अलावा दो गाने थे जिसमें आवाजें थी, एक में कुमार सानू और दूसरा शारदा सिन्हा की। 1995 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माधुरी दीक्षित और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार सूरज बड़जात्या ने अपने नाम किया।

एक फिल्म से कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आज आपने सुने हम आपके हैं कौन फिल्म के गीत। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। 9:30 हो चुके हैं और ये वक्त है ईमेल बेस्ड प्रोग्राम जिसका नाम है दिल की आवाज भी सुन। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं हमें एक मेल भेजकर। हमारा ईमेल आईडी है airfmshimlamusicmail@gmail.com। और हमारी आज की फिल्में हैं कबीर सिंह स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, जबरिया जोड़ी सोनू की टीटू की स्वीटी, ऑल इज वेल। फिल्में एक बार फिर से नोट कर लीजिए, कबीर सिंह स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, जबरिया जोड़ी सोनू की टीटू की स्वीटी, ऑल इज वेल। और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ ऋचा शर्मा। हमारे लिसनर्स बहुत फास्ट हैं, जल्दी से उन्होंने अपनी मेल्स भेजना शुरू कर दी है। सबसे पहले मेल शामिल कर रहे हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर, अमनदीप कालका से शुभचंद्र बाजार, साहिल बाजार और बिट्टा बाजार भी इनके साथ सुनना चाहते हैं गीत। नंदलाल राजपूत, राजू, मनुका बाई, नंदनी बाई, रुद्र राजपूत हमें ये किलौद मध्य प्रदेश से मेल कर रहे हैं। चौपाड़ी रोडू से लोभा सिंह गुंजेटा, जमिंता गुंजेटा, भजन देवी गुंजेटा, तारा सिंह गुंजेटा और मुकुल और अनुज भी इनके साथ हैं। नेक्स्ट मेल है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से इनका मेल हम तक पहुंचा है। मोतारा महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती कुमारी और इसी के साथ बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन कविता गौड़ और ये भी सुनना चाहते हैं गीत। उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाकतरिया, धाकड़ भोला, प्रवीण, रियांश और प्रतीक भी सुनना चाहते हैं कबीर सिंह फिल्म का गीत। जालंधर से संदीप जाटव, सुरेश जाटव, बुलंदशहर से उमेश गौड़ और रानी गौड़ भी सुनना चाहते हैं ये गीत।

चलिए प्रोग्राम में नेक्स्ट मेल शामिल करते हैं और इनकी रिक्वेस्ट थी कबीर सिंह फिल्म के लिए। उम्मीद है कि आपने ये गीत सुन लिया होगा। आपका नाम हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे सिद्धार्थ गोडाने सुनना चाहते थे इस फिल्म का गीत। सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत संतोषी हेमप्रभा पुष्पराज और सूरज राजपूत भी इनके साथ हैं। राशिद हुसैन अंसारी नसरीन अंसारी नौसीर अंसारी आसना अंसारी मोहम्मद कैफ अंसारी हमें कुरावली से ये मेल कर रहे हैं। पूर्णा जंक्शन मस्तनपुरा से अनंत भक्त अरुणा भक्त सुलोचना भक्त चेतन और इनके फैमिली मेंबर्स भी सुनना चाहते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म का गीत। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी और सीता गीता इनके साथ। सनावत से शेख मूसा मोहसिन अशोक वर्मा राजकुमार बोडाना। गंज झुंडवाड़ा से शमसुल कमर राही शाहिन फातिमा अदनान खान और अन्नू खान का मेल। हरियाणा से अंकित कांगड़ा मोनी कांगड़ा प्रिंस बोर्ड सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। नेक्स्ट मेल है कैलाश फूलमाली दीपक फूलमाली समर फूलमाली वेदिका फूलमाली हमें ये अहमदपुर खैगांव खंडवा से मेल कर रहे हैं। इसी के साथ एक और मेल है नंदन कुमार सिंह अंकित कुमार सिंह बेगूसराय बिहार से संदीप कुमार संजय कुमार और इनके फैमिली मेम्बर्स। इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह राम सहोदर नारायण प्रसाद लहरे दिनेश प्रसाद लहरे कालिंद्री लहरे हमें चिरमरी कोरसिया कालरी से मेल कर रहे हैं। गुड इवनिंग लिखकर हमें भेजा है और भेजने वाले हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन किरण ठाकुर जग्गी दुआ संदीप गुगलानी जगमोहन प्रजापति प्रतिभा शर्मा इशप्रीत शर्मा हरिपल और आशा गुगलानी भी इनके साथ ही हैं। अब्दुल गफ्फार डाबर खुशनसी अब्दुल हक डाबर जिया उल हक डाबर खंडवा से हमें मेल कर रहे हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से शोहन जोशी भी इनके साथ। तो चलिए आप सभी की रिक्वेस्ट पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। पहले करते हैं एक और मेल शामिल बेगम इशरत अकरम वसीम अकरम रुबीना आजीम आरिज वसीम नदीम अकरम शमीम ममता रानी पूनम कुमारी कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निगत प्रवीण।

चलिए प्रोग्राम में नेक्स्ट मेल शामिल करते हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियासत रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन प्रवीण और माहिरा नूर का मेल हमें आया है जसपुर उत्तराखंड से और सुनना चाहते हैं ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा था। अब हम कुछ आपको सुनवाएंगे जबरिया जोड़ी फिल्म का गीत। इसी के साथ एक और मेल हमारे तक पहुँच चुकी है मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकर नायमा, रंजू भाई धाकर, युवराज सिंह धाकर और शिवांगी भी इनके साथ सुनना चाहते हैं गीत। ये अगला मेल है लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख और करिश्मा शेख का। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। इसके साथ एक और मेल है फालजिका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। नमस्कार लिखकर हमें इन्होंने भेजा है इनकी रिक्वेस्ट भी इसी फिल्म के लिए। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से, सोनू के ट्विटी की स्वीटी फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा है, तो आपकी रिक्वेस्ट को इस गीत के बाद ज़रूर पूरा करेंगे। पलारी से हमारे पास जो मेला है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का। इसके साथ अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश, जीविका पुनावले पुणे से, अनिल अजय सोना में और करिश्मा सोनवे और अविका भी सुनना चाहते हैं गीत। बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश उत्तम नगर नई दिल्ली से। एक और मेल है कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम और मरियम का मेल हम तक पहुंच चुका है। उदयपुर राजस्थान से भारती देवी, बाबू भाई और इनके फैमिली मेंबर, सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग और सोनाली नारंग, पुराना तालाब डुमराव से वलीला अंसारी।

चलिए, बहुत सी मेल्स आप तक हम तक पहुंच रही है आपकी। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी सुनना चाहते हैं सोनू की टीटू की स्वीटी की फिल्म का गीत। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति शिवांश, और इनका भी इसी फिल्म के लिए रिक्वेस्ट आया है। भाटापाड़ा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नू लाल, रजक, मुरली क्षत्रिय और इनके फैमिली मेंबर्स, किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, विशाल, शास्त्री नगर बीट शहर से हमें मिल कर रहे हैं। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, हमें धूलापुर उत्तर प्रदेश से इनका मेल आया है। अनिल शर्मा, इंदु शर्मा, ऋचा शर्मा, दर्पण शर्मा, लवदीप शर्मा, नैन्सी शर्मा, दिव्याना और माधव सोनम, सुनाम पंजाब से मेल कर रहे हैं। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, एस एम जावेद, शगुफ्ता, अंजुम, गुमला रोड झारखंड से इनका मेल हम तक आया है। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना और निवान शर्मा का मेल हम तक पहुंचा है। इसी के साथ

ये रिपीट हो रही है आपकी मेल्स। फिलहाल एक और मेल शामिल करते हैं। भेजने वाले हैं मजनू काटिला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक भी इनके साथ सुनना चाहते हैं गीत। अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्र रामेकर, रुचिका और इनके फैमिली मेम्बर्स। तो चलिए एक और मेल करते हैं। अनूप सिंह नथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पंवार, भानु प्रताप सिंह पंवार झालावाड़ राजस्थान से हमें मेल कर रहे हैं। ओम रेडियो श्रोता संघ कौली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़ भी सुनना चाहते हैं गीत। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस का भी मेल हम तक पहुँचा है। तो चलिए आप सभी की रिक्वेस्ट पर एक और मेल शामिल कर लेते हैं। व्हाइट व्हील बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष सुनना चाहते हैं ये गीत।

चलिए समय बहुत थोड़ा बचा है, जल्दी से आपके नाम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान सुनना चाहते हैं ऑल इज़ वेल फिल्म का गीत। लिवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी इनके साथ हैं। इसरत खान सायरा बेगम, रहूब खान सावरीन बेगम, शहबाज खान सैफ खान, इमा ईशान खान हमें ये मेल कर रहे हैं, इन्होंने अपनी लोकेशन बदायूं लिखी है। बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, रितेश कुमार चौहान, उत्कर्ष सुनना चाहते हैं गीत। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून हमें दुलापुर उत्तर प्रदेश से मेल कर रहे हैं। मदनपुर खादर नई दिल्ली से अजहर अहमद अलबी, इरशाद अहमद अलबी, सहाना बेगम अलबी भी इनके साथ हैं। इसी के साथ एक और मेल है नई बस्ती गंजंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ़ हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी सुनना चाहते हैं गीत। तो एक और मेल प्रोग्राम में शामिल करते हैं वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कौर, मोहम्मद शाहबाग खत्री और हाजी इसहाक, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी का मेल भी हम तक पहुंच चुका है। अहमद भाई फूलमाले, दुखना सदफ आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले। इसी के साथ नई दिल्ली से बिटिया आमना सरीन, आसमा परी, राबिया मंताशा, आशु अहमद फूलवाले और इनके फैमिली मेम्बर्स सुनना चाहते हैं गीत। हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नौखेलाल वर्मा भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें मेल कर रहे हैं। रविंद्र मोहनदास, आशा देवी किशनगंज बिहार से। एक और मेल हम तक आया है, ये जगदीश धाकड़ का प्रोग्राम में हम शामिल कर चुके हैं नाम। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर मालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, हिमकेश्वर साहू, करण साहू, चंपा साहू छत्तीसगढ़ से हमें मेल कर रहे हैं और आप सभी की रिक्वेस्ट पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज भी सुन में आज बस इतना ही। आज आपने सुने कबीर सिंह स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, जबरिया जोड़ी सोनू की ट्यूटी की स्वीटी की फिल्म के गीत, ऑल इज वेल भी इसी फिल्म में शामिल थे। 10 बज चुके हैं, FM शिमला पर अब लुत्फ उठाइए गजलों का।

आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशियों की कीमत ना होती, पूरी करता ना खुदा यूं ही सबकी मुरादें, तो इबादत की कभी ज़रूरत ना होती।

रिश्तों की डोरी कमज़ोर होती है, आँखों की बातें कुछ और होती हैं। खुदा ने जब भी पूछा दोस्ती का मतलब, हमारी निगाहें आपकी ओर होती हैं।

शब्दों से ही लोगों के दिलों पे राज किया जा सकता है। चेहरे का क्या है, वो तो वक्त के साथ बदल जाता है। मोहब्बत नहीं है नाम सिर्फ पा लेने का, बिछड़ के भी अक्सर दिल धड़कते हैं साथ साथ।

0: गजलों का लुत्फ अभी आप उठा रहे थे एफएम शिमला के साथ।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
2: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा
1: एफएम।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप एफएम शिमला के साथ 10:30 हो चुके हैं। अब आपको सुनवाते हैं सदाबहार नगमे। आराधना फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल आर डी बर्मन का संगीत।

कहाँ रातों में अब अकेले होते हैं हम, कभी तेरे ख्यालों से तो कभी अपने मन में अनगिनत सवालों से घिरे होते हैं हम। ब्लैकमेल फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

आज किसी ने हमसे पूछ ही लिया, जुबां बहुत मीठी है, जख्म गहरा तो नहीं। अजनबी फिल्म का गीत आपके लिए लेकर आए हैं किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।